인투텔리 광포电台 听众朋友们, 现在我们播送 Justin 唱的 Cassie 民间歌曲, 请收听。

印度特里广播电台，听众朋友们，这次普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, फिरोज शाह मेहता के जीवन से प्रेरक प्रसंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं रामचरितमानस का बालकांड भाग 44।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान

और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

परदेसवा। ओ सैया, ए सैया जाई।

0: Harap Anda telah menikmati lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kasan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: 1, 2, 3, hit it!
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना

0: पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
1: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
2: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम

0: पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए

0: लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ीं। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग अक्रॉस ऑल 285 पोलिंग स्टेशंस एट फालता असेंबली कंस्टिट्युएंसी इन वेस्ट बंगाल ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. More from our correspondent.
3: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters, and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. Shondipan Dashgupta, Akash News, Kolkata.
2: Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal.

0: ये आकाश आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुस से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरिकी और जजीरानुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के वस्ती मैदानी इलाकों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिला के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द करने का गैर मामूली इकदाम किया है। इस महीने की 21 तारीख को फाल्टा असेंबली हलके के तमाम 285 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
1: इंतखाबी कमीशन ने गैर मामूली कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द कर दिया है। 21 मई 2026 को तमाम 285 पोलिंग मराकज में दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई 2026 को की जाएगी। चुनाव कमीशन ने अपने बयान में वजाहत की कि यह फैसला 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग के दौरान शदीद इंतखाबी धांधली और बेजाबतगी नीज जमहूरी अमल को बड़े पैमाने पर मुतासिर करने की रिपोर्ट्स के बाद किया गया है। इंतखाबी मुशाहिदीन की रिपोर्ट्स में संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़, वोटरों को धमकाना और पोलिंग कवानीन की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। कई बूथ्स पर बैलेट यूनिट के बटन को जानबूझकर स्याह टेप से ढांप दिया गया था, जिससे दुरुस्त वोटिंग मुमकिन नहीं हो सकी। गैर मजाज अफराद को भी पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होकर दूसरों की जानिब से वोट

0: पोल वॉल्ट मुकाबले के पहले दिन सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईनी के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक खबर को अपनी शसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की इस सिलसिले में शसुर्खी है, को फौरी अलर्ट्स की सहूलत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, प्रसून जोशी प्रसार भारती के चेयरमैन मुकर्रर। अखबारात ने बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के म्यांमार दौरे से मुतल्लिक खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरें इस तरह हैं, मकसद हासिल किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे ट्रंप का बयान, अमेरिका के साथ नई जंग का इम्कान मौजूद है ईरानी फौज का बयान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हल्के में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मशरकी और जजीरा नुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य की।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। आज के संक में आप सुन सकेंगे व्यंग गोष्ठी। प्रतिभागी हैं श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती निशा भार्गव, श्री लालित ललित और डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर लालित ललित।
2: मित्रों, तनाव इतना बढ़ चुका है, उस तनाव को दूर करने के लिए हास्य होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि हम लोग पार्कों में भी जाते हैं, वहां भी खिलखिला के हंसते हैं, बुजुर्ग मस्ती करते हैं और उल्लास करते हैं। उसी आनंद को बिखेरने के लिए आज हम मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ उपस्थित है वरिष्ठ व्यंगकार निशा भार्गव। उनसे अनुरोध करेंगे कि पहली पारी वे खेले, उनको आमंत्रित करते हैं। निशा भार्गव
3: जी, धन्यवाद लालित ललित जी। मैं जो अपना व्यंग सुना रही हूँ उसका नाम है गोल गपाड़ा। सदाचारी जो देखन मैं चला, सदाचारी न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना खुद से भ्रष्ट न कोई। इसे एक बड़ी उपलब्धि जानकर ढोंगी राम खुश हुए और सोचने लगे, संतों का कहना है विद्या खर्च करने से ही बढ़ती है, बिना खर्चे घट जाती है, तो क्यों न वह भी भ्रष्टाचार विद्या को खर्चे और बढ़ावा दें, भ्रष्टाचार का पतन न हो और वह उत्थान की ओर अग्रसर हो। ऐसा विचार रखते हुए ढोंगी राम ने सोचा, एक शोध करते हैं और खोज करते हैं कि वह किस किस को भ्रष्ट कर सकते हैं। इस खोज में वह पसीना पसीना हो गए, परंतु असफल रहे। व्यक्ति भ्रष्ट हो फिर भी असफल हो जाए, यह विसंगति उन्हें भ्रष्टाचार की दुर्गति लगी। ढोंगीराम ने पाया कि भ्रष्टाचार में कोई उनसे 20 है, कोई 19 है, किंतु यह व्याप्त हर क्षेत्र में है। एक भी ऐसा व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं आया जिसे वे भ्रष्ट कर पाते। हालांकि यह उन्हें ज्ञात था कि धरती पर बहुत से सदाचारी भी हैं, किंतु उनका एक से भी सामना नहीं हुआ। यह उनके ज्ञान पर लानत थी। उन्हें लगा कि भ्रष्टाचार के प्रचार प्रसार में वह पिछड़ गए या संभवतः लेट हो गए, लोग उनसे पहले ही बाजी मार गए थे। ढोंगीराम हिम्मत वाले व्यक्ति थे, भ्रष्टाचार की संपूर्णता उनमें सिमटी हुई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार अभियान और धीरज की लगाम तनिक भी ढीली नहीं छोड़ी। सोचने लगे, धरती पर ना सही परलोक में ही इस अभियान को चलाया जाए, तो इस अभिमान के प्रणेता ढोंगीराम विचारों की कसरत करते करते सो गए। दनादन खर्राटे भरने लगे, प्रत्येक खर्राटा एक एक योजना की खबर दे रहा था जो उनके दिमाग में चल रही थी। योजनाओं के चक्रव्यूह में यमराज आ फंसे और ढोंगीराम से बोले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। धर्मात्मा ढोंगीराम तनिक भी न घबराए, न थरथराए, बल्कि कड़क कर बोले, नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, कर लो जो करना है। यमराज सोचने लगे कि उन्हें देखकर तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लोग गिड़गिड़ाते हैं। यमराज ताव में आकर बोले, वैसे तुम्हारी मृत्यु में अभी 2 घंटे बाकी हैं, किंतु तुम्हारी अकड़ देखकर

0: मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ले चलूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ढोंगी राम मस्खा लगाते हुए कुछ नम्र होकर बोले, महाराज, यमराज आप तो बहुत कर्तव्य परायण हैं। अगर मुझे परलोक न ले जा पाए तो क्या दंड पाएंगे? जीवन भर की कमाई दांव पर लग जाएगी, यमराज ने कहा। ढोंगी राम मुस्कुराए, सोचने लगे ये सही समय है भ्रष्टाचार का तीर छोड़ने का। बोले, यदि उस नुकसान का दुगना पैसा मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूं तो? तो यमराज जी सोच में पड़ गए, क्योंकि ढोंगी राम का जादू चल रहा था। बोले, हाँ, मुझे यमराज नाम पसंद नहीं, मेरा नाम कर्मराज, धनराज या धर्मराज करवा दें तो नगदी लेकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ढोंगी राम बोले, माना कि आपने जीवन दान के बदले में मैं तुम्हारी आजीवन कमाई का दुगना देने को तैयार हूँ और प्रमोशन करवाने का भी वायदा करता हूँ, किंतु क्या तुम मुझसे वार्तालाप, संलाप, साठ गांठ और जोड़ तोड़ की बात नहीं करोगे? विशुद्ध दिल वाले यमराज बोले, जरूर करेंगे, वार्तालाप ना नहीं करेंगे। ढोंगी राम ने बातचीत के दौरान यमराज से कहा, महाराज आजकल तो आपके पास फ्री समय बहुत बचता होगा, पृथ्वी लोक की तरह आपाधापी नहीं होगी, आपका काम तो डॉक्टर, अस्पताल, आत्महत्याएं, मिलावट, विस्फोटक, आतंकवादी, दुर्घटनाएं आदि ही पूर्ण कर देते हैं। आपको तो मृतक की डिलीवरी लेने पृथ्वी पर कम ही आना पड़ता होगा, क्योंकि अब तो आपको बैकुंठ में बैठे बैठे ही फ्री होम डिलीवरी मिल जाती है। गर्दन हिलाकर यमराज ने ढोंगी राम की बात पर सहमति की मुहर लगा दी और बुदबुदाते हुए बोले, हाँ, इसीलिए मैं ओवरवेट हो रहा हूँ। यमराज ने हामी भरने की तर्ज पर फिर गर्दन हिलाई और सोच विचार कर बोले, ढोंगी राम तुम महापंडित हो और दूरदृष्टा भी, मेरी संगति से तुम्हें पूरा लाभ मिलने की संभावना है। मेरा नाम लेकर तुम लोगों को मौत का डर दिखा दिखा कर अपने भ्रष्टाचार अभियान की सदस्यता में बढ़ोतरी करने में सफल हो जाओगे। तो इस ढोंगी राम और यमराज ने हाथ से हाथ मिलाया और वादा किया कि वे हाई टेक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, ना होगा कोई छोटा भ्रष्ट ना बड़ा भ्रष्ट, सब समान होंगे, ना होगा अमीर भ्रष्ट ना गरीब भ्रष्ट, सब समान होंगे, ऊंचे भ्रष्ट नीचे भ्रष्ट आदि के श्रेणीकरण को हटाकर सबको टॉप लेवल पर पहुंचाने की दोनों ने ठानी। यमराज जो मौत का प्रस्ताव लेकर आए थे, वह संबंध जारी ही नहीं हुआ। हिलोक से परलोक तक ढोंगी राम की डिलीवरी स्थगित हो गई। कब तक के लिए कौन जाने, परलोक में क्या हंगामा होगा नहीं मालूम, दोनों की दोस्ती क्या रंग लाएगी नहीं मालूम। अलबत्ता भ्रष्टाचार की जीत की ढोंगी राम को बधाई, बहुत बहुत बधाई,
1: बहुत
0: धन्यवाद।
2: हमें बड़ा आनंद आया इस रचना को सुन के कि निशा भार्गव जी की रचना जो गोल गपाला है उसमें फ्री होम डिलीवरी पर बहुत जोर दिया गया है कि यमराज हो, और इस तरह आजकल हम लोग कई तरह की डिलीवरी पर देखते हैं, लेकिन अच्छी रचना, निसंदेह हमारे श्रोताओं ने बड़ा आनंद लिया होगा कि यमराज के काल में भी इस तरह की होम डिलीवरी की हम चर्चा करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी रचना हमारे श्रोताओं के सामने रखी। और मेरे सामने दूसरा नाम मैं जिसे आमंत्रित करना चाहूंगा, व्यंग के क्षेत्र में सरेलता पाठक समीक्षा तेलंग सूर्य बाला जिस तेजी से लिख रही है उतनी ही तेजी से हमारे बीच में अर्चना चतुर्वेदी है, उनसे कहूंगा कि एक तड़कती फड़कती रचना हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखें।
1: धन्यवाद लालित जी। मेरी रचना का शीर्षक है मेमोरियल टूर्नामेंट। रात के 9:30 बजे थे, हम आराम से पलंग पर पसर कर टीवी के सामने बैठकर अपनी आंखों की आयु कम कर रहे थे, बाकी समय ये काम मोबाइल के जरिए करते हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, हम अपनी भारी भरकम काया को लेकर हिलते, तब तक पत्नी द्वारा सताए हुए पति टाइप दिखने वाले हमारे तार से बिजली से पतले पिया अर्थात हमारे एकमात्र पति देव उठकर दरवाजे तक पहुंच चुके थे।
2: एकमात्र पिया, क्या हुआ? क्या
1: अपनी भारी भरकम काया और उससे भी भारी अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण हम अपनी जगह से भले ही नहीं हिले पर हमारे कान दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दरवाजा खुलते ही एक साथ कई मर्दाना आवाजें आईं। अब हमारे कान पूरी तरह खड़े हो चुके थे, अब आंखें भी उधर कुछ कुछ पहुंच गई थी। आखिर कौन लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली की जनवरी वाली सर्दी में रात में रजाई का मुंह छोड़कर हमारे यहाँ पधारे हैं? आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया तो इतना तो समझ में आ गया कि आवाजें कॉलोनी के ही लोगों की हैं। हम ध्यान लगाकर सुन ही रहे थे तभी किसी ने हमारा नाम लिया, और अपना नाम सुनकर सिर्फ हमारे कान ही नहीं इस बार हम भी रजाई छोड़ फुर्ती से खड़े हो गए। पतिदेव

0: लोगों ने सोफे पर बिठा दिया था और कुछ और बातें हुई जिसमें हमारा नाम शामिल था। अब हमारे पति देव उनकी बात सुनकर हमारी तरफ आने के लिए बढ़े। ये सब ड्राइंग रूम की दीवार पर चिपके हमारे कान सुनने के साथ साथ देख भी रहे थे। अपना नाम सुनते ही हमारे शरीर में रक्त का जो संचार हुआ और हमने फुर्ती से उठकर अपने कपड़े ठीक किए, बाल संवारे, तभी पतिदेव की आवाज आई, सुनो बाहर आओ, वे लोग तुमसे ही मिलने आए हैं। ये वही लाइन थी जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अब कान तो ड्राइंग रूम से वापस आ चुके थे लेकिन हम ड्राइंग रूम तक पहुंच चुके थे। हमारे स्वागत में वे सब खड़े हुए। नमस्कार, अभिवादन संपन्न होते ही हमने कुशल गृहिणी की तरह चाय पानी पूछ डाला, पर पतिदेव तो ज्यादा कुशल निकले। वे नाश्ता और पानी की ट्रे लेकर हाजिर थे। अब उन्हें देखकर हम बेफिक्र अंदाज में धप से सोफे पर फैल गए और बाकी लोगों को भी बैठने का इशारा किया। जी कहिए, कैसे आना हुआ, हमने टिकते ही प्रश्न उनकी ओर उछाला। जी भाभी जी, वो अपने यहाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट है तो हम आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना चाहते हैं, एक महाशय बोले, सुनकर हमारी बाछा खिल गई। अब जब हमारी कॉलोनी में इतनी प्रसिद्ध लेखिका रहती हों तो किसी बाहर वाले को काहे बुलाए हैं। दूसरे भले मानस जी उवाचे और पति देव द्वारा लाए काजू की कटोरी से चार चखा दी मुंह में ठूंस लिया। हम अपनी तारीफ सुनकर कुछ और फूले, तभी एक और आवाज आई, भाभी जी हम देखते हैं आपकी फोटो अखबार में आती रहती है। अबे फोटो नहीं, आर्टिकल भी तो आता है, दूसरे ने काजू के साथ बिस्किट पर भी हाथ साफ करते हुए अपना ज्ञान बगाड़ा। अब बाकी सब हमारी तारीफ में मशगूल हुए। जी वो व्यंग होता है, हमने बोलना चाहा फिर चुप रहने में ही भलाई समझी। जब अखबार वालों को बताना पड़ता है लेखक व्यंगकार है तो हम इन्हें व्यंग क्या ही समझा पाएंगे। हम बस किसी बड़े साहित्यकार की मुद्रा में गर्दन में थोड़ी अकर लाते हुए एकदम तन कर बैठ गए और चेहरे पर सिर्फ 100 ग्राम मुस्कान चिपकाते हुए हमने कुछ देर अपनी तारीफ में बड़े स्टाइल से सुनी। फिर बात आगे बढ़ाने के लिए हमने कार्यक्रम का समय और रूपरेखा पूछना शुरू किया। सब समझ आने पर हमने पूछा, ये जो आरपी सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट है उन आरपी सिंह जी के बारे में कुछ बता दीजिए ताकि मैं अपनी स्पीच अर्थात भाषण में उनके बारे में बोल सकूं।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: अभी हम आगे कुछ बोल पाते तभी सबने एक साथ पकड़कर एक जीते जागते इंसान को जबरदस्ती खड़ा कर दिया और एक शर्मा बोले, भाभी जी ये ही है आरपी सिंह, इन्हीं की स्मृति में हो रहा है कार्यक्रम। मैं क्या, हमें जोर का झटका जोर से ही लगा और हम झटके से खड़े हो गए। अरे भाभी जी आप खड़ी क्यों हो गई, बैठिए ना। असल में जी वो इसने टूर्नामेंट के लिए सबसे ज्यादा रुपये दिए हैं ना, तो हमने इसकी स्मृति में कार्यक्रम रख दिया। वे लोग हंसते हुए अंदाज में बोले, मानो कोई बड़ा दिया मार लिया हो। पतिदेव वो हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हमें गुस्सा आ चुका था। पतिदेव ने इशारा भी किया शांत रहने का, पर हमें एक बार गुस्सा आ जाए तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। और ये तो बात ही गुस्से वाली थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दिमाग खराब है आप लोगों का, हम भन्ना कर बोले। जी क्या हुआ भाभी जी, वे हड़बड़ाए, स्मृति का मतलब नहीं पता आप लोगों को, वो भी हिंदी भाषी प्रदेश में। हम जोर से बोले, जी वो जी, वे हकलाए, जिंदा आदमी की स्मृति में टूर्नामेंट रख रहे हैं, हद है बेवकूफी की, स्मृति मरने के बाद होती है। हम पिनपिनाए, क्या इसका ये मतलब होता है, हम तो बचपन से उस दोस्त की स्मृति में कार्यक्रम रखते हैं जो सबसे ज्यादा रुपये देता था। वे एक साथ बोले, ये अच्छा है जो पैसा दे उसी को मार दें, और सिर्फ मारते नहीं है बकायदा उसकी याद में टूर्नामेंट भी करवाते हैं। जीता जागता इंसान पैसे देकर अपनी स्मृति में खुशी खुशी कार्यक्रम करवा कर खुश भी है। वाह भाई साहब, आप वाकई धन्य है, मुझे माफ करें, मैं इस तरह के महामूर्ख सम्मेलन में कतई नहीं आ सकती, कहकर मैं दरवाजे के पास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ताकि वे लोग तुरंत निकल जाएं। जी भाभी जी, महामूर्ख सम्मेलन नहीं है, वो तो हम होली पर करवाते हैं, चलते चलते एक बुद्धिमान जी बोले। सच कहूं उस वक्त मन तो उन सबको कूटने का था उनकी बेहुदा हरकत पर ऐसा काम हो नहीं सकता था, सो हाथ जोड़कर उनसे विदा ली। उनके जाते ही पतिदेव जोर से हंसे, ये सही था, जीते जागते आदमी की स्मृति में कार्यक्रम तुम्हारी साहित्य की दुनिया से प्रेरित लगता है, जहाँ जीवित लोगों पर पत्रिका के अंक निकलते हैं, जीते जी अपने नाम से पुरस्कार देते हैं और भी बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो पहले साहित्यकार की मृत्यु के बाद होते थे। देखना जल्दी ही जीते जी स्मृति कार्यक्रम भी होने लगेंगे। पतिदेव हंसे, हा हा हा, वैसे मुख्य अतिथि को कोई मृत आत्मा बुलाना चाहिए था ना, क्या कहती हो तुम। आप भी ज्यादा मजे मत लीजिए, अपनी दुखी आत्मा को संभालकर हम भी खिसियाई सी हंसी में हंसने लगे। आखिर मुख्य अतिथि बनते बनते जो रह गए थे, सामने टेबल पर पड़ा मेमोरियल टूर्नामेंट का पैम्पलेट फड़फड़ाकर हमें मुंह चढ़ा रहा था और हम चुपचाप उदासी भरे गीत गा रहे थे।
1: निसंदेह अद्भुत रचना थी और इस रचना में अर्चना जी ने कई सारे विषयों को लपेट दिया, विशेषांक से लेकर
3: कई सारे लोगों को
1: सुनीति तक। और मुझे लगता है कि जो विषय जो चुना, बिल्कुल नया विषय चुना कि वो व्यक्ति जीवित है और उसके जीवित होने के प्रमाण हमारे सामने हैं, लेकिन उसकी याद में कार्यक्रम हो रहे, उसकी याद में टूर्नामेंट हो रहे, बहुत बहुत आनंद आया और अच्छी रचना आपने सुनाई।
3: ललित जी आप इससे पहले कुछ आप और कहें।
1: मैं
0: जी
1: आपको बता दूं कि हम लोग सब सुन रहे हैं जिन व्यक्ति से जो संचालन कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम का, ललित ललित जी। ललित
0: जी
1: ललित कविता और व्यंग में खासा दखल रखते हैं। उनकी इतनी किताबें आ चुकी हैं कि वो एक टेबल पर समाती नहीं है। हास्य व्यंग और कविता तीनों पर उनका दखल है। तो आज तीसरे व्यंगकार के रूप में ललित हमारे सामने है। तो मैं चाहूंगा ललित जी अपनी रचना का पाठ करें। ललित ललित।
2: शुक्रिया सुभाष जी। मैं सीधे सीधे अपनी रचना पे आता हूँ
0: जी।
2: देवी का गजोदर और पांडे जी की इलो इलो। कहते हैं जब प्रेम किसी से होता है तो अपने आप ही दिल की घंटी बजने लगती है। आज पांडे जी छुट्टी वाले दिन घर बैठे थे। राम प्यारी ने कहा कि सुनो जी, आज ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ, पर एक ही शर्त पर मिलेंगे, इसी को ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच समझना। बस फिर क्या था, पांडे जी ने हमेशा की तरह हथियार डाल दिए। ब्रेड पकौड़े भीतर गए तो नींद तो आ जाएगी, पर दिमाग में पांडे जी के देवी का गजोदर घूम रही थी। पांडे जी ने सोचा कि हाईवे हो और देविका का साथ हो तो क्या कीजिएगा, इश्क हो जाएगा जबरदस्त तरीके वाला। आइए पांडे जी को जरा क्रिएटिव कराते हैं। पांडे जी को आज अपने पिता की याद आई, पता नहीं क्यों। आइए उन्होंने जो लिखा पहले साझा करते हैं
0: जी।
2: जब पिता नहीं रहते तब उनका कमरा वीरान रह जाता है। उनकी पसंदीदा पुस्तकें एक एक करके घर से विदा हो जाती है। उनकी शेप का डिब्बा अपनी जगह से अलग थलग हो जाता है। उसमें से घर के ही सदस्य अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं। कोई कंघा, कोई ब्लेड, कोई पेस्ट के साथ कैंची ले जाता है। डिब्बा बन जाता है छोटे बच्चे का एक अस्थायी बैंक, जिसमें वह रख लेता है पेंसिल, कलर्स और स्टेशनरी का सामान। पिता के गर्मी और सर्दी के कपड़े किसी गरीब व्यक्ति को दिए जाते हैं तो मफलर उनकी याद समझकर बेटी रख लेती है। टोपी बेटा पहन लेता है, इससे उसको यह फील होता है कि दादाजी का साथ बना रहेगा। बेटा परसों से बंद लोहे का संदूक खोलता है तो अनावश्यक कागजों को हटाया जा सके। उस संदूक में मिलते हैं उनकी पहली नौकरी से लेकर वर्तमान तक के लेटर्स, जिसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रशंसा और नियुक्ति के संदर्भ में पत्र है। बेटा सोचता है कि उसके पिता कितने कर्मठ और समर्पित थे अपने जीवन में। हर बेटे में उसके पिता गाहे बगाहे झांकते हैं, उसके मन में, उसके विचारों में, उसकी कलम में। बेटा अचानक से बड़ा हो जाता है, घर का मुखिया बन जाता है। जो जिम्मेदारी पिता निभाते थे आज बेटा निभा रहा है। बेटा सोचता है पिताजी आखिर क्यों गए उम्र से पहले उस डगर पर जहाँ सभी ने जाना है लौट कर नहीं आना। पिता के साथ सब गया, मीठी खट्टी बातों का पिटारा, कभी गुस्सा हो जाता, खाने से कन्नी काट लेता। पिता आते और कहते गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन भोजन का अनादर कभी मत करना। रह रहकर बातें बहुत याद आती हैं। यही जीवन है, यही वास्तविकता है, पांडे जी ने लिखा और मधुर स्मृति में खो गए। तभी राम प्यारी की आवाज आई, वह और चीकू शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ जेब हल्की करो। पांडे जी को जेब हल्की करना मंजूर था, शॉपिंग के लिए जाना नहीं। बहरहाल शॉपिंग करना और धूप से इश्क करना पांडे जी को मंजूर नहीं था। इसलिए पांडे जी ने अपने दफ्तरी मित्रों से पूछा क्या करोगे छुट्टी वाले दिन। अधिकांश ने कहा सोएंगे और घूमेंगे। पांडे जी सोचने लगे कि सोने से क्या होगा, पर साहब यह सभी का मौलिक अधिकार है, किसी के टंटे में क्यों पड़ना, जिसको जो करना है वह करे। पांडे जी सोचने लगे कि देवी का गजोदर के साथ कहाँ जाया जाए। उन्होंने ये सोचकर पोस्ट फेसबुक पर लगा दी। लगी आज जरूरत से ज्यादा विद्वान लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। कोई कहता मनाली जाओ, कोई कहता हरिद्वार जाओ, जितने लोग उतनी सलाह। पांडे जी ने आत्ममंथन किया कि घर से बाहर जाओगे तो खर्चा होगा, बेमतलब की टेंशन क्रिएट होगी। पांडे जी ने राम प्यारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बेशक आप घूम आओ वे नहीं जाएंगे। उधर चीकू खुश कि पापा नहीं जाएंगे, यानी जाएंगे तो हर बात में पाँव पी करेंगे। तभी राम प्यारी ने कहा सुनिए जी, आप घर पर रहना, मैं हर चीकू मार्केट जा रहे हैं, दो एक घंटे में लौट आएंगे। पांडे जी ने कहा आराम से जाओ, मैं घर पर हूँ, आप चिंता ना करो। राम प्यारी के जाने के बाद पांडे जी ने दूध वाली चाय बनाई और सोचा कि वे भी बनाकर देखते हैं आखिर राम प्यारी को इस तरह की चाय क्यों पसंद है। बस कहीं से पांडे जी ने पढ़ लिया था कि दूध वाली चाय पीने से सांवला रंग गोरे रंग में तब्दील होता। पांडे जी ने सुबह पार्क के साथियों को भी बताया। लोकल दुकानदार ओपी का दूध का चक्कर बढ़ गया, जिसके यहाँ 2 लीटर जाता था अब 3 लीटर जाने लगा। कमाल की मार्केटिंग है साहब, जो उछाल दो सब उसके पीछे दीवाने हो जाते।
0: बिल्कुल,
2: यही दुनिया है और दुनियादारी भी। तभी देवी का गजोदर का मोबाइल आया। पांडे जी ने कह दिया कि प्लान कर लो श्रीनगर का, और वैसे भी वंदे भारत शुरू हो गई है, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। देवी का ने कहा कि पांडे जी खर्चे की बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि जाते समय वंदे भारत से चलेंगे और वापसी में हवाई जहाज से आ जाएंगे। पांडे जी ने भी अपनी सहमति दे दी। और बाय द वे ये इलू इलू कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है और जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जैसे राधेलाल शर्मा को हुआ, उसकी पोल पट्टी खुल गई, और चुप्पी प्रसाद भट्ट को हुआ, उसके पर्चे बट गए। बात को समझने की जरूरत है भाई साहब। देविका गजोदर पांडे जी को अच्छे से समझती है और पांडे जी देविका गजोदर की आत्मा से वाकिफ।

0: है, और इसको प्रेम मानिए, इश्क मानिए या कुछ और मानिए, एक बात तो तय है, दोनों में लोचा गजब का है। समझे भाई साहब? ऐसा कह लीजिए, फेविकोल का जोड़ है जो आसानी से छूटता नहीं। जय राम जी,
1: जय राम जी के।
0: मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपनी रचना को छोटा किया क्योंकि समय की भी मांग है, पर हमारे बीच में वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं, और सुभाष जी को सुनना अपने आप को सुनना है और एक समय को सुनना है, और मुझे ये लगता है कि सुभाष जी इस दौर के सबसे ज्यादा सक्रिय व्यंग्यकार है जिन्होंने अच्छे अच्छे राधेलाल बिठा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए सुभाष जी, आपका स्वागत।
2: धन्यवाद ललित। मेरी रचना का शीर्षक है प्रदीप की शादी और एसी।
0: क्या बात है,
2: कुल जमा 40 साल पहले की बात है। अपन को नई नई अफसरी मिली थी, पहली पोस्टिंग थी पटना। वहाँ मुझे प्रदीप बाबू मिले टाइपिस्ट के रूप में। प्रदीप बाबू बातों में हीरो और काम में पूरे जीरो थे। काम का पेट वो बातों से भरने की कोशिश करते थे, बहानेबाजी में तो मास्टरी थी, रोज नए बहानों की फसल काटनी। एक दिन प्रदीप मेरे पास आया और बोला, साहब अपना टेबल ग्लास और पेन सेट दे दो। मैंने पूछा क्यों? बोला, साहब मुझे अफसर लगना है। मैंने कहा मतलब साहब अभी नहीं बता सकता। मैं बोला तो ठीक है, मैं भी अभी नहीं दे सकता। क्यों? मेरी मर्जी। ठीक है साहब, किसी से कहिएगा मत, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ा सा नक्शा जमाना है। अबे यार, नक्शा तो जमा जमाया है, परमानेंट नौकरी है, अच्छी वाली तनख्वाह है, मैंने शरारती घोड़े खुले छोड़ दिए। उसने आंखों में दीनता और दोनों हथेलियों में फेविकोल का जुगाड़ कर लिया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मालिक साहब किसी से कहेंगे तो नहीं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया, मुझे मजा आ रहा था। तो प्रदीप शर्माते हुए थोड़ा सा बोला, साहब वो बात यह है कि मैंने लड़की वालों को बोला है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा अफसर हूँ, मतलब रीजनल मैनेजर। मैं चौंक गया, अबे यार तुम तो टाइपिस्ट हो, तुमने खुद को अफसर बताया है, वो भी कौन? रीजनल मैनेजर, आरएम। ऐसा क्यों भाई? प्रदीप थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोला, साहब लड़की वाले बहुत बड़े जमींदार हैं पर अनपढ़ हैं। उनके पास गांव में 500 बीघा जमीन है। लड़की उनकी इकलौती है, जो ब्याह करेगा वो जमीन का मालिक बनेगा। पर उनकी दो शर्तें हैं, एक तो लड़का बड़का अफसर होना चाहिए और दूसरा खूब रौबदाब वाला होना चाहिए। अब मैं सारी कहानी समझ गया। मैं बोला, प्रदीप बाबू ये सब तो ठीक है, पर लड़की कैसी है? अरे साहब 500 बीघे जमीन के मालिक की लड़की है, वो खराब हो सकती है क्या? मैं बहन का फिर भी बस थोड़ा सा आंख में भेंगापन है, एक टांग में थोड़ी सी लचक है, बाकी खाते पीते घर की लड़कियों का जैसा शरीर होता है। अच्छा पढ़े लिखे तो हो गए? हाँ साहब, पढ़ने में तो बहुत पक्की है, अभी पिछले 6 साल हो गए लगातार 10वीं में पढ़ रही है। हद है यार, महंगी वो, मोटी वो, पढ़ाई लिखाई में लद्दड़ वो, और फिर भी तुम तैयार। सर कैसी बात कर रहे हैं, 500 बीघे जमीन है, 500 बीघे की मालकिन भेंगापन भी ठीक कर देगी, मोटापा भी छांट देगी, और ज्यादा पढ़ लिख कर करना क्या है, जमीन की बिक्री के नोट ही तो गिनने हैं। फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने सुना है तुम्हारा तो मिस रोजी से कुछ आंख मटक का चल रहा था, तो क्या है वो तो चलता रहेगा। थोड़ी देर के बाद मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है, तुम मेरा ये शीशा ले लो, पेन सेट ले लो, पेन सेट और टेबल ग्लास मैंने दिया, रिवॉल्विंग चेयर जो थी अकाउंटेंट साहब ने दे दी, एडमिन अफसर ने 4 चपरासी दे दिए, और इत्तेफाक से बिल्ली के भागो छीका टूट गया, मतलब डिप्टी आरएम साहब को पूर्व पर साउथ जाना पड़ गया। अब प्रदीप पहुंच गए उनके पास, बोले साहब अपना रूम दे दीजिए। प्रदीप ने उनसे रूम भी ले लिया, अब सारी बात हो गई, अब पूरा मामला टन टन हो गया। अब रह गए थे 2 दिन लड़की वालों के आने में। परेशानी ये थी कि सारी बात तो ठीक है, रूम मिल गया, टेबल ग्लास मिल गया, चपरासियों का इंतजाम हो गया, सारे काम हो गए, पर दिक्कत थी आरएम साहब की। आरएम साहब का क्या जुगाड़ किया जाए? तभी पुनीत और राघव को कुछ याद आया। पुनीत चूंकि हेड ऑफिस से ट्रांसफर होके आया था और वो वहां सबको जानता था, उसने क्या काम किया कि उसने चेयरमैन के पीए की आवाज में फोन लगाया आरएम साहब, और बिल्कुल लड़की की आवाज में बोला, सर ऐसे ऐसे आपको चेयरमैन साहब ने बुलाया और आपको बहुत बड़ा काम सौंपने वाले हैं। आरएम साहब बोले, अरे लेकिन साहब से बात तो कराइए। नहीं नहीं साहब, अभी मीटिंग में अभी बात मत कीजिएगा, आप अभी रात की ट्रेन पकड़िए और कल यहाँ पहुंच जाइए। अब पटना से दिल्ली आने में देर तो लगती है। साहब रात को आरएम साहब भी निकल गए। अब हो गया मामला खोमचा, पूरा जम गया। अब तो गए कोतवाल, अब डर का है का। अब तय ये हुआ कि बड़े साहब की नेम प्लेट उतारी जाए और उस पर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव रीजनल मैनेजर की नेम प्लेट लगा दी जाए, सारा खेल आरएम के दफ्तर से खेला जाए। पर ना ना, उनकी जो पीएस थी मिस बनर्जी, वो नहीं मानी, बोली कि ज्यादा जिद करोगे तो साहब के सामने सारी बात पोल पट्टी खोल दूंगी। तो मजबूरी में डिप्टी रीजनल मैनेजर साहब के कमरे में खोमचा जमाया गया। उनके रूम के बाहर प्रदीप श्रीवास्तव की नेम प्लेट लग गई, 2 चपरासी कमरे के बाहर तैनात हो गए, गलियारों में तीर के निशान लग गए, 4 बोर्ड लगा दिए जिन पे लिखा था बड़े साहब श्री प्रदीप श्रीवास्तव का दफ्तर इधर है। इसके अलावा

0: सबको हिदायत दे दी गई कि जब प्रदीप बाबू मेहमानों को लेकर आएंगे तो सभी लोग झुककर सलाम करेंगे और ऐसे डरने का अभिनय करेंगे जैसे साक्षात सांप देख लिया हो। जब तक मेहमान दफ्तर में रहेंगे तब तक यही हाल रहेगा। अब एक चीज और हुई, देखिए उनकी शर्त है लड़की वालों की बड़े साहब दमंग पूरे हों, इसलिए प्रदीप ने सबको समझा दिया कि साहब मैं सबको एक एक बार डांटूंगा, प्लीज बुरा मत मानना, बाद में चाहे मुझे गाली दे लेना, बाद में चाहे पीट लेना, पर उनके सामने कुछ मत करना। ठीक है साहब, सारा मामला तैयार हो गई, मेहमानों का इंतजार का काम शुरू हो गया। मेहमानों ने ठीक 12 बजे एंट्री ली, वे संख्या में 4 थे, इधर समर्पित मेजबानों की संख्या पूरी 40 थी। सब हुआ, मेहमानों की खूब खातिरदारी हुई, कई तरह की मिठाइयां आई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय, सब चकाचक। प्रदीप बाबू का रौब भी खूब चला, मेहमानों के आते ही झुक झुक कर सलाम हुए। प्रदीप बाबू ने सबको बुरी तरह लताड़ा, मुझ पर तो खासी कृपा रही, मेहमानों के सामने खूब डांट पिलाई। मैं भी सर झुकाए यस सर करता रहा, पर बाद में सोच लिया बेटा अभी आने वाली एनुअल रिपोर्ट के लिखने का मौका, तेरा वो हाल करूंगा याद रखे। पर साहब सब हुआ पर रिश्ता पक्का ना हुआ। लड़की के बाप को फोन किया गया, लड़की के बाप ने कहा देखिए सब ठीक है, प्रदीप बाबू अफसर है, बड़का अफसर है, जो मिलता उसी को डांटते हैं, मतलब बहुत रौबदाब है, पर उतना बड़का अफसर नहीं ना है जितना हमको चाहिए। तो झाजी ने इधर से पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? उधर से जवाब आया कि हम जानते हैं बड़ा बड़का जो अफसर लोग होता है उनका रूम में ठंडी हवा फेंकने वाला मशीन होता है, क्या बोलते हैं उसको, एसी, वो साहब के रूम में नहीं ना है तो बड़का अफसर कैसे हुए? ना ना, हम अपना बिटिया का शादी छोटका अफसर से नहीं ना करेंगे जिसका कमरा में ठंडी हवा का मशीन तक नहीं है, कहकर फोन काट दिया गया। इस वार्तालाप को सुनते ही दफ्तर में वो छा गया जिसे सन्नाटा कहते हैं। और प्रदीप बाबू के कुंवारे सपने बिना हाथों में मेहंदी रचाए सो गए, सारे दफ्तर को दुख।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुभाष जी, बहुत शानदार रचना आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को, और उसके विषयों का तारतम्य इतना गजब था कि कहाँ से पकड़े, लेकिन मुझे लगता कि बड़ी प्रेरक रचना थी कि 500 बीघे वाली जो बात आपने अपनी रचना में उठाई अद्भुत है, और मुझे लगता है कि निसंदेह हमारे श्रोता बहुत सारे प्रेरक वाली भूमिका में भी होंगे। निसंदेह ये रचना पाठ जो है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा। आप सभी के प्रति मैं आकाशवाणी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
3: अभी आप व्यंग गोष्ठी सुन रहे थे, प्रतिभागी थे श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती निशा भार्गव, डॉक्टर लालित ललित और डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर लालित ललित। और आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। आलेख है श्री दिनेश वत्स का, वाचन स्वर कीर्ति बैद। ग्रीष्म ऋतु में सूरज के तपन से जहाँ एक तरफ धरती जल रही है और दूसरी तरफ तेज हवाओं के साथ लू के थपेड़े लोग सह रहे हैं, तो साहित्यिक गतिविधियाँ, कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठियाँ भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ आयोजित की जा रही है। 24 अप्रैल को राजधानी में अंतर संस्था की तरफ से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि पर 81वीं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कवित्री वंदना कुंवर रायजादा ने की। दोहाकार मनोज कामदेव मुख्य अतिथि रहे। संस्था की अध्यक्ष डॉ. पूनम माटिया ने संचालन किया। गोष्ठी का आरंभ पूजा श्रीवास्तव ने सरस्वती वंदना से किया। काव्य गोष्ठी में डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि दिनकर युग चेतना के कवि हैं। युग चेतना का श्रोता अतीत से जुड़ा होता है। कवित्री अंशु जैन ने राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की ओजपूर्ण कविता का वाचन कर श्रोताओं में जोश भर दिया। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में साहसी रहो, प्रबल रहो, तप है जो जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बड़े चलो, सफल रहो। कवित्री डॉ. पूनम माटिया ने कुछ यूं कहा, बदगुमानी थी यकी पर सफर हमने किया, जुल्मतों में नूर को यूं बेशतर हमने किया, तोड़ दी दहलीज पर ही हसरतों की गुल्ल के, ख्वाहिशों के काफिले को दर बदर हमने किया। वंदना कुंवर जायदा ने कहा, सूख रहे हैं फूल पत्तियों से रिश्ते, मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते। मनोज कामदेव ने अपनी रचना से श्रोताओं का दिल जीत लिया। बगुले हैं हड़ताल में, मछली सोचे आज, रक्षा करने आ गए भेष बदल कर बाज। तो कवित्री पूजा श्रीवास्तव ने अपनी रचना के माध्यम से श्रोताओं की तालियां बटोरी। उन्होंने कहा, ये दुनिया में कैसी मची खलबली है, किसी एक जिद पे कायमात अड़ी है। कार्यक्रम में कर्नल प्रवीण त्रिपाठी, नवांकुर साहित्य संस्था के अध्यक्ष अशोक कश्यप तथा अंतस के संरक्षक नरेश माटिया की गरिमामयी उपस्थिति ने गोष्ठी को और भी जीवंत बना दिया। अध्यक्ष उद्बोधन में वंदना कुंवर रायजादा ने रचनाकारों की प्रशंसा करते हुए दिनकर के साहित्य की प्रासंगिकता पर बल दिया। अंत में मुख्य अतिथि मनोज कामदेव ने सभी

0: कवियों के रचना कौशल की सराहना की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंशु जैन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस सफल साहित्यिक आयोजन का समापन हुआ। शनिवार 30 अप्रैल को जाने माने कवि और गजलकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी के कविता संग्रह कवि के मन से का लोकार्पण साहित्य अकादमी सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. ममता कालिया, वरिष्ठ गजलकार श्री बाल स्वरूप राही, वरिष्ठ कवि और मीडियाकर्मी श्री लीलाधर मंडलोई, वरिष्ठ लेखक और रंगकर्मी श्री प्रताप सहगल, वरिष्ठ कवि और प्राध्यापक डॉ. जितेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक डॉ. ओम निश्चल, वरिष्ठ कवि और समीक्षक डॉ. संजीव कुमार और युवा शायर डॉ. रहमान मुसव्विर उपस्थित थे। इस अवसर पर अनेक साहित्य प्रेमी कवि और लेखक उपस्थित रहे। शनिवार 2 मई को दोपहर कनॉट प्लेस स्थित इंडिया लाइव बिल्डिंग सभागार में वरिष्ठ कवि और संपादक श्री कामता प्रसाद मौर्य के प्रथम कविता संग्रह मुंह तो खोलो का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि डॉ. कुसुम वियोगी, प्रोफेसर हंसराज सुमन, प्रोफेसर रजत रानी मीनू, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, श्रीमती अमित धर्म सिंह आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. कुसुम वियोगी ने कहा कि कामता प्रसाद मौर्य की कविताएं समाज के आखिरी कोने पर बैठे व्यक्ति को जागृत करती है। श्री कामता प्रसाद मौर्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस संग्रह को पढ़ने की गुजारिश की। अभी आप साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। आलेख था श्री दिनेश वत्स का। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम हमारे अतिथि का। हमारे अतिथि में आज आप सुनेंगे साहित्यकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉक्टर दिविक रमेश की भेंट काजल सूरी से। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
2: हमारे अतिथि क्रम में आइए सुनते हैं जाने माने साहित्यकार श्री दिविक रमेश से एक भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रही हैं काजल सूरी। नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं काजल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर दिविक रमेश जी। सर, आपका हमारे स्टूडियोज में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सर, सबसे पहले मैं आपसे, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपका जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ लेखन के क्षेत्र में? आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ?
3: देखिए, लगभग 13-14 साल का रहा हूँगा
2: जी,
3: तो मैंने लिखना शुरू किया था
2: जी।
3: अब वो लिखा हुआ कितना महत्वपूर्ण है ये अलग बात है, हालांकि मेरी फाइल में, मेरी कॉपी में वो सुरक्षित है। और उसका कारण मैं समझता हूँ, बिछो भी कह सकते हैं, नई दुनिया में आना भी कह सकते हैं। मैं दिल्ली के देहात में, जो गांव है हरियाणा की सीमा पर, तो हरियाणी यानी समझिए हरियाणवी संस्कृति या बोली में पला बढ़ा हूँ मैं। मेरा बचपन हुआ है
2: जी।
3: तो वहां से मुझे आगे की पढ़ने के लिए, रहने सहने के लिए मेरे ननिहाल भेज दिया गया, जो कि दिल्ली के करोल बाग में वो क्षेत्र पड़ता था, देवनगर
2: जी।
3: स्पष्ट है कि मैं 5वीं क्लास पास करके वहाँ आया तो मुझे अपनी माँ भी याद आती थी, मेरे पिता भी याद आते थे, पिता को हम चाचा कहते थे
2: जी।
3: और मुझे जो दो छोटी बहनें उस समय थीं, बड़ी बहन तो शादीशुदा थी, तो वो छोटी बहनों से बड़ा लगाव होता ही है, वो याद आते थे, एक तो ये कारण। और दूसरा ये कि मैं जब यहाँ आया तो मैं वहाँ गाँव का जैसे बच्चा होता है वैसा ही था, वही बोली थी, वही तरीका था
2: जी।
3: तो दिल्ली के जो आसपास के, मेरे घर के आसपास के जो बच्चे थे वो मुझे स्वीकार ही नहीं करते थे, यानी एक बड़ा समय लगा उनका हिस्सा बनने में। लेकिन इसमें ये एक था, साहित्यिक अभिरुचि के थे मेरे नाना जी, उनके पास पुस्तकालय भी था, कुछ साहित्यकार भी आते थे, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो कारण रहे होंगे कि मैंने जो है अपने गांव को दिमाग में रख करके, अपने आसपास को दिमाग में रख करके लिखा। जहां तक मुझे याद है, लिखी तो पहले कहानी गई थी
2: जी,
3: लेकिन फिर छोटी छोटी कविताएं लिखी, जिससे मुझे मेरे गांव में मेरी अपनी गाय है वही दिमाग में ही लिख दी, छोटा बाद में छोटा भाई है तो उसकी उसको लेकर के लिख दिया, कुछ इस तरह की चीजें लिखी गई। कहने को उनको वो कविताएं लिखी गई, लेकिन वो कविता थी या नहीं थी अलग बात है
2: जी।
3: लेकिन उसी समय मुझे

0: बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला अपने नाना जी से, जिन्होंने मुझे मेरे लेखन को सराहाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो यहाँ से शुरू हुआ था। तो स्कूल में भी थोड़ा मुझे ये हुआ कि मेरे अध्यापकों ने भी मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे जो लिखा था उस लिखे को एक तरह से उन्होंने पहचाना। ये अलग बात है कि मैं बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया कुछ कारणों से, उस सेटबैक भी पहुंचा कि मुझे कहा गया कि अपनी कविता सुनाओ एक समारोह में, वो सुना नहीं पाया मैं, यानी मुझे बुलाया नहीं गया मंच पे। लेकिन उस वक्त भी मेरे नाना जी ने मेरा साथ दिया और कहा कि ये तो सब बाधाएं आती रहती हैं। और उस आसपास भी वातावरण कुछ ऐसा था, हमारे घर में तो आते ही थे कुछ साहित्यकार, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र आदि का मेरे को नाम याद है, और चौराहों पर जो ना कुछ कवि सम्मेलन जैसे हुआ करते थे, उनको भी सुनने के मुझे छूट थी। आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: क्या बात।
0: उसमें बाल साहित्य यानी बाल बच्चों के प्रोग्राम जो है रेगुलरली नियमित रूप से मैं सुनता था। छोटा सा रेडियो होता था वो, उन दिनों टेलीविजन तो था नहीं। और अखबारों का बड़ा योगदान है, बाल साहित्य छपता था, पढ़ने का मुझे शौक हो गया। तो इसके बाद जो है बस आगे बढ़ते चले गए और यूं समझिए कि बीए में भी मुझे जो ना एक दो अध्यापक ऐसे मिले जिन्होंने मुझे मेरे साहित्यकार रूप को प्रोत्साहित किया। और मैं गीत नुमा कुछ लिखा करता था
1: जी।
0: गंगा प्रसाद विमल मेरे एक अध्यापक थे जिन्होंने मुझे जी। फ्री वर्स या मुख छंद की और वो लेके आए
1: जी।
0: और करते कराते शायद 1900 जहाँ तक मुझे याद है एक पत्रिका होती थी मणि में
1: जी।
0: जो कलकत्ता से निकली थी और उसमें एक कविता छपी थी मेरी एक सूत्र जो कि ठीक की थी विमल जी ने ही
1: जी।
0: मतलब उस समय के अध्यापक ऐसे होते थे कि वो आपको प्रोत्साहित भी करते थे, आपकी चीजों को अपने तरीके से
1: बताते
0: थे, जिसको सलाह उर्दू में तो ये काफी है चीज, लेकिन हिंदी में भी इस तरह के अध्यापक होते थे। तो जो एक सूत्र है मणिमय के मई 1970 वो छपी थी और ये पत्रिका कोलकाता से निकलती थी, मतलब उस समय कलकत्ता ही बोलेंगे, अब कोलकाता कहेंगे। तो यहाँ से फिर शुरू हुई। और फिर मैं काजल जी हमारा वो जो समय था, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में था, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है, मैं उसको आज भी आज तक का स्वर्णिम काल कहता हूँ। यानी इतने हमारे आसपास अध्यापक भी और नए लोग भी थे जो कि साहित्य में और कलाओं में रुचि रखते थे, वो तरह एक तरह का विस्फोट था उस समय। आप ये सोचिए कि मेरा जो नाम दिविक रमेश है, ये दिविक वैसे ही वातावरण से आया था। हमारा एक सामूहिक संग्रह छपा था जिसका नाम दिविक था
1: जी।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय कविता, अब तक मैं रमेश शर्मा के नाम से लिखता था। और उसके बाद जो है दूसरा दिविक निकला था जिसका मैं संपादक भी हो गया था, उसमें मैं दिविक रमेश हो गया था। उन्हीं दिनों मुठियों बंद आकार, वो तो साहित्य जो सभा होती है यानी विभाग की, हिंदी विभाग की, उसी से निकला था वो संग्रह। और संपादक मंडल में एक मैं भी था रमेश शर्मा के नाम से, रामदास मिश्र जी थे और एक दो लोग थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसा वातावरण था, कॉलेजों में कविता प्रतियोगिताएं होना, कहानी प्रतियोगिताएं होना, ऐसे संकलन निकलना, उन्होंने भी बहुत मदद की होगी कि हमारा जो रचनाकार रूप है वो आगे बढ़ता चला जाए। ये है संक्षेप में मैंने बताया आपको।
1: तो बाल, अब जिस तरह से आपने कहा, आपने कहा अपना पूरा सफर बताया, लेकिन जो बाल साहित्य की जिस तरह से आपने बात की कि आप आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम सुना करते थे, उसे आपको बहुत सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो बाल साहित्य लिखने की प्रेरणा आपको कैसे, आपने बाल साहित्य ही क्यों चुना जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्या कहेंगे?
0: देखिए मैं तो बड़ों के लिए लिखता था पहले शुरू से ना, और मेरा पहला जो संग्रह था वो रास्ते के बीच आया था, जिसके लिए कविताओं का चयन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया था। और इस संग्रह के आने के पीछे भी आकाशवाणी का बहुत योगदान।
1: अरे वाह।
0: वो यूं कि आप जब देखिए उस समय शायद गिरिजाकुमार माथुर जी थे आकाशवाणी में और वो प्रयोग करते थे, कम से कम दो कार्यक्रम तो मुझे याद आ रहे हैं। यूं समझिए कि बावलंकर हॉल में, इतना बड़ा हॉल,
1: पहले वहीं हुआ करते थे प्रोग्राम,
0: उसके सामने मतलब सबके दर्शकों के सामने जो है रिकॉर्डिंग होती थी
1: जी।
0: ऐसे ही शायद किसी एक आध जगह और ऐसे

0: युवा था,
1: जी
0: तो मैं तो बहुत युवा था, जुड़ा तो था मैं यहाँ युवाणी प्रोग्राम से, बराबर आता था, लेकिन बहुत युवा था। तो पता नहीं कैसे मेरी कविताएं भी चुनी गई थीं महामावलंक हॉल में सबके सामने सुनाने के लिए, और वहीं रिकॉर्ड भी होनी थी। जब वो प्रोग्राम समाप्त हो गया तो जिन्होंने चुनी थी, जिनको ये दायित्व तो दिया गया था, उनमें एक अजित कुमार थे, एक शमशेर बहादुर सिंह जी थे।
1: जी।
0: तो मुझे तब तक पता ही था कि शमशेर जी जिस दिल्ली के जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहीं वो भी रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, और जब कहा तो उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे अच्छी लगी थी आपकी कविताएं, मैं देखता रहता हूँ छोटी पत्रिकाओं में काफी छपती हैं, तो आप एक साथ सब कविताएं मुझे पढ़वाइए। और मैंने हाथ से लिखा करते थे हम, प्रतियां भी हाथ से ही बनाई जाती थी, दो दो तीन तीन बार, ऐसा कोई और तो था ही नहीं, ना कंप्यूटर था ना कुछ था। तो उनको मैंने दे दी, उन्होंने जब मैंने दी तो उन्होंने चयन किया, मुझे बहुत सारी चीजें समझाई भी, और वो संकलन बना था रास्ते के बीच, और रास्ते के बीच पहला ही संकलन था जिसपे सोविटलैंड नेहरू अवार्ड मिला था मुझे।
1: अरे वाह, क्या बात, क्या बात।
0: आप ये देखिए, तो वो तब तक मैं बड़ों के पत्रिकाओं में भी खूब छपने लगा था, ये धर्मयुग वगैरह में, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आपको ध्यान होगा, कादंबरी वगैरह, तो छोटी पत्रिकाओं से आया मैं, लेकिन बड़ी पत्रिकाओं में भी मेरी पहुंच हो चुकी थी। और रास्ते के बीच निकलने के बाद तो एकदम से ऐसा हुआ कि मैं क्या कहूँ, बहुत हाथों हाथ लिया गया।
1: क्या बात,
0: आप यानी केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि ने उस समय की जो बहुत बड़ी मैगजीन थी अजमेर की, लहर से आती लहर, उसमें लगभग 15-20 पृष्ठ का लेख लिखा था एक संग्रह पर,
1: आपके संग्रह पर, क्या जी, बात, वाह,
0: केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा
1: जी।
0: और वो उनकी पुस्तक है विवेक विवेचन, उसमें आज भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा वातावरण था। ऐसे में जो है, जो मैंने पहले लिखा था बचपन में वो तो एक तरफ हो गया,
1: एक तरफ हो गया जी, बिल्कुल,
0: तो मैं तो इधर ही बढ़ रहा था। तो ऐसे में जो है ना, एक सज्जन मुझे मिले, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। वो लंदन से जुड़े हुए थे, देवेंद्र कुमार
1: जी,
0: उनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है
1: जी,
0: और बड़े अच्छे कथाकार और कवि रहे हैं। उन्होंने एक तरह से मुझे चुनौती दी, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लिखिए, नंदन के लिए लिखिए, और हम आपको बहुत और भी अधिक प्रसिद्ध करेंगे
1: जी।
0: और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मैं जो सोचता था बड़ा आसान है बाल साहित्य लिखना, मुझे पसीने छोड़ गए। 6 महीने तक मैं ठीक ठाक नहीं लिख पाया, मैं सोचता था बड़ा आसान है, जब मर्जी लिख लो, लेकिन जो मुझे भी संतोष दे सके और मेरे पाठक को भी, ऐसा लिखने में मुझे बहुत बाधाएं आई। फिर 6 महीने बाद जो है कुछ कविताएं लिखी गई, जो मैंने धर्मयुग में छपता ही था वहां ही भेजी, लंदन में भी 6 भेजी, और धर्मयुग में मेरी कविता जो है मुन्ना बन बैठा दादा जब, 12 फरवरी 1978 के अंक में छप गई, यानी वो छपने वाली पहली कविता थी,
1: पहली कविता थी,
0: और मेरी पहली कविता जो है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में ले ली गई।
1: वाह, क्या बात,
0: वहीं से,
1: वाह वाह।
0: तो एक तो ये समझिए कि मुझे बचपन में जो प्रोत्साहन मिला नाना जी से,
1: बिल्कुल
0: एक इस तरह के जो प्रोत्साहन मिले,
1: वाकई वाकई
0: चाहे केदार जी ने दिया हो, चाहे शमशेर जी ने दिया हो,
1: चाहे पत्रकार हो, प्रोत्साहन तो है ही, पुरस्कार है अपने आप में।
0: तो फिर मैं जो है, फिर उसके बाद नंदन के संपादक जो होते थे जयप्रकाश भारती जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, वो मुझे बहुत मानते भी थे, अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, उन्होंने बहुत बड़े सभागार में किसी शायद बल्गेरियन एम्बेसी, उन दोनों करवा करते थे सांस्कृत कार्यक्रम, उन्होंने ये बोल दिया कि अगले 20-25 वर्ष के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो देवी के रमेश रहेंगे बाल साहित्य में। अब ये उनका कहा हुआ है, मेरा कहा नहीं है, उसको लेके बहुत सारे लोगों को
1: बात सच साबित हुई,
0: वो हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस समय बड़ी तकलीफ हुई थी सुनकर के, वो तो मुझे कम उतनी सी कम उम्र में

0: सृजनात्मक साहित्य पर सोविटलैंड नेहरू अवार्ड मिला पहला, उससे भी हुई थी कुछ लोगों को, लेकिन खैर वो अलग बात है
1: जी जी।
0: तो बस उसके बाद जो है मेरा पहला बाल कविता संग्रह जो निकला जोकर मुझे बना दो जी, वो 1980 में छपा। और पहला कहानी संग्रह धूर सा दूर किसान, उन दोनों में थोड़ा सा लोक की तरफ भी झुका हुआ था
1: जी जी।
0: वैसे आज तक भी मुझे लोक से ताकत लेने में बड़ा अच्छा लगता है, कविताओं में भी,
1: लोक साहित्य में तो हमारी जड़ें होती हैं, हमारी रूट्स होती हैं,
0: भाषा के स्तर पर भी, शब्दावली के स्तर पर भी। तो वो छपा 1984 में, बस वो चल निकला तो चल निकला,
1: सफर चल पड़ा। घड़ी हमसे कह रही है कि कार्यक्रम का वक्त खत्म हुआ है, लेकिन डॉक्टर देविक रमेश से हमारी बातचीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, तो लेकिन वक्त को देखते हुए बातचीत को यही विराम देते हैं। अगले कड़ी में एक बार फिर से डॉक्टर देविक रमेश से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए काजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि में आज आपने सुनी डॉक्टर दिविक रमेश से बातचीत, भेंटकर्ता व प्रस्तुति काजल सूरी। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनिए।

وإن

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ट बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम इस कार्यक्रम को लेकर के इस समय आपके साथ आपसे बातें करने के लिए मौजूद है कमलेश और
1: यमुना।
2: क्या बात है।
1: और देखो जब मैं आ रही थी कार्यक्रम के लिए तो कई बार ये होता है कि हम इतने एकदम अपने में मगन हो जाते हैं और आज भी हो गए मगन। तभी तो बड़ों का फर्ज होता है छोटों का समझाना, छोटों का फर्ज होता है हाँ बड़ों ने कह दिया तो बाप मानना ठीक है।
0: वही है ना, मुझे बोलने का मौका नहीं दी और ऊपर से गलती मेरी निकाल के मुझे ही डांट रही है, होते बड़े बुजुर्ग का कायदा।
1: भाई ये देखो ऐसा ही तो होना चाहिए, तभी तो देखो हंसी ठहाटे गूंजते हैं, तभी एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो देखो ये जब थोड़ी बहुत हम एक दूसरे से अगर हंसी ठट्ठा नहीं करेंगे तो कार्यक्रम में जान भी नहीं आएगी। तो बहनों सबसे पहले स्वीकार कीजिए हम दोनों का
0: राम राम। और कार्यक्रम के पिटारी में बहुत कुछ है आज, और गीत संगीत का भी मनोरंजन आप उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हंसने की बात आई, ठहाकों की बात आई, तो हंसना क्यों जरूरी है इस पर भी थोड़ी सी बात कर ले।
1: तो पहले हंस के तो दिखा दो। क्योंकि कहते हैं ना कि आजकल हम कहीं पर भी जाएं तो हम कई बार इंग्लिश में बोलते हैं फेक हंसी हंस रहे हैं हम तो, लेकिन हम कहेंगे कि भाई हमें फेक हंसी क्यों हंसनी है, हमें तो छोटी छोटी बातों में से हंसी के फव्वारे उठा लेने हैं और अपनी जिंदगी में हंसी को कायम रखना है।
0: बिल्कुल, और हंसना इसलिए भी जरूरी है कमलेश क्योंकि यह मानसिक तनाव को जो है मेरे कम करता है, चेहरे पर एक तरीके से चमक लाता है, लेकिन फेक वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो दिल से निकले और वाकई अपने मन को तो प्रफुल्लित करे ही और दूसरे को भी सुकून पहुंचाए, ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, तो शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी बात है खुलकर हंसने से फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है और मांसपेशियां जो हमारी होती हैं वो आराम में पहुंचती, माने रिलैक्स मिलता है उनको।
1: अच्छा, जब मैं अभी आपसे बात कर रही थी, बहनों से बात कर रही, तो मुझे एक ना चुटकुला याद आ गया। हालांकि है तो ये चुटकुला नहीं है, लेकिन हमने ना इसको चुटकुले की तरह से ना हमारे गांव में बोला जाने लग गया। अब एक ताई जी थी, देखो जो ताई जी सुन रही हैं तो कृपया बुरा ना माने क्योंकि इसको हम सबने ना एक चुटकुले के रूप में ले लिया। तो कई दिन हो गए उनको दिल कर रहा था कि भाई जलेबी खानी है। अब बच्चों को कहें कैसे जलेबी खानी है, जलेबी खानी है। भाई आजकल तो बच्चे हमसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, नहीं आपको ये मीठा नहीं खाना, नहीं आपको इतना नमक नहीं खाना, नहीं आपको ये नहीं खाना। ठीक है, अच्छी बात भी है। अब ताई जी ने क्या सोचा कि ऐसे तो बच्चे मुझे जलेबी खाने नहीं देंगे, तो उन्होंने एक ना तरकीब आजमाई। उन्होंने क्या कि थोड़ी सी देर बाहर निकली और जो पड़ोसन थी उसके घर पे जाके कहती, अरे अरे मुझे पकड़ो, अरे अरे मुझे पकड़ो, जा जा जा जा जा आ पकड़ो। अब वो ताई जी क्या हुआ, ताई जी क्या हुआ, ताई जी क्या हुआ। अब ताई जी जो है वो कुछ बोले ना, बस ये बोले जाए जा जा जा जा जा जा जा। अब कहे जा से हम कुछ समझे नहीं,
0: जलेबी

0: 있네.
1: 또 있네면 가지고 보다가 봤다와. 예. 나디 나디 껴와. 그때 젠젠젠자 젠젠자. 아레 나디 क्यों इतनी आप एक्टिंग कर रही हो, मैं आपको जलेबी ला कर दे देता हूँ, आप ना अपने घर पे ही चलो. तो देखो ये सही बात थी या गलत बात थी, लेकिन जब भी कुछ ऐसी बात होती है हंसी की तो कहते हैं कि भैया अगर कोई चीज मांगनी हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे कि अपने घर में आराम से आप चीजें खाइए, बच्चे हमारा ध्यान रखते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और जहां तक हंसी की बात है, जब हम हंसते हैं तो देखिए हमारे हृदय भी स्वस्थ रहेगा, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा बनेगा. सबसे बढ़िया बात ये कि रिश्ते हमारे अच्छे बनते हैं.
0: बिल्कुल, आप जो कह रही, रिश्ते अच्छे बनते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है. जो हंसता हुआ जो हमारा चेहरा होता है, नूरानी चेहरा, वो वाकई उसकी बात ही कुछ अलग होती है. क्योंकि जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है, जो एक ग्लो आता है जब हम किसी से मिलते हैं, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है. और कमलेश, कुछ कहना चाह रही हो क्या?
1: हाँ हाँ बिल्कुल कहना चाह रही हूँ. मैं यही बात कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं नूरानी चेहरे की, कई बार तो हम किसी का भी चेहरा देखते हैं तो उसके चेहरे को देखते ही रहते हैं कि देखो इसके चेहरे पर हमेशा ही स्माइल बनी रहती है, कभी भी हमने इसको जो है गुस्से में नहीं देखता. और जो आज का दिन है वो तो है ही हंसी का, तो आइए हम सब हंसी की जो ताकत है उसका जश्न मनाए. क्योंकि अगर हम शांतिपूर्ण दुनिया चाहते हैं तो हंसी को हमें एक साधन के रूप में देखो अपनाना ही होगा. क्योंकि जब आपको बेहतर नींद चाहिए तब भी आपको हंसना होगा. आपने कभी ध्यान से देखा कि जब आप तनावग्रस्त होते हैं और ऐसे में अगर कोई आपको हंसा देता है, ऐसे में कोई ऐसी छोटी सी भी हंसी की बात को बता देता है, तो आप जो है सारा तनाव भूल जाती हैं. और जब चेहरे की बात करते हैं तो बस वही, फिर तो कहना ही क्या.
0: हाँ, तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा कैसा लग रहा है गीत के माध्यम से सुनते हैं.

0: देखो कमलेश, हर किसी को आज़ादी पसंद होती है, किसी भी मामले में हो, चाहे बोलने की हो, चलने की हो, खाने पीने की, सोने जगने की हो, लेकिन कुछ लिमिट में जो होता है वो ज़रूरी होता है लिमिट उसके लिए लगाना। और ख़ास करके जब प्रेस की आज़ादी की बात होती है, तो आज कुछ खास ऐसा ही दिन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
1: और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, इसका महत्व यह है कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसका क्या उद्देश्य है, और इस पर हम चर्चा भी करें। और जो मीडिया हमें खबरें देता है उनकी खबरें कैसी होनी चाहिए, और जो खबर वो देता है क्या वो सटीक है, कहीं ऐसी तो नहीं है भ्रामक है, कहीं ऐसी तो नहीं है कि जनता को गुमराह कर रही हो, तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।
0: जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, तो आज 3 मई को ये मनाया जा रहा है, जो कि मीडिया की स्वतंत्रता की हम बात करें, पत्रकारों की सुरक्षा की भी हम बात करें, और प्रेस के जो बुनियादी जो सिद्धांत है उसके जश्न मनाने का ये दिन है। और खास करके संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिन लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र मीडिया के महत्व और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति ये प्रतिबद्धता अपनी दोहराती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रेस के जरिए, प्रेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम अगर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे न्यूज़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और जानकारी से भरपूर होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो मन को झकझोर देता है, या
1: बिल्कुल
0: कुछ ऐसी गलत बातें आ जाती हैं जिसे बाद में किया जाता है ये कहकर कि ये भ्रामक समाचार था और गलती से चला गया। तो कभी ये होता, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जब हम प्रेस की चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उस पर पूरा फोकस करने के साथ साथ ये भी देखें कि वाकई यह न्यूज सत्य है कि नहीं है। तो एक ऑथेंटिक तरीके से पता करने का भी जरिया आपके मन में होना चाहिए कि ये सही समाचार आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि फेसबुक की बात करें या हम और चीजों की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें बन करके आ जाती हैं जो वाकई वो सत्य नहीं होते हैं। तो कोशिश हमारी ये भी होनी चाहिए कि आज़ादी जो हमें प्रेस की दी जा रही है उसके तहत हम जो भी प्रस्तुत करें वो सही ढंग का हो और जनता तक हम सही बात पहुंचा सकें।
1: और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर जो बात सही कहता है उसके ऊपर जो है कई बार लांछन भी लगा दिए जाते हैं कि भी तुमने ये बात कैसे कह दी, तुम तो इस काबिल ही नहीं थे, तुम कहाँ से ये खबरें लेकर आए। तो जो पत्रकार हैं उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी भी जो सुरक्षा है उसको हमें सुनिश्चित करना ही होगा। और कई बार ये भी होता है कि पत्रकारों पर हमले हो गए हैं तो उसकी जानकारी भी उनको होनी चाहिए, उसकी
0: बिल्कुल
1: निगरानी भी रखनी चाहिए, और पत्रकारों के क्या क्या अधिकार हैं उनके उनके अधिकार मालूम भी होने चाहिए, क्योंकि जब उनको अधिकार मालूम होंगे तभी तो वो स्वतंत्र रूप से और सजग होकर कार्य
0: अपना
1: कर
0: काम कर
1: पाएंगे।
0: सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है उनकी सुरक्षा को लेकर के भी बहुत ही गंभीर बात है कि सुरक्षा उनको प्रोवाइड करा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा अगर सही रहेगी, वो सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हमारे तक ये समाचार आएगा कोई ना कोई।
1: बिल्कुल, और आज का दिन कुछ जो पत्रकार हैं उनके लिए बहुत ही सम्मानित करने वाला दिन भी होता है कि उनको सम्मान दिया जाता है कि उन्होंने युद्ध के जो समाचार थे वो इतने अच्छे तरीके से पहुंचाए, या कहीं पर आपदा थी उसके समाचार इतने अच्छी कवरेज उन्होंने करी, अपने जान को जोखिम में डालकर उन्होंने ये कार्य किया, तो उनको आज के दिन जब सम्मानित किया जाता है तो सच में यमुना बहुत ही अच्छा लगता है।
0: और हम यही कहेंगे कि सब कुछ जनता का है, ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपका इसी से संदर्भ से रिलेटेड कुछ हम आपको सुनवाते हैं। ये ऊंचे

0: बिल्कुल, रुपए पैसे आने सब कुछ जनता का है, ये प्रजातांत्रिक हमारा देश है और बहुत सी आजादी हमें भी है, कुछ बातचीत करने का, कुछ कहने का, और बहनों के बीच हम आ चुके हैं और जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय, गृह लक्ष्मी और आपके साथ हैं
1: कमलेश मुद्गल और मेरे साथ हैं।
0: यमुना। तो अब आगे जो बातचीत का सिलसिला है, जानकारी से भरपूर कुछ न कुछ आपके लिए हम लेकर आते हैं और खास करके इस हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनों को कैसे सहायता प्रदान की जाए, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित कुछ बातचीत भी है। कमलेश क्या बताना चाह रही?
1: मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज हम अपनी बहनों के लिए लेकर आए हैं एक बातचीत, स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं का विकास। डॉक्टर निशी शर्मा, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक उषा, उनसे बात कर रही हैं शिव नंदन लाल। तो बहनें सुनेंगे बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, अकेले करते हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें हमें उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसी कार्य को हम समूह में करें तो उसमें सबके अपनी राय भी होती है और कई लोगों के अपने विचार भी होते हैं, और उससे क्या है कि आपस में एक दूसरे का फायदा भी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि

0: वो स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं का विकास किया जा सकता है और ये किस तरीके से देश के विकास में भी भागीदार हैं। और इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निशी शर्मा जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर निशी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये स्वयं सहायता समूह क्या है।
1: जैसा कि इसका नाम बताता है, अपनी सहायता के लिए समूह। और ये समूह वैसे तो महिलाएं पुरुष कोई भी बना सकता है, पर देखा गया है कि ज्यादातर जो महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो थोड़ा सा पिछड़ी हुई हैं पुरुषों की अपेक्षा। जैसे सामाजिक रूप से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं समाज में, तो ये उनके समूह होते हैं, अपने लिए ही वो सहायता करते हैं। जैसे ये समूह होता है, 10 से 20 महिलाएं मिलके एक जैसे आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड से आती हैं, वो ये अपना समूह बनाती हैं। स्वयं सहायता समूह की जो शुरुआत होती है वो ये होती है, क्योंकि महिलाओं को सबसे अधिक आवश्यकता होती है पैसे की, अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को चलाने के लिए, अपने घर में अच्छा भोजन के लिए, छोटी मोटी जरूरतों के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये शुरू करती हैं, एक नियम बनाती हैं, क्योंकि ये एक अनौपचारिक समूह होता है। वो अपना फिक्स करते हैं कि हर महीने हम कितना धनराशि जमा करेंगे आपस में, और जो जमा करते हैं एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इसके नियम होते हैं, मीटिंग करती हैं आपस में हर महीने, हर हफ्ते, जो इनको सुविधा होती है, ये अपना धन इकट्ठा करती हैं आपस में मिलके।
0: तो लगभग इसमें जैसे एक समूह में कितने मेंबर तक रहते
1: बीस
0: हैं?
1: मेंबर तक, 10 से 20 तक, एक समान विचार की होती हैं, एक सा ही उनका आर्थिक तय की उनको जरूरत होती है, तो पहले अपने पैसे इकट्ठे करती हैं।
0: यानी जरूरत पड़ने पर सारे इकट्ठी भी हो जाते हैं, मतलब एक मोहल्ले की
1: एक
0: हो
1: मोहल्ले
0: या
1: की जो
0: कि
1: आसपास रहती हैं, एक गांव में हैं, वो इकट्ठी होती हैं। जो आपस में होते हैं ना, जो जान पहचान की महिलाएं होती हैं,
0: जी
1: उनका प्रेशर एक दूसरे के ऊपर होता है। तो ऐसा देखा गया है कि कोई इसके अंदर डिफॉल्टर नहीं होता, सब अपना ऋण टाइम से देती हैं, वापस करती हैं। और जैसे जैसे वो पैसा बढ़ता है, तो ये अपने एक समूह का, जब लगता है कि 1-2 साल हो गए हमारा समूह सही चल रहा है, अपना एक नाम रख के, अपनी एक आइडेंटिटी रख के, जो वहाँ का स्थानीय बैंक है, उस स्थानीय बैंक के साथ ये लिंक करके ये अपना आगे कार्यक्रम बढ़ा सकती है।
0: तो इसका कहीं रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है?
1: हाँ, ये बैंक के साथ होता है, तो जो स्थानीय बैंक होता है, ये एक नाबार्ड की स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो उसके अंडर ये स्थानीय बैंक से लिंक करती हैं, जिसको सपोर्ट एक नाबार्ड करता है।
0: तो ये तो बात हो गई, जैसे महिलाएं आपस में थोड़ी थोड़ी बचत करके इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को लोन देती हैं। लेकिन बात जहाँ तक आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो महिलाएं कुछ आपस में मिलके कुछ सामान भी तो बनाती होंगी, उसको भी तो वो कहीं न कहीं बेच
1: जी,
0: के कुछ पैसे इकट्ठा कर सकती हैं।
1: जब पहली परिस्थिति होती है, उनका जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जब
0: जी
1: धीरे धीरे होने लगती हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो लोकल ग्रामीण संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होती हैं, कई वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इनको सपोर्ट करती हैं। फिर जो उस क्षेत्र का जो लोकल क्राफ्ट होता है, उनकी कला होती है, चाहे भोजन बनाने की चीजें हों, या आर्ट का काम हो, या कढ़ाई
0: का
1: बुनाई का हो, इस तरह के जो भी वो वहाँ पे कारीगरी सीख सकते हैं अपने घर में बैठ के और बना सकती हैं, वो उनको उसकी प्रशिक्षण देते हैं, तो ताकि वो उनका स्किल डेवलप हो। और आपने देखा होगा कि ये सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार, जैसे अभी दिल्ली में ही 2 दिन से लगा है सरस मेला, तो सरस मेला में हम देखेंगे अलग अलग प्रदेश से जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी महिलाएं आई हैं, और वो आके अपना सारा जो सामान है वो यहाँ बेच रही हैं,
0: अपने हाथ का बनाया हुआ।
1: अपने हाथ का बना हुआ, उनको एक मार्केट प्लेस बना है। ऐसे ही हम अलग अलग प्रदेशों में भी जाते हैं, तो वहां भी जो मार्केट है, इनको एक दिन दिया जाता है। जैसे अभी मैं पीछे सोलन गई हुई थी, तो वहाँ हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज हैं, चाहे वो वहाँ पे उन्होंने खाने का सामान बनाया है, घी बनाया है, वहाँ की लोकल सब्जियां हैं, उसको प्रोसेस करके, पैकिंग करके वो बेच रही हैं वहाँ पे शहरी लोगों को, तो इस तरह की इनको मार्केट प्लेस दिए जाते हैं, ताकि ये अपना आगे बढ़े और अपना कमाएं।
0: जी, जैसे आपने मेले का जिक्र किया, और भी कृषि मेले भी होते हैं, लोकल लेवल पर भी
1: जी
0: मेले होते हैं, वहाँ भी महिलाएं अपने उत्पाद लगाती हैं। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि लखपति दीदी, तो वो क्या हैं?

0: और किस तरीके से उनका इसमें योगदान है।
1: जी, लखपति दीदी भी एक हमारी सरकारी योजना है। उसमें से कुछ जो महिलाएं हैं, जो हर समूह में से एक महिला को आगे बढ़ाया जाता है, उसको एक फाइनेंशियल, जैसे वित्तीय ट्रेनिंग दी जाती है कि पैसे को कैसे संभालना है, फिर उसको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, कोई कौशल दिया जाता है। जब वो कौशल और वो सब सीख जाती है, फिर उसको उद्यमिता की तरफ बढ़ाया जाता है। इसमें कोशिश ये रहती है कि ग्रुप में महिलाएं हैं, उनको इतना आगे बढ़ाया जाए कि उनकी जो सालाना इनकम है वो 1 लाख से ऊपर हो, तो उनको हम लखपति दीदी कहते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा होगा ड्रोन दीदी, वो कुछ महिलाओं को चयन करके उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने अपना इसको उद्यम बना के कृषि के अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे का था, फर्टिलाइजर का था, ड्रोन के द्वारा उन्होंने ये उद्यम बनाया और जिसके कारण उनकी इनकम बढ़ी।
0: जी बिल्कुल, सरकार तो अपना कार्य कर रही है लेकिन इसमें महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, लेकिन ये स्वयं सहायता समूहों को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ये क्या कुछ कर रहा है?
1: राष्ट्रीय आजीविका जो योजना है, मिशन है, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। उससे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के नाम से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को ही दिया जाता था।
0: जी
1: आगे जाके इसको मिशन मोड में बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर प्राथमिकता दी जाती है महिलाओं को आजीविका कमाने के लिए, उनको स्किल देने के लिए, जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप की मेंबर्स हैं। अगर अकेली महिला जाती है, उसको बड़ा मुश्किल होता है कि वो कहाँ जाए, कैसे जाए। स्वयं सहायता समूह उनके लिए एक माध्यम हो जाते हैं कि वो अपनी जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचने के लिए। जैसे बैंक से अगर उनको लोन भी लेना है, अपना आजीविका कमानी है, स्वयं सहायता समूह को अगर लोन लेना है, तो बैंक उनसे कोई कोलेटरल नहीं
0: गारंटी,
1: लेता है, गारंटी नहीं लेता है। वो एक जो उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो अपने आप में एक गारंटी है, तो इसलिए उनको एक बहुत आसानी से लोन मिलता है और उनको कम इंटरेस्ट पे मिलता है। और अगर वो टाइमली पेमेंट कर भी देती हैं महिलाएं अपने लोन का, तो उसमें भी उनको ब्याज में कुछ रियायत दी जाती है।
0: जी बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं पुराने जमाने में किसी साहूकार के पास जाते थे,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अब बैंक आगे आ गए हैं। और आपने कई बार नाबार्ड का जिक्र किया है, तो नाबार्ड किस तरीके से महिलाओं की, स्वयं सहायता समूहों की मदद करता है? क्योंकि ज़्यादातर सुनने में आता है कि हमें नाबार्ड से सहायता मिली है,
1: बिल्कुल
0: जिस स्वयं सहायता समूह की महिला से हम बात करते हैं, जिससे मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि मुझे नाबार्ड ने बहुत सपोर्ट किया है।
1: नाबार्ड बैंक का जो मेन फंक्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, जिसमें उनको लोन और क्रेडिट एक्सेस तो देता ही है। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं,
0: जी
1: बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उनको माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए, और उस ट्रेनिंग उसमें उनकी कौशलता बढ़ाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए कि वो आगे बढ़ें, और उनके लोकल बैंक हैं उनको भी रीफाइनेंस करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो नाबार्ड का कहें कि एक तरह से बहुत बड़ा रोल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूती देने के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए और उनका कौशल बढ़ाने के लिए।
0: तो जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं, या जैसे जिनका एक समूह बन गया और वो सोचते हैं कि हम ग्रुप को बहुत बड़ा बनाएं, तो क्या उसके अलावा भी दूसरा समूह बना सकती हैं?
1: कितने भी समूह बन सकते हैं, अपने समूह को वो बहुत बड़ा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन होती है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी जी
1: फिर उसकी फिर एक कंपनी लॉ और ये सब लगते हैं, छोटा ही समूह होता है। अब समूह की भी फेडरेशंस होती हैं, तो जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, समूह की फेडरेशन बन जाती हैं, हर समूह के
0: हाँ,
1: रिप्रेजेंटेटिव्स होते
0: कई कई
1: हैं।
0: महिलाएं कहते हैं कि हमारे पास 200 ग्रुप हैं स्वयं
1: हाँ, वो
0: सहायता
1: ग्रामीण
0: समूह।
1: स्तर पे होते हैं, फिर ब्लॉक स्तर पे होते हैं, उनकी फेडरेशन होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं।
0: इनका क्या कार्य होता है?
1: जो समूह हैं ग्रामीण लेवल पे हैं, फिर जो ग्रामीण लेवल पे बहुत सारे समूह मिलके, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलके, वो एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं। एक एक समूह का एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर होता है, जो वो पूरी स्कीम्स होती हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन आए। तो वो एक समूह नहीं बनता, अलग अलग होता है, पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इनके ग्रुप्स में होते हैं
0: मतलब
1: आगे
0: जो भी
1: फेडरेशन।
0: सूचना है हर
1: हाँ,
0: व्यक्ति तक पहुंच
1: पहुंच
0: जाती है।
1: जाती है। और इनकी फेडरेशन में भी उनके फिर अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो देखते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इन विलेजेस के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, वो चीज प्रमोट करते हैं, मार्केट प्रमोट करते हैं, स्कीम्स प्रमोट करते हैं, तो इस तरह से इनकी एकता में शक्ति हो जाती है।
0: जी बिल्कुल, एकता में शक्ति होती है और इससे महिलाओं का अपना विकास होता है। लेकिन ये जो स्वयं सहायता समूह है, देश के विकास में इनका क्या योगदान है?
1: हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है वोकल फॉर लोकल, तो इसमें महिलाएं जो हैं, हमारे जो लोकल क्राफ्ट है, जो टैलेंट
0: उत्पाद है
1: है,
0: जी,
1: उत्पाद है, वो उसको आगे बढ़ा रही हैं। जो भी छोटी छोटी उनके गांव के स्तर पे हो सकती हैं, कृषि के उत्पाद हो गए, डेयरी के उत्पाद हो गए, टेक्सटाइल के हो गए, वहाँ के हस्तशिल्प हो गए, और ये ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, जैसे कई महिलाएं हैं कि सैनिटरी पैड्स बना रही हैं रिमोट एरियाज में, जो वहाँ
0: हाँ
1: की
0: बाय से
1: बालिकाओं को
0: हैं
1: नहीं मिल पाते, और मिड डे मील में भी काम करती हैं, और पौष्टिक वहाँ के आहार होते हैं उनको बना के बेचती हैं।
0: बिल्कुल। जब उनका परिवार आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव देश पर भी पड़ेगा। तो
1: बिल्कुल पड़ेगा।
0: डॉक्टर निशी जी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाएं अपना भी विकास कर सकती हैं और देश के विकास में भी भागीदार बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं का विकास कैसे हो सकता है, वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं एक समूह बना करके, इस विषय पर अभी बहुत ही विस्तार में जानकारी दी डॉक्टर निशी शर्मा, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक है पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। खूनाया की निगाहों में चमक जाग उठी।

0: बता दें कि हम हैं गृह लक्ष्मी के अंदर कमलेश मुद्गल और मेरे साथ हैं
1: यमुना गर्ग।
0: और जब हम अपनी बहनों से बात करते हैं तो उनके लिए नई नई जानकारी हम लेकर ही आते हैं। और आज अगर हम बात करें कि हमारी जो बहनें हैं उनकी जो कहना चाहिए कि सफलता है उसका परचम जो है दूर दूर तक लहरा रहा है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी बहनें हैं उनके हाथ में बहुत ही हुनर है, और बार बार जब हम उनको बोलते हैं कि आपके हाथ का हुनर है तो उसको आगे लेकर जाइए, दुनिया को बताइए कि आपके हाथ में ये हुनर है, तो हमारी बहनें धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल, और आज हम ऐसी योजना की बात करने जा रही हैं, महिला ई हॉट। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है, और खास करके महिला उद्यमियों जो कि स्वयं सहायता समूह SHG जो समूह है और NGO को अपने जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं उसको लेकर के मार्केट तक पहुंचाने की सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। खास करके जो देखा जाए तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका भी यूज करती हैं वो, और बात करें किसी कमीशन की तो ऑनलाइन सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का अवसर प्रदान करना है, और इस पर उत्पादों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और कई बार ये भी देखा हमने यमुना कि हमारी बहनें जो हैं अपने घर में बहुत सारे काम करती हैं, चाहे वो अचार बनाती हैं, पापड़ हैं, बढ़िया हैं, या जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो कुछ बहनें घर पर ही चिप्स बनाती हैं। आप भी तो बनाती हो, मैंने कई बार देखा जब आप लेकर आती हो।
1: हाँ तो,
0: लेकिन आपने भी मार्केटिंग नहीं शुरू की।
1: नहीं शुरू की, वो बताओगी ना, तो मैं भी इसमें सोच रही मैं भी ऐसा कुछ
0: यही तो मैं कह रही हूँ कि आपस में जब दो सखियां मिलती हैं तो एक दूसरे का हुनर उन्हें मालूम होता है, तो उस हुनर को निखारने के लिए भी आगे कैसे बढ़ना है। जब हम बहनों को जानकारी दे रहे हैं तो भी आपके लिए भी तो जानकारी है।
1: बहुत सी ऐसी बहनें हैं ना जो ठंडी का सीजन आता है ना तो क्या करती हैं कि ऊन मंगा लेती हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप मुझे ऊन दे दो, मैं आपको स्वेटर बुन के दे दूंगी, और भगवान जी के छोटे छोटे कपड़े सिल के देती हैं, छोटे छोटे सिलाई का काम कर लेती हैं, घर बैठे ही ब्लाउज हुआ, पेटीकोट हुआ, बहुत से ऐसे सामान है जो सिल के देती, तो घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकती है।
0: और गर्मियों की जब अगर हम बात करें तो गर्मियों भी तो है ना कुछ सजावटी सामान बना लेती है, हस्तशिल्प की कितनी सारी चीजें हैं, जूट के भी उत्पाद बना लेती है, और जो खाने की चीजें होती है वो बना लेती है। गर्मियों में बड़ी जल्दी चीजें सूख जाती है तो वो भी पापड़ वगैरह वो सब बना के रख लेते हैं कि भैया जल्दी धूप तेज है तो फटाफट जो है वो चीजें सूख जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात ये कि ये मोबाइल के माध्यम से इसमें सब कुछ हो जाता है, तो ये जो मोबाइल है वो आपके कितने काम की चीज बन गया है।
1: हमने ये देखा कि एक मेरी बहन है, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आपकी साड़ी अगर हो तो उसका मैं लहंगा बनवा सकती हूँ।
0: अच्छा,
1: बहुत सुंदर चुनर भी उस पे बना दूंगी। हमने कहा ठीक है, कितने पैसे लग जाएंगे, हालांकि यहाँ पे नहीं बताऊंगी कितने पैसे लिए,
0: पता है वो थोड़ा गुप्त रहना चाहिए।
1: लेकिन इतना बेहतरीन उसने उन्हें बनाया कि उस साड़ी का क्या उन्होंने ग्लो दिया, क्या तरीका उन्होंने गोटा वोटा लगा के, तो जो चुनरी है वो बीकानेर की चुनरी को भी फेल कर दिया।
0: सच
1: में क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती।
0: तो आपने तो मुझे वो गीत याद ही दिला दिया। तो मंगवा दो जरा बीकानेर की चुनरी।

0: और कहते हैं ना कि जब मौसम खराब हो तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, खास करके स्वास्थ्य को लेकर के।
1: और जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम तो अपनी बहनों को हमेशा बताते ही रहते हैं, हमेशा हम आते ही उनको कहते हैं कि बहनों आपने खाना खाया, खाली पेट तो नहीं हो। और आजकल तो पानी की जो मात्रा है उसका तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, उसमें नींबू पानी भी पीना है आपको, छाछ भी पीना है, नारियल पानी भी पीना है। और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप धूप में ना जाएं तो बढ़िया है, और अगर जाना ही पड़ा तो अपना सिर ढक कर जाएं और साथ में अपनी छतरी भी लेती हुई जाएं।
0: आप जो कह रही हैं जाने की बात ना, तो रुका तो जा नहीं सकता क्योंकि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो इधर से उधर एक जिले से दूसरे जिले भी जाना है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी जाना
1: बिल्कुल
0: है,
1: जाना है,
0: तो
1: खुशियां तो
0: ऐसा
1: मनानी है।
0: मनानी ही मनानी है।
1: बिल्कुल
0: और खास करके जब शादी का मौसम होता है तो गीत संगीत खूब होता है, आप तो समझती हो महिला संगीत भी होता है, हम लोग भी नाचते गाते हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: बहुत से ऐसे चीजें होते हैं, ऐसे हमारे रस्म रिवाज होते हैं जिसको लेकर के हम चलते हैं खास करके शादियों में। तो अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें, साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान रखें, और हम भी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे
1: अच्छा,
0: बन्ना के बारे में।
1: अरे बनने की बात कर रही हो तो चलो हम भी साथ में गुनगुनाते हैं।

0: और अब हम आ गए हैं भारत की वीरांगना क्रम में रानी चेन्नम्मा के बारे में बताने के लिए। तो कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी, पहली महिला थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1824 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। घुड़सवारी तलवारबाजी में ये निपुण थी और अपने गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी न मानने पर अंग्रेजों से युद्ध इन्होंने किया था और उसके बाद में ये वीरगति को प्राप्त हो गई।
1: अद्वितीय दृढ़ निश्चय और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का परिचय इन्होंने दिया। तो देश पर जान लुटाने वालों के प्रति हम नमन करते हैं।

0: आपको चलते चलते अपना हम ईमेल का पता बता देते हैं, feedback@gmail.com, और जो हमारा पत्राचार का पता है, कृषि एवं गृह कांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, नई दिल्ली, पिन कोड है 110001।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।
0: तो इसी के साथ आज का हमारा गृह लक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त होता है। बहनों,
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में

0: समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
4: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 1:15 और 15 सेकंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर। स्वागत है आपका हमारे आज के इस एक ही फिल्म से प्रोग्राम में। दोस्तों, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं किसी की आंखों की नमी में, किसी की अधूरी मोहब्बत में और किसी के खामोश त्याग में। आज की हमारी फिल्म एक ऐसी दास्तान है जो आपको प्यार करना भी सिखाएगी और त्याग का मतलब भी समझाएगी। दोस्तों, हमारी आज की फिल्म है हंसते जख्म, जिसे निर्देशित किया महान फिल्मकार चेतन आनंद ने और अपने शानदार अभिनय से इसे यादगार बनाया नवीन निश्चल, प्रिया राजवंश और बलराज साहनी ने। दोस्तों, इस फिल्म की असली जान है इसका संगीत, जिसे सजाया है सदाबहार संगीतकार मदन मोहन ने और शब्दों का जादू बिखेरा है कैफी आजमी ने। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस गीत से जो मोहब्बत की बारिश जैसा है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

इस प्यारे से गीत के बाद फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर महेंद्र यानी बलराज साहनी से, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है अपनी बेटी चंदा यानी प्रिया राजवंश के साथ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक हादसा, एक गलती और चंदा की जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें छुपा है दिल का दर्द और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: इस दुख भरे प्यारे से गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सालों बाद चंदा अब ऐसी दुनिया में है जहां खुशियां सिर्फ दिखावा है। और तभी उसकी मुलाकात होती है सोमेश यानी नवीन निश्चल से, एक अमीर घर का लड़का जिसने अपने उसूलों के लिए सब छोड़ दिया। धीरे धीरे चंदा और सोमेश के बीच प्यार पनपता है। फिल्म की कहानी जारी रहेगी लेकिन इस खूबसूरत कव्वाली के बाद।
1: हाय तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना, मगर किस लिए।
1: इस खूबसूरत कव्वाली के बाद दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। चंदा अपने प्यार यानी सोमेश को छोड़ देती है, अपने फर्ज के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और अंत में वो अपने पिता की बाहों में दम तोड़ते हुए सोमेश से आखिरी वादा लेती है। क्या था वो आखिरी वादा, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म हंसते जख्म जरूर देखनी चाहिए। तो फिल्म के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले शामिल कर लेते हैं अपने दोस्तों के मेल जिसका बेसब्री से इंतजार है। तो पहला मेल हमें आया है हिंगोली महाराष्ट्र से, जिसे भेजा है शाहजी बोखड़े, नंदा हनुमान बोखड़े ने। और अगला मेल हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता

सिमरन मुखी जी का, शांति नगर से। इन्होंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड नंदा इसर जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी संडे। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी एंड हेल्दी संडे। गुड आफ्टरनून। आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इस फिल्म के गीत भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। और अगला मेल हमें आया है रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी जी का। और एक और मेल हम शामिल कर रहे हैं, संदीप मक्कर जी ने हमें ये मेल भेजा है। इनके साथ हैं ज्योति मक्कर, मन्नत भारत और कमल सहनी। और ये मेल हमें आया है पिंगावाला चौक गुरैया जलंधर से। और अगला मेल हमें भेजा है ग्राम भोईना पार लाटा बोर्ड जिला बलोद छत्तीसगढ़ से, देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई, गंगाराम साहू जी का। इनको भी ये फिल्म हंसते जख्म बहुत पसंद आ रही है, इसकी कहानी भी इनको बहुत पसंद आ रही है, और खासकर इनके गीतों की तो तारीफ इन्होंने बहुत की है। अगला मेल हमें मिला है अनिल मोहन जी का। नमस्कार जी, बेहद पसंद आ रहा है आपका प्रोग्राम, बधाई स्वीकार करें। स्वीकार करते हैं आपकी बधाई हम। ये मेल हमें मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। इनके साथ है उषा मोहन और टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से। और एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं। ये हमें मेल आया है दतरेंगी से, भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। इनको भी आज की फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई और उसके साथ साथ गीत भी बहुत पसंद आए। धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए। अगला मेल हमें आया है राजकुमार डूडी जी का, गांव फरासी जिला हिसार से। और इनके साथ है प्रमोद कुमार। इनको भी कहानी, फिल्म की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने लिखा है कि बहुत बढ़िया जानकारी दे रही हैं और गीत भी बहुत बढ़िया सुना रही हैं, तो धन्यवाद आप सभी का। एक और मेल हमें अभी अभी आया है, कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप चर्चा कर रहे हैं। 1973 में रिलीज हुई चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म हंसते जख्म, जो अपने दौर की एक बेहतरीन फिल्म थी, इसके नगमे आज भी सदाबहार गीतों की श्रेणी में आते हैं। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया था नवीन निश्चल और प्रिया राजवंश, बलराज साहनी और जीवन ने, और गीतकार कैफी आजमी। इतनी सारी जानकारी देने के लिए धर्मेंद्र छिप्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ है कपिल, ईशान और पूजा परिहार। ये मेल हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से। तो आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए और हमें मेल भेजते रहिए। आपका मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मेल हम शामिल करेंगे। अगर किसी का मेल मैं शामिल ना कर पाऊँ तो उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चलते चलते आप ये प्यारा सा गीत इस फिल्म का सुनते जाइए, फिल्म हंसते जख्म का।

फिल्म हंसते जख्म को कोई अवार्ड तो नहीं मिला, परंतु इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म उस समय की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का रीमेक बना पाकिस्तान में सन 1993 में। फिल्म का नाम था अरूसा। और अब वक्त है उस आपसे विदा लेने का। दोस्तों, हंसते जख्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार त्याग भी होता है और सच्चा अभिनय दिल तक पहुंचता है। इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: राम एक इलाके के लिए कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कमीशन ने मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। पोलिंग इस माह की 21 तारीख को होगी। दिल्ली के विवेक विहार में भयानक आग लगने के वाकये में 9 अफराद हलाक हो गए। मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने निशानों में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। आज दुनिया भर में प्रेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में आज से पहर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह शुरू होगी। आसाम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सिलसिले में सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सभी 126 नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती सुबह 35 अजला के 40 गिनती मराकज में होगी और इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुल 59 खवातीन समेत 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आसाम में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे और वहां 85.96% पोलिंग हुई थी। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती 77 मराकज में होगी। तमिलनाडु में गिनती के फराइज अंजाम देने के लिए 10,545 गिनती के अमले को तैनात किया जाएगा, जिन्हें 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन का ताआवुन हासिल होगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि 234 में से हर एक असेंबली हलके के लिए एक मुशाहिद इस कार्रवाई का निगरानी करेगा और कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएगा। पुदुचेरी में असेंबली चुनाव की गिनती के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी और निगरानी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। केरलम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीनियर अहलकारों ने केरलम में 140 गिनती मराकज में तैयारियों का हतमी दौर का जायजा लिया। वोटों की गिनती बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाने के लिए गिनती मराकज के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना जिले फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के तमाम अमल को मनसूख करने के गैर मामूली इकदाम किए हैं। मुआविन बूथों समेत सभी 285 पोलिंग बूथों में इस माह की 21 तारीख को दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधु और वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज सुबह विवेक विहार में आग लगने के अफसोसनाक वाकये में हुए जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। कौमी राजधानी में आग लगने के इस वाकये में 9 अफराद हलाक हुए हैं। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए फायर ब्रिगेड के अफसर मुकेश वर्मा ने बताया कि आग लगने का वाकया एक 4 मंजिला इमारत के कुछ फ्लोर में पेश आया। उन्होंने कहा कि बचाव और आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान इमारत से 15 अफराद को बचा लिया गया है।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने अहदाफ में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। खबरों से मालूम होता है कि 7 ओपेक प्लस मुल्कों ने अगले माह तेल की पैदावार के अहदाफ में तकरीबन 1,88,000 बैरल योमिया तक का इजाफा करने से इत्तेफाक कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात, यूएई के ओपेक से अलायदा होने और मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान यह मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा किया गया है। यूएई के ओपेक ग्रुप से अलग होने के बाद अब ओपेक प्लस में ईरान समेत कुल 21 रुकन ममालिक हैं। पिछले हफ्ते यूएई ने ओपेक से अलायदा होने का ऐलान किया था। आज दुनिया भर में प्रेस की आजादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन प्रेस की आजादी के हक में इकदामात की हौसला अफजाई और फरोग देने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आजादी की सूरत हाल का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। इस साल प्रेस की आजादी के आलमी दिन का मौजू है पुरअमन मुस्तकबिल की तश्कील। इस साल ये दिन इजहार राय की

0: 4:30 p.m. to 3:30 p.m. UAE time. The Indian High School in Dubai and Sharjah Indian School in Sharjah are serving as the designated examination centres. The examination has been overseen by the Consulate General of India in Dubai. The Indian Army contingent has departed to Cambodia for the second edition of India-Cambodia bilateral military exercise SINBACS 2. In a social media post, Additional Directorate General of Public Information of Indian Army said that the exercise is scheduled to be conducted at Techno Sen Phnom Tom Meraes Pirov Royal Cambodian Air Force Training Center, Camp Basil, from 4 to the 17th of this month. It added that the exercise will be conducted with focus on company-level joint training for conduct of operations in sub-conventional environment. Today is World Press Freedom Day. It serves as an occasion to encourage and develop initiatives in favor of the press freedom and to assess the state of press freedom worldwide. The theme for this year is Shaping a Future of Peace. We have a report.
1: The World Press Freedom Day was proclaimed by the United Nations General Assembly in 1993 following a recommendation adopted at the 26th session of UNESCO's General Conference in 1991. The occasion celebrates the fundamental principles of press freedom and is an opportunity to evaluate press freedom worldwide, to defend the media from attacks on their independence, and to pay tribute to journalists who lose their lives in the exercise of their profession. The day holds significance for press freedom and its independence. With Saklin, this is Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: Weather in Uttarakhand has taken a turn once again. Several parts of the state are witnessing intermittent rainfall, leading to a drop in temperature. The Met Department has forecast similar conditions to persist in the coming days. We have more details from a correspondent.
2: Light to moderate rainfall is being experienced in different parts of the state since this morning. Due to intermittent rain over the past 3 days, mercury in many areas has fallen below normal. According to the Met Department, Dehradun rainfall is likely to continue most parts of the state today and tomorrow. The department has also issued a warning of thunderstorms accompanied by strong winds during this period. An orange alert has been issued for hailstorm and heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Haridwar, Pauri, Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district, while a yellow alert has been issued for other areas. According to the Met Department, this spell of rain may continue in the coming days, which would lead to a further drop in temperature. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall today at isolated places over northeast India, Kerala, Mahe, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry. Places over Jammu and Kashmir, Ladakh, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh are expected to experience thunderstorms and lightning today. Similar weather conditions also likely to prevail today over parts of Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Odisha, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh. The weather agency further predicted heat wave conditions today in places over coastal Andhra Pradesh. According to IMD, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to witness hot and humid weather conditions till tomorrow. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 3:30 today. Sunrisers Hyderabad are currently in third place, while Kolkata Knight Riders are positioned in eighth place. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stage is set for counting of votes for four states' assemblies and one union territory tomorrow. All arrangement in place. Election Commission orders re-polling in all 285 polling stations of Falta Assembly constituency in West Bengal. Polling to take place on the 21st of this month. A massive fire claims 9 lives in Vivek Bihar area of Delhi. OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict. World Press Freedom Day been observed today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the Midday News.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
4: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
3: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
5: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यानम और माहे में होगी।
5: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
6: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
7: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
3: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
8: जनादेश 2026।
9: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
8: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
9: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
8: जनादेश 2026।
3: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी।

0: निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
2: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि

0: इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
1: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम केंद्रित है नरगिस दत्त पर, क्योंकि आज है 3 मई यानी उनकी पुण्यतिथि का दिन। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें उनकी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए याद करते हैं। साथ ही हम याद करते हैं उनको उनके पहले पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री के रूप में।

वही ऐसे मतवाले जिया वाली और जिनके दीवाने थे सभी, ऐसी नरगिस दत्त पर केंद्रित है हमारा आज का कलाकार कार्यक्रम। एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं नरगिस दत्त पर, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल पर। तो आप सभी श्रोता जानते हैं कि मदर इंडिया इंडस्ट्री की कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म ने आज भी लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई हुई है। मात्र 28 साल की उम्र में अपने हम उम्र एक्टर की माँ का किरदार निभाया और उन्हें इस फिल्म में सुनील दत्त से प्यार भी हुआ, जिनसे उनकी शादी भी हुई। इस फिल्म में नरगिस दत्त ने लीड रोल प्ले किया था और उन्होंने इसके जरिए अपने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली। केवल एक्टिंग ही नहीं, बल्कि उनके चुलबुले अंदाज, खूबसूरती और सादगी के भी लोग कायल थे। लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारी आज की कलाकार कभी एक्टिंग में नहीं आना चाहती थी, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जी हाँ, बेमन से आई थी एक्टिंग की फील्ड में। तो आगे और भी दिलचस्प बातें करेंगे, तब तक सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

तो भाई याद आ गई होगी फिल्म आवारा की ये कहानी, और इसमें घूमती मचलती हमारी नरगिस दत्त किस तरह पर्दे पर नजर आई थी, हमारी आज की कलाकार। तो बातें कर रहे थे हम नरगिस दत्त के जीवन के बारे में, तो आइए आगे की बात को आगे बढ़ाते हैं। नरगिस दत्त का असली नाम रशीद फातिमा था। उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माँ जदनबाई उस समय की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका, नृत्यांगना, निर्देशक और अभिनेत्री थी। जदनबाई भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकार भी थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अभिनय की दुनिया में आए। साल 1935 में जब नरगिस महज 6 साल की थी, तब जदनबाई ने उन्हें बाल कलाकार के तौर पर फिल्म तलाश ए हक से एक्टिंग की शुरुआत करवाई। इस तरह नरगिस की अभिनय यात्रा शुरू हो गई, मगर मन कहीं और था।

भाई प्यार करने वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं और डरते नहीं हैं, इसीलिए वो खुल के प्यार करते हैं। इसी तरह हमारी आज की अदाकारा, हमारी आज की कलाकार नरगिस भी नहीं डरी, और उन्होंने जिनसे प्यार किया उनसे शादी भी करी, और पर्दे पर भी अपने प्यार को बखूबी निभाया, और ऐसा निभाया कि देखने वालों ने उनके प्यार को सराहा, और इतना सराहा कि उनके दिलों में उनके अभिनय की छाप गहरी रही। लेकिन नरगिस दत्त के एक्ट्रेस बनने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। एक दिन जदन भाई ने नरगिस को महबूब खान के पास स्क्रीन टेस्ट के लिए भेज दिया। नरगिस का बिल्कुल मन नहीं था तो बेमन से टेस्ट दे आई। उनका इरादा था कि महबूब खान उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और वो डॉक्टर बनने का सपना अपना पूरा कर लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, महबूब खान उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका के रूप में चुन लिया। इसके बाद साल 1945 में महबूब खान की फिल्म हुमायूं आई, लेकिन असली सफलता मिली साल 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात और दिलीप कुमार के साथ अंदाज में, जिसने नरगिस को स्टार बना दिया। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल से, जो है आपका मनपसंद चैनल और मनपसंद प्रोग्राम अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ। तो भाई, आपकी कैसी प्रतिक्रिया है आज के कार्यक्रम को सुनकर और आज की हमारी कलाकार को सुनकर, जो है नरगिस दत्त पर केंद्रित। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री थी, जिन्हें पद्मश्री 1958 में मिला मदर इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार।

पुरस्कार मिला 1958 में, और रात दिन फिल्म के लिए 1967 के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी मिला था। वे पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री भी थीं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो भाई अपनी ईमेल आईडी पर के जरिए हमें भेजिए जल्दी से जल्दी अपने विचार। हमारी ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। हम आपके विचार पहुंचाएंगे अपने सुनने वाले तमाम श्रोताओं तक। तब तक आनंद लेते हैं इस गीत का।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आपके संदेश हमें प्राप्त होने लगे हैं। सबसे पहला संदेश जो हमें आया है वो आया है अनिल मोहन जी का, और ये हमें भेजते हैं तृप्ति जौहरी जी। नमस्कार, तो आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ही कलाकार कार्यक्रम में महान अभिनेत्री नरगिस दत्त की फिल्मों के गीत सुन रहे हैं, और उनके अभिनय को भला कौन भुला सकता है, और उनकी तारीफ लिखी है, उनके फिल्मों के नाम लिखे हैं आपने। और संदेश भेजने वाले हमारे ये अनिल मोहन जी के साथ हैं उषा मोहन टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से आप हैं मधु नायक जी, तो आपका धन्यवाद। इसके साथ ही हमें संदेश भेजा है संदीप मक्कर जी का, हमारा भी जिया बेकरार हो जाता है जब आप नहीं आते। नाइस सॉन्ग, अरे क्या बात है, आपके संदेश से हमारा भी जिया बहुत खुश हो गया। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल और पिंगा वाला चौक कुराया जालंधर पंजाब से। तो हमारे अगले साथी हैं तृप्ति जौहरी जी। नमस्कार, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, इसका आपका तहे दिल से शुक्रिया। शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारी बधाई स्वीकार करें। पीटीआई संसद मार्ग से ये हैं हमारे साथी अनिल मोहन जी, तो आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और समय समय पर संदेश भेजते रहते हैं। अगला संदेश हमें भेजा है सुदर्शन मुखी जी ने, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। आदरणीय तृप्ति जौहरी जी, अरे बाप रे, इतना आदर और सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर आप स्नेह से तृप्ति भी लिखते तो मुझे वो भी प्यारा लगता। कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही कलाकार की, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है जिसमें आज आप बात कर रही हैं अभिनेत्री नरगिस दत्त की। अच्छा लगा आप लोग कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे हैं और कलाकार का नाम और साथ में आज हमारा भी नाम लिख के भेज रहे हैं। उच्च कोटि की प्रस्तुति, रोचक जान

गाड़ियां और सदाबहार गीत बहुत कर्णप्रिय लग रहा है। दिल से बड़ी बधाई, प्रभु आपके को सदा स्वस्थ और खुश रखे। भाई इसके लिए आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और अगला जो हमारे पास संदेश आया है वो है सुरेश नारंग जी का। यह है सहारनपुर चंदननगर से। सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली जब कोई बात बिगड़ जाए। भाई ये फिल्म का तो प्रोग्राम नहीं है, ये है फिल्म एक ही कलाकार, जिसमें हम एक ही कलाकार पर केंद्रित कार्यक्रम में गीत सुनवाते हैं, जो है आज नरगिस दत्त पर केंद्रित। और अगला कार्यक्रम, अगला जो संदेश आया है कार्यक्रम में वो है एक ही कलाकार कार्यक्रम में हीरा मणि वर्मा का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त जी पर केंद्रित कार्यक्रम, रोचक जानकारी व बेहतरीन गीतों के साथ सुनने को मिला। दिलकश प्रस्तुति के लिए बधाई। ये है हमारे प्रेषक हीरा मणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से। तो भाई आपका भी धन्यवाद। तो चलते चलते हम आखिरी संदेश लेना चाहेंगे। ये हैं हमारे साथी मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। शुभ दोपहर, नरगिस दत्त पर केंद्रित आज का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इन्हें। शानदार उत्तम प्रस्तुतिकरण आपका, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये हैं नवी हसन जी, ये मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन और शहनाज अब्बासी। और आखिर में एक और संदेश मैं ले लेती हूँ। आज संदेशों का मुझे लग रहा है कि ले लेने चाहिए ज़्यादा संदेश। कोई भी गीत सुना दे तो भाई कोई भी गीत ही सुनवा रहे हैं कि कलाकार पर केंद्रित कार्यक्रम है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। और अगला संदेश एक और ले लिया जाता है, ये है अजीत भवसार जी। ये तो इन्होंने इन्होंने सिर्फ अपना नाम ही लिखा है। तो भाई आप सभी के संदेशों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और इसी के साथ चलते चलते आप सभी से अनुमति चाहती हूँ आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मिलेगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा।

हंसते हंसते अभी आपने सुना आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब समय हुआ है कार्यक्रम ब्रज माधुरी का।

0: हमारे प्यारे सब भैया बहन आनकू और आपको आज झोरी भर भर के बधाई।
1: चंपा जी आपको बहुत बहुत बधाई, पर तनिक बता तो दियो कि बधाई दे काई की रहे हो।
0: अरे न तो गोपाल जी बधाई तो पहले दे दे।
1: अब दे दो, हमने झोरी भर ली, अब तो बता दो।
0: नृत्य गोपाल जी देखो बात ऐसी है कि मई को महीना चल रहा हो।
1: हाँ जी।
0: और आज है मई के महीना को पहलो रविवार।
1: हाँ बिल्कुल ठीक बात है,
0: हैं? और यह मई के महीना के पहले रविवार को ना प्रत्येक वर्ष विश्व हास्य दिवस के रूप में पूरी दुनिया में आज मनाए हो जा रहे हो।
1: ओहो,
0: तो हम आपके काजे या की बधाई दे रहे हैं।
1: जी हाँ चंपा जी, तब तो बधाई बिल्कुल बने है, और हमारे सब श्रोतान को झूरी भर भर के बधाई, खूब हंसते रहे, जितनो हंसो जाए उतनो हंसे, क्योंकि हास्य तो जीवन को अद्भुत आनंद है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, बिना हंसवे के कहा है, हमारे ब्रज में कहावत है, हंस बोल वक्त कट जाएगो, जाने को कित को जाएगो।
1: हाँ हाँ चंपा, और यूं कहें कि जो हंसेंगे वे बसेंगे।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी आप सही कह रहे हो। देखो जो हास्य को भाव है ना, ई चाहे हमारो सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारो पारिवारिक जीवन हो, है चाहे हम कहीं अकेले भी बैठे हुए, या हास्य भाव की जो प्रधानता है ना वो सब जगह है।
1: चंपा जी देखो, ब्रज जीवन की तो ये विशेषता ही कही गई है। आपको याद हो तो जो नागरी दास है ना,
0: हाँ,
1: जो महाराज सावंत सिंह,
0: हाँ, किशनगढ़ वारे, हाँ,
1: उन्होंने बड़ी बढ़िया सी बात कही, ब्रज के परम स्नेही लोग, गारी दे हंस मिले गहवरे, अंतर हृदय संजोग।
0: नृत्य गोपाल जी सबसे बड़ी गारी है ना ब्रज में, रिश्ते इनकी है। वैसे काऊ को भ्यास आदि हो तो कि भात ही आए हैं,
1: हाँ?
0: पर ब्रज के घर में तो एक आदमी दिन में 50 बार भात ही बने। काऊ बहन को भैया आयो तो कह देंगे कि भैया सारो आयो है,
1: हाँ?
0: पर हमें तू बड़ो सारो लग रो है,
1: हाँ?
0: है? तो ये जो भात ही है और सारो है, हम सब के जो जीवन में ये दोनों रिश्ते इनके नाम है, पर ब्रज में तो हास्य भाव में इनकी बड़ी प्रधानता है।
1: कि चलती ब्रज नारू काउते, अगर कछु कहनी हो, कोई ने हंसी मजाक कर दे तो बातें कहा कहेंगे, हाँ भैया सारे वाल बताऊं तो।
0: और यही के काजे तो हमारी ब्रज धरा जानी जावे है।
1: अरे चंपा जी, हंसी कहें, ठट्टा कहें, मजाक कहें, याते
0: हाँ मस्खरियू तो कह में,
1: हाँ बड़ो मस्खरो है।
0: नृत्य गोपाल जी एक बात मन में आ रही है, पूछें?
1: अरे अरे तनिक बताओ तो, कहा कह रहे हो?
0: जैसे ही हास्य दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो क्या कहीं यहाँ की प्रेरणा हमारी ब्रजते ही तो ना ले लई?
1: हम तो यही माने कि ब्रजते, क्योंकि हमारो कन्हैया हंस तो रहे हो,
0: हाँ।
1: और हमारे यहाँ ग्वाल वाल सब हंसते रहे, और देखो तो सही, काका हाथ रसी जैसे हास्य सम्राट ब्रज में ही तो भाई।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, कौन सा पर्व उत्सव त्योहार ब्रज को ऐसा होएगो कि उनने हंसी की हास्य की फुलझड़ी वाना चलाई होए?
1: वृंद कवि ने कही है, बोले फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे, जो विवाह में गार।
0: सही बात कह रहे हो नृत्य गोपाल जी। तो ऐसे ही एक प्रेम भरे हास्य गीत की ओर अपने प्यारे भैया बहनान को ले चले।
1: जी हाँ चंपा, तो आप श्रोताओ सुने ये प्यारा सो मनोहारी लोक गीत, जाकू सुन के आपको हंसी अवश्य आ जाएगी।

0: प्यारे भैया बहनाओं और भाई, आप शालिनी शर्मा के मधुर स्वर में प्रेम भरे और हास फरियास ते परिपूर्ण लोकगीत को सुन रहे हते। प्यारे भैया बहनाओं, आप तो यह बात को जानो हो कि जो ब्रज धरा है ना, वो जानी ही अपने या निश्चल प्रेम के काजे जावे है। और प्रेम भी ऐसा हो ना जो हास फरियास के बिना तो वहां में पूर्णता ही ना है।
1: चंपा देखो, ऐसो कहो जाए ब्रिज में, बोले हंसा हंसा के पेट फाड़ दिए।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दियो।

0: हाँ। और चंपा जी आप तनिक देखो, हम अपने श्रोतान के संग जैसे कोई एक झलकी है आपको याद हो तो।
1: झलकी तो नृत्य गोपाल जी बहुत सारी हैं। जब आज पूरे विश्व में ही हास्य दिवस मनायो जा रहे हो है, तो अपने श्रोता भैया बहनों को हास्य झलकी सुनवाएंगे। तो प्यारे भैया बहनों, जब आज विश्व हास्य दिवस मनायो जा रहे हो है ना, तो फिर देर क्यों करें, आप और हम मिलके सुने ये हास्य झलकी उद्घाटन।

0: हेलो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग टेस्टिंग हाँ हेलो हेलो हेलो हाँ सुनिए सुनिए सुनिए मंच पे समाज सेविका सरला जी विराज चुकी हैं। अब मैं सरला जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना वक्तव्य दें और माइक पे पधारे पधारे आइए जी आइए आइए आइए।
1: भाइयों और बहनों, जमानो बदल चुको है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अरे अरे भैया, तुम मंचमाऊ चौबड़े चले आए रहे हो भैया, हैं?
2: कमाल है। अभी आपने ही तो कही कि जमानो बदल गए हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ो, चलवा रहा हूँ मंचमाऊ।
1: अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, चलो अपनी जगह। हाँ तो मैं आपसे ये कहना चाहूं कि भाइयों, हमें अपने पामन पे ठाड़े हैवे की कोशिश बराबर करनी चाहिए।
2: अजी साहब, बुई तो हम कर रहे हैं, पर कहा करें, जे पुलिस को सिपाही है ना, पुलिस को सिपाही हमें बेर बेर में बैठाए दे।
1: अच्छा बाबा, बैठ जाओ अपनी जगह पे। हाँ तो सबसे पहले हमें देश की गरीबी को हटाना होगा।
2: रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं।
1: ओ मेरे देश के करंधार, पूछो, क्या पूछना चाहो?
2: समाज सेविका जी।
1: हाँ हाँ कहो देश के रतन जी, क्या कहना चाहो?
2: समाज सेविका जी, एक बड़े नेता की पत्नी हैवे के नाते आप अपने फालतू समय में कहाँ काम कर रहे हैं?
1: फालतू समय में और काम की पूछ रहे हो? अरे मेरे पति नेता देश की गरीबी को देख देख के आंसू प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
2: आंसू
1: आंसू। और मैं बिनके आंसू को सुखाए सुखाए के और नॉन बनाए के विदेशन में थोक में बेच के विदेशी पूंजी आयात करूं हूं।
2: ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, जा नेक काम के अलावा आप कछु और करो का?
1: क्यों ना है? देखो जी, मैं निरक्षरता दूर करवे के ताई राष्ट्रभाषा अपनाएवे को हाई स्केल पे प्रचार कर रही हूँ।
2: हाई स्केल पे?
1: हाँ।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अपने पास पड़ोस के निरक्षरन को अंग्रेजी की प्राइमर पढ़ाएवे की कोशिश कर रही हूँ।
2: अच्छो समाज सेविका जी।
1: हाँ।
2: ये बात है।
1: हाँ।
2: आप राष्ट्रभाषा को खूब प्रचार कर रही हैं। आपने कोई दूसरों नेक काम करोगे का?
1: नेक काम की मत पूछो, नेक काम करवे कोई तो हम जन्म ले हैं भैया। मैं रोज विदेशी चीजन की होरी जराय के और स्वदेशी वस्त्र पहरवे के काजे लोगन को प्रोत्साहित करूं हूं।
2: प्रोत्साहित करें?
1: हाँ।
2: तो कोई उदाहरण पेश करेंगी जाको?
1: उदाहरण पूछ रहे हो भैया? नेक देखो तो मेरे हिप्पी कट बार और ये इम्पोर्टेड ड्रेस ना दिख रहे हो का? अब पूछ रहे हो उदाहरण? अब को आ गए हो? अरे हवाल खोलूं? अरे तू है, अभी तर आ जाए भम्मा, आ जा आ जा।
3: अरे जी जी, का जीजा ते बतरा रही है?
1: अरे ना री, आ पहले कुर्सी पे बैठ के सुस्ताए ले। मैं अब आई एक सभा में ते भाषण दे के लौटी हूँ।
3: हाय हाय,
1: आ ठंडा पानी लाऊंगा?
3: हाँ हाँ, ना मानो तो ले आ, बस तो मैं पी के ही आ रही हूँ।
1: ले गड़ुआ तो पकड़।
3: ए बहुत ठंडो है, करसिया को दी से सल्ला?
1: ना री, कोरे चपटा को है
3: तो वही। पर वो तेरे चीखने घड़ा जीजाजी को तो तेने कांदूप का है रखो है सल्ला।
1: बहना कहा बताओ, वे परसों की गए हैं, अब ताऊ लौटी ना, निगोड़ी मीटिंग में गए हैं।
3: अरे कब तलक भगतंगे?
1: मैं नेता है ना, नेता। देख कब गए हैं, ये तो नेतान की सल रहे।
3: अरे राम राम,
1: और कब बग देंगे? जा बातें निगोड़ा लेता जाने या नेता की पालती जाने।
3: अरे जी जी, तो जीजा बाहर ले ऐसे नेता की कासा। कोई नेतिन मिल गई तो भौरा की तरिया वहां पे फूल समझ के वही पे मडराया करेंगे।
1: अरे बामो तू तो गजब करे, हट परे को।
3: अरे
1: ऐसे लुगाई बदलू नेता ना आए मेरे वो।
3: रेन दे जी जी, इन मर्दन की तो का कहूं, कहूं कहेंगे जा रहे कहूं पहुंच जाएंगे।
1: हट परे को, लगाई रही है।
3: अरे मैंने तो यहाँ तक सुनी है
1: कहा?
3: कि जीजा ने काई नेतिन ते कोरट मैरिज कर लेनी है।
1: अरे ना है।
3: और वो वा नेतिन के संग डोलो डोलो करे।
1: देख रही भम्मो, सारी जीजान की ताई ऐसे ही ऐब लगाए करे, मैं सब समझू।
3: देख देख छोरी सल्ला, कल जीजा पातरिया की छोरी के ब्याह में कैची हाथ में लेके चौंगे।
1: कैची हाथ में लेके
3: चौंग है ना, नेता लोग अपने हाथ में हरदम कैंची रखे।
1: अरे बाबरी, तो उस समारोह को उद्घाटन करवे के ताई वो वा कैंची ते फीताए काटे, समझी के ना?
3: अच्छा, ऐसे ही होएगो। तब जीजा ने ब्याह में वो कैंची चलाए देनी।
1: ब्याह में कैंची का मतलब है? लेकिन समझाए के बता, खोल के बता।
3: अरे जा मैं खोल के का समझाऊ, बांध के का समझाऊ। सूदी सी बात है, जीजा को ब्याह में पातरिया पकड़ के ले गयो।
1: हाँ, ले गयो।
3: और जीजा भगत के आए राजधानी थे।
1: हाँ?
3: सब इन्हें बैठे बैठे औंग आई गई।
1: अच्छा, सोए गए। आगे बता फिर का भयो?
3: आगे का कहूँ, जब भावर पड़ गई तो पातरिया ने भिनकू जा मारे जगायो कि गठबंधन में बंधे पति पत्नी को आशीर्वाद दे दो।
1: और फिर का भयो?
3: फिर का जीजा नींद ते तो जगाई।
1: हाँ?
3: भिन्ने पति पत्नी की गठबंधन की गांठ कैंची ते काट दियो। बोले मैं ब्याह को उद्घाटन करूं।
1: तो जे भाई सोमते में उस बिल्ली को छी जोड़ाई दी से। अरे ना
3: अरे सल्ला,
1: आ बोल बोलो, आए रुकाई को गई बोल।
3: तो सल्ला वो जीजा पे हंसी आ रही है।
1: क्यों?
3: कहा जीजा जब ते नेता बने मैंने कब तक करने काय को छोड़ दीनो?
1: बताओ पांची साजी बताएगा
3: और क्या।
1: देख कभी पे नेता जो छाए गयो है जी
3: छाए गयो।
1: पहले बैयरवानिन की तरिया लंबे लंबे बार धर के मंच पे गौरव फाड़ो करते।
3: और क्या चुम है ना सल्ला, जैसे भैंस रेकत वैसे ही।
1: हाँ वैसे ही। बे
3: अरे तू रेक में लगी भैंस की तरिया।
1: अरे का तेरे जीजा जा कभी सम्मेलन में गए भाई पते बजाए दीने गए, फिर वो पब्लिक ने मैंने सम्मानित कर डाला है। तो
3: अच्छा?
1: तो है और तो इस साले के ना है बिन उपाधि दी गई है।
3: अरे कौन सी उपाधि दे दी गई?
1: बताऊं मानसिक रोग कविता शिरोमणि की उपाधि दी है तेरे जीजा को।
3: मानसिक रोग कविता शिरोमणि की?
1: हाँ।
3: कोई पागल होएगो जाने बिन कुछ उपाधि दे देनी।
1: तेने ठीक अंदाज लगाया। बिल्कुल ठीक अंदाज लगाया। देख मैंने पागल खाने तीजी उपाधि बड़ी शान वान ते प्रदान की नहीं गई है।
3: सो कैसे भाई ना ठीक तनिया सुना है पार्टी बंद तरीका थे।
1: पार्टी बंद तरीका थे बताए दो बताए दो। देख एक कभी सम्मेलन ते भाज के जबे जाए रहे तो एक मानसिक रोग अस्पताल में मानसिक रोगीन कुत्ता ही मनोरंजन के ताई एक कार्यक्रम है रो।
3: अच्छा फिर
1: तेरे जीजा मौको पाए और मंच पे जाके ठाड़े है गए
3: अपने आप।
1: हाँ सुनाए भी लगी कविता पे कविता कविता पे कविता कविता।
3: अरे राम राम। और वो सिर्फ सुनने लग गए
1: और भेना बादिना तो सीता में गयो।
3: का भयो कैसे भयो भेना?
1: देख इनकी कविता सुन के सिगरे मानसिक रोगी सोए गए। और का करवे लगे और खर्राटे भरवे लगे। और तो और

0: बता गई कि मानसिक अस्पताल के अधिकारी भी सोए गए होंगे। फिर तो है ना, जब मानसिक अस्पताल के अधिकारी की आंख खुली ना, तो बानेती ने जीजा की पीठ ठोंकड़ा।
1: अच्छा।
0: और बोला कि तुम्हारी कविता ने कमाल कर दियो।
1: अच्छा,
0: सिख मानसिक रोगी को सुवाई दियो।
1: सुवाई दियो?
0: हाँ।
1: और फिर क्या बोला?
0: तो तेरे जीजा ने जवाब दियो, अरे मेरी कविता ने सुन के तो सिख सोई जाए। अच्छा? यही तो मेरी कविता की खासियत है।
1: अच्छा।
0: और जाई मारे मैं कवि सम्मेलन तिंडी कार हो जाऊ।
1: अच्छा।
0: तभी अधिकारी बिनते बोलो, का तुम बिनको 8 दिन के ताई सुवाई सकोगा?
1: फिर है ना,
0: तेरे जीजा ने कही कि मैं तो जिंदगी भर के ताई सुवाई सकू।
1: तो है ना, अधिकारी ने कहा जवाब दियो?
0: अधिकारी बोलो कि हम इन रोगीन को सोबे की गोली खवा में रोज।
1: अच्छा।
0: अताओ जे सोमे ना।
1: अच्छा।
0: पर तुम्हारी कविता में ऐसा कमाल है कि ने सुन के सिख सोए गए।
1: मोए तो डर लग रो है
0: ना। सुन तो सही, ये पागल जो है का है, जिते सोमेंगे बिते जल्दी ठीक होंगे। अच्छा। ये अधिकारी ने बताया।
1: तो बहना, दवाइन की जगह कविता की खुराक पीक पीक के सिख मानसिक ठीक हो गए होंगे।
0: जी तो हुआ, इनकी हर कविता सुन सुन के महीना भर तोली सोमते रहे। अच्छा, ठीक है,
1: तब तो दवाई इन्हीं की कविता सुन सुन के सबरे ठीक होंगे।
0: हाँ, और बहना जाई मारी पब्लिक ने इनको सम्मानित करके मानसिक रोग कविता सिरोमणि की उपाधि दिलाई।
1: और तभी ते नेता बन गए होंगे।
0: हाँ, तभी ते कविता बजमारी तो गई छूट।
1: अच्छा।
0: पर निगोड़ी नेतागिरी ने भामर दार लाइन के संग।
1: अच्छा, तो भेना अब मैं तो चलू, कहू जीजा आएगा तो कविता सुन के मैं सोए जाऊंगी।
0: ओए तू जा रही है? हाय, तेरे जीजा होती तो कविता सुन लेती। सो
1: मैं तो इतना ही सुन सुन के डर लग गयो है।
0: अच्छा, राम राम बम्बू, राम राम फिर आई हो। अच्छा, हवा लाई भैया। अरे हवा लाई, काहे को किल्ला रहे हो? अरे तुम अबे आ रहे हो कहा?
2: बस बस सीधो ही चलो ही आ रहा हूँ। तू तो जानी है कि नेतागिरी को काम ही ऐसो है।
0: नेतागिरी को काम ही ऐसो है। बनाए लो चौधरी, एक बार बताओ, तुम पातरिया की छोरी के ब्याह में तो कैची चलाई थी, उद्घाटन करने पहुंच गए, और घर आए में इतने देर लगाई लेनी।
2: अरे तो घर में कौन सो मुझे कैची चलाए के यहाँ कहू को उद्घाटन थोड़ी करनो है।
0: कैची तो तुम चलाओ ही हो, अपने जीव की कैंची चलाए के लतर रहे हो, उद्घाटन अपनी पकड़ी गई झूठ को।
2: ओ, ओ, ओ, मैं समझो ना है तेरी बात को, मतबल कहा है काके नो चाह रही है।
0: समझोगे कैसे? ये ब्याही थाई तो घर में बड़ी रो रही है, और मेरी सौतन नेतिन ने लेके और उद्घाटन करते जो।
2: अरी अरी, लगे काग ने जरूर तेरे कान भर दई है। मेरा नेतिन ते कहा मतबल है? नेतिन नेतिन,
0: देखो जी झूठ तो बोलो मत, झूठ तो नेतान को गहनो हुए, और मैं कोई जनता तो हूं ना हूं, चाहे झूठ सच्चे बोल के बहला लियोगे, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी।
2: मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ जो तू ऐसे कह रही? ना कोई झूठ बोलो।
0: नेतिन को लेके कहाँ कहाँ डोलो जे तो बताए दो मेरी सौतन को।
2: देख देख देख देख, मुँह पे ऐसी झूठी तोहमत मत लगाए बे, समझ ले, नहीं तो
0: क्या कर लेगा।
2: अरे जाने ना है क्या कर लेगा, समझी ना है क्या? ला अभी करूँ तेरा उद्घाटन, ऐसा ना मानेगी तू?
0: मेरा उद्घाटन
2: ना?
0: देखा जी,
2: देखा
0: तुम तो पीछे करनी हो उद्घाटन, तो मेरी सुन ले, जा उद्घाटन के जुल्म से तुम पे दहेज को मुकदमा चलेगा।
2: दहेज को मुकदमा?
0: हाँ, और जेल के सीख चांद में तुम्हारे उद्घाटन है जाएंगे, समझ गए कि ना?
2: अरे चुप रे, इतने बड़े चुप रे, इतने बड़े नेता को धमकी दे रही है, समझे ना? लियो मेरी कैसी अभी करूँ जाकर उद्घाटन, ऐसे ना मानेगी जी?
0: अरे
2: कैसे ना होगा, लियो अभी करूँ उद्घाटन जाकर।
0: जाकी कैची हती वो ले गयो, और का है
2: कैची हती से ले गयो, उस तरह ला बातें करूँ चलो उद्घाटन, तू ऐसे ना मानेगी?
0: देखो ये धरिए तुम्हारी कैंची, और ये धरो है उत्तरो, और मैं तो चली पियर कू कैंची ना सही, उस तरह मांग के कर लीजो उद्घाटन।
2: अरे जा बहुत देखी है तू जैसी, जा चली जा, पीएर जाएगी की धमकी देती रहे, चली जा।
0: हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, इतने की याद रखियो, काऊ पत्रिका में भेजी गई तुम्हारी रचना की तरिया बेग बिगड़ के लाए आऊंगी। हाँ
2: अरे सुन तो सही,
0: अरे
2: अरे ओ सल्ला, ओ सल्ला, अरे अरे सल्ला सुन तो सही, मेरा उद्घाटन है, अरे सुनियो सल्ला,
0: सुनी मैं बल में ही चकी दिया गिर,
2: अरे अरे सुन
0: कैची को रो में उद्घाटन को।

0: प्यारी भैया बहनाओं, अभी आप ये हास्य झलकी उद्घाटन सुन रहे हते।
1: चंपा देखो सुन के बड़ो आनंद आयो, ऐसे उद्घाटन को तो आप ही चली जाए करो कबो
0: अरे नृत्य गोपाल जी, हमें उद्घाटन करने को कौन बुलावे। देखो, ब्रज के लोक जीवन की ना विशेषता यही है, वहां की प्रधानता यही भाव में समाहित है कि कोई भी काम कितनो भी बड़ो होए, चाहे वो सामाजिक हो या पारिवारिक हो या कैसो भी कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं वहां में ना हास्य रस की प्रधानता है, वो बनी रहनी चाहिए, हास्य को भाव आनो चाहिए।
1: हास्य रस है, हास्य योग है, और यह हास्य को जीवन में इतना बड़ो प्रभाव हुए है कि जो हंसते रहे वे सदैव बहुत आनंदमय जीवन जीवे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और ये भी देखो कितनी बढ़िया बात है कि दूसरों तीसरों चौथों पांचवों कोई भी व्यक्ति होए जो मनुष्य हंसे है ना, और परस्पर हंस हंस के वार्तालाप करे, बोले बतरावे बतरस करे ना, बाकी पास आवो उठवो बैठवो बोलवो, बाकी बात को सुनो, बाकी समय देनो, या बात को ना हर कोई फिर पसंद करवे लग जावे है।
1: ब्रिज के ब्याह शादी में तो आप देखोगे जो गांव के बहुत ज्यादा हसोरिया हुए ना
0: हाँ
1: उनको अलग से निमंत्रण दे के ले जाए कि भैया चलो बारात में।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, बिल्कुल उनके बिना कहा है।
1: हाँ, और
0: हाँ,
1: वो जहां बैठ जाए फिर वहां समझ लो कि अपने आप लोग इकट्ठे है वे लग जाए।
0: और बारात की दावत ने अरे कह मैं खानो पीनो बाद में जाएगा भैया, कब के मारे कब मिलेंगे, पहले या समय को आनंद उठा ले। में ब्रज में यही हास्य रस के आनंद के काज यही कहो गए हो है के आनंद को क्षण और
1: हाँ
0: अन्न को कण कभी छोड़नो ना चाहिए।
1: जी हाँ चंपा जी, देखो तो सही यहां में कितना बड़ो संदेश छुपे भयो है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, तो हम तो अपने प्यारे भैया बहनान ते कह में भैया बहनाओं, आज पूरी दुनिया में विश्व हास्य दिवस मनायो जा रहे हो है, और वैसे वो छुट्टी को देना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में खूब हंसो, खूब खेलो, खूब बोलो, खूब बतराओ, पर हर भाव में ना हास्य को भाव जरूर होए, और आप ऐसे ही हंसते रहो और ऐसे ही बसते रहो और ब्रज माधुरी कार्यक्रम को सुनते रहो।
1: जी हाँ चंपा, ऐसे मुस्कुराते भाई हंसते भाई हम अपने श्रोतांते आज के दिन विदा ले लें ना भैया कार्यक्रम में।
0: हाँ प्यारे भैया बहनाओं, आप तो जानो ही हो समय को संकेत अब चलवे को हो रहो है, तो प्यारे भैया बहनाओं इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होवे है। मोई अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग जाइवी की अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम है रेडियो किड्स, जहाँ बच्चे ही हैं असली होस्ट। हम लाए हैं आपके लिए मजेदार बातें, प्यारी कविताएं और सीख से भरा कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास प्रस्तुति।
1: हम सभी आए हैं द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। मैं हूँ अहानो, मेरे साथ मेरे दोस्त।
2: मैं हूँ आर्ची।
3: मैं हूँ सीरत।
4: मैं हूँ अव्यान।
5: मैं हूँ प्रिंकल।
1: हम सब अलग अलग कक्षाओं से आए हैं, तो आइए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं।
6: अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो बिना वजह भी हंसने का मन कर रहा है। आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं ना?
0: अरे भाई, राज क्या है, इतनी हंसी किस बात की है? हमसे भी शेयर करो ताकि हम भी खुश हो जाए, कहीं कोई सीक्रेट तो नहीं?
6: आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इससे तनाव कम होता है और मन हल्का रहता है, इसीलिए हमें रोज थोड़ा थोड़ा हंसना चाहिए।
2: हंसी से दिल खुश रहता है और सोच सकारात्मक बनती है, यह हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। जब हम हंसते हैं तो आसपास का माहौल भी अच्छा हो जाता है, यानी हंसी सच में एक दवा है।
5: वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हंसी से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। हंसी हमें मुश्किल समय में भी मजबूत रखती है, इसीलिए इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।
1: हंसी है जीवन की पहचान, इससे खिलता है हर इंसान। मुस्कान बातों हर एक दिल में, यही है खुशियों का अरमान। बातें तो बहुत हुई, चलिए सुनते हैं एक गीत।

0: दोस्तों, जल ही जीवन है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम सच में पानी बचाते हैं? अक्सर हम पानी को बेकार बहने देते हैं। ये आदतें हमें बदलनी होंगी।
1: पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, सबको पानी चाहिए। अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
2: छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे नल बंद रखना और पानी का सही उपयोग करना। हमें दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए, यही हमारी जिम्मेदारी है।
3: जल है तो कल है,
4: पानी की हर बूंद अनमोल, इसे बचाना है सबका गोल। आज बचाओ कल सवारो, यही है जीवन का उसूल।
2: बातें तो हमने बहुत कर ली, चलो अब गीत सुनते हैं। सुने क्या?
3: हाँ, सुनते हैं।

0: बात करते हैं आकाशवाणी की। क्या आप जानते हैं कि इसके 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये भारत की आवाज रही है, इसने लोगों को जोड़ने का काम किया है।
1: मैं एक छोटे से प्रश्न पूछूं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ।
2: हाँ हाँ पूछो आहान।
1: आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है?
2: ऑल इंडिया रेडियो। ये लोगों तक जानकारी पहुँचाता है।
1: बिल्कुल सही बताया तुमने अभियान।
3: हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो किड्स।
1: हम लेकर आए हैं ज्ञान और मनोरंजन का संगम।
0: रेडियो की बात हो और उषा मेहता का नाम ना आए।
3: उन्होंने 1942 में रेडियो चलाया।
1: यह एक गुप्त रेडियो था।
0: ये गुप्त क्यों था तुम्हें पता है?
1: नहीं।
0: मैं बताती हूँ।
1: हाँ सीरियस बताओ।
0: 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, तब उषा मेहता और उनके सहयोगियों ने गुप्त रेडियो स्टेशन के माध्यम से देश भर में आज़ादी

0: हिम्मत और सच्चाई से इतिहास बनाते हैं।
1: मैं एक नैतिक कहानी सुनाऊं?
2: हाँ, सुनाओ।
1: एक किसान लालच में सब खो बैठा, लालच ने सब खत्म कर दिया। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली?
0: कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए।
1: सही कहा व्यान और प्रिंकल।
3: मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, बोलूं?
0: हाँ, बोलो।
3: हमें संतोष रखना चाहिए, जो मिला है उसमें खुश रहो, लालच से दूर रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ये जीवन का सही रास्ता है।
0: सही कहा प्रिंकल तुमने।
1: मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। चलो जल्दी सड़क पार करते हैं। नहीं, पहले दोनों ओर देखो। अरे जल्दी करो, नहीं सेफ्टी पर है।
4: हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, जीब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए।
5: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
4: अब अंत में एक सुंदर प्रस्तुति अभियान के द्वारा।
0: चलो मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, हरियाली से जीवन सजे, हम सब मिलकर मुस्कुराएं। धन्यवाद।
4: आज हमने बहुत सारी बातें की, मजा आया?
5: हाँ, बहुत मजा आया।
4: अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए
5: बाय बाय।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची है। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
6: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3।

听众朋友们，接下来我们播送 Bimla Pradhan 唱的一首民间歌曲。

0: 听众朋友们，今天我们的普通话节目播送到这里，谢谢。
1: El Khiladi, Khelon Ka Aina.

0: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मैं हूं आपके साथ सिमरन सारवान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथ ही हेमंत।
1: हेमंत
0: तो आज काफी कुछ है हेमंत। आज बात करेंगे थॉमस कप पर, जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे आईपीएल 2026 की, विमेंस को भी कहां पीछे छोड़ सकते हैं, विमेन क्रिकेट पर भी बात होगी, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन पर भी साथ ही साथ बात होगी, एशियन बॉक्सिंग को भी लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉमस कप की, जानते हैं थॉमस कप में क्या क्या हुआ। तो थॉमस कप के बारे में सुनिए ये रिपोर्ट।
2: 2 मई 2026 यानी शनिवार का दिन भारतीय बैडमिंटन फैंस के लिए उम्मीद और धड़कनों को बढ़ा देने वाला दिन था। भारतीय पुरुष टीम थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी और उनका सामना था फ्रांस की टीम से। फ्रांस की टीम इस टूर्नामेंट की सरप्राइज पैकेज रही थी, जिसने ग्रुप स्टेज में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया और क्वार्टर फाइनल में जापान जैसी मजबूत टीमों को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। दुर्भाग्य से ये सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। भारत के स्टार शटलर और क्वार्टर फाइनल के हीरो रहे लक्ष्य सेन को कोहनी की चोट के चलते इस अहम मुकाबले से बाहर होना पड़ा। लक्ष्य सेन के बाहर होने से भारतीय टीम का संतुलन बिगड़ गया और टीम को एक नई रणनीति के साथ कोर्ट पर उतरना पड़ा और उनकी गैर मौजूदगी में युवा आयुष शेट्टी को पहले सिंगल्स की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनका सामना दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी क्रिस्टो पोपोव से था। आयुष ने कोर्ट पर पूरी जान लगाई, लेकिन फ्रांसीसी खिलाड़ी की गति और उनके सटीक स्मैश के सामने वो अपनी लय ढूंढ नहीं पाए और इस मुकाबले

0: में क्रिस्टो पोपोव ने आयुष शेट्टी को सीधे गेमों में 21-11, 21-9 से हराकर फ्रांस को 1-0 से बढ़त दिला दी। 0-1 से पिछड़ने के बाद सारी उम्मीदें अब उनके अनुभवी खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत पर टिक गई। उनका सामना फ्रांस के युवा सनसनी एलेक्स लानियर से हुआ। श्रीकांत ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कड़ी टक्कर दी और बेहतरीन रैलियां खेली, लेकिन एलेक्स लानियर ने अहम मौकों पर अपनी नसों पर काबू रखा और श्रीकांत को गलतियां करने पर मजबूर कर दिया और नतीजा ये रहा, एलेक्स लानियर ने यह मैच 21-16, 21-18 से जीतकर फ्रांस को बढ़त दिला दी। अब भारत के लिए अगला मुकाबला करो और मरो वाला मैच था। अनुभवी एचएस प्रणय कोर्ट पर उतरे और अब उनका मुकाबला टोमा जूनियर पोपोव से था। पहले गेम में दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। एक समय प्रणय 19-18 से आगे थे, लेकिन पोपोव ने गजब की वापसी करते हुए पहला गेम जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में पोपोव ने अपने अटैकिंग अंदाज को बढ़ाते हुए प्रणय को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया और इस निर्णायक मैच में टोमा जूनियर पोपोव ने 21-19, 21-16 से यह मैच जीतकर फ्रांस की बढ़त 3-0 से कर दी। इस तरह भारत ये सेमीफाइनल 0-3 से हार गया। हालांकि भारत अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाया, लेकिन टीम ने इस हार के बावजूद कांस्य पदक अपने नाम किया। ये थॉमस कप इतिहास में भारत का दूसरा पदक है। पहला पदक 2022 में जीता था। वहीं फ्रांस ने इतिहास रचते हुए पहली बार थॉमस कप के फाइनल में जगह बनाई। अपने और साथी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या कहा आयुष शेट्टी ने, आइए सुनते हैं।
1: Yeah, I think bit disappointed the performance today, but I think we should play really solid and yeah, I think all credit to him. He is really good. I mean, I was using a lot of deception, which caught me off guard. You know, I was a bit not really stable on the court. I think overall pace was really high and we were putting the pressure really good. I think my overall game plan was not right, I would say. I think he just outclassed me today. I think, yeah, that's it.
0: ये तो बात हुई इंडिया वर्सेस फ्रांस के मैच की। अब बात करते हैं डेनमार्क वर्सेस चाइना की मैच की, जिसपे रिपोर्ट दे रही है सिमरन।
2: थॉमस कप के सेमीफाइनल में चीन ने डेनमार्क को आसानी से हरा दिया। चीन से हार के बावजूद डेनमार्क ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के फलस्वरूप कांस्य पदक जीता। एंडर्स एंटोनसेन ने शनिवार को चीन के खिलाफ मैच की शुरुआत विश्व नंबर 1 की शियुकी के साथ मुकाबले से की थी, जहां चीनी खिलाड़ी एंटोनसेन के लिए बहुत मजबूत साबित हुए और एंटोनसेन ने उन्हें 16-21, 5-21 से हरा दिया। इस दौरान शियुकी को नेट रोलर्स के साथ कई बार किस्मत का साथ भी मिला और अंत में ये पहले सेट में निर्णायक साबित हुए। दूसरे सेट में शियुकी ने अपने खेल का स्तर और बढ़ा दिया और एंटोनसेन को विश्व नंबर 1 के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। अगले मैच में किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन की पुरुष युगल टीम ने बराबरी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क के निरंतर प्रयास के बावजूद वो सफल नहीं हो पाए। वेई केंग लियांग और चांगवांग ने मैच 21-18, 21-17 से जीत कर चीन की बढ़त को 2-0 से आगे कर दिया। इसलिए मैग्नस जोहानसन को चीन के खिलाफ मुकाबले को जीवित रखने के लिए अपना एकल मैच जीतना जरूरी था। शानदार प्रदर्शन के बावजूद मैग्नस जोहानसन विश्व रैंकिंग के 7वें स्थान पर मौजूद ली शिफेंग से 19-21, 21-18, 9-21 से हार गए।
0: ये तो बात हुई कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों की। अब बात करते हैं थॉमस कप फाइनल की, जहां आज चीन का मुकाबला फ्रांस से होगा। आज शाम 9:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। वहीं ओवर कप की बात करें तो लाइव मुकाबला अभी चीन और कोरिया के बीच में चल रहा है, जिसमें अभी ताजा स्थिति यह है कि कोरिया ने अभी बढ़त बनाई हुई है और चीन 2-1 से कोरिया अभी आगे चल रहा है, जिसमें जो 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 2 सिंगल्स मुकाबले खेले गए हैं और 1 मुकाबला मिक्स खेला गया है, जिसमें पहले मुकाबले में जहां बात करें पहले मुकाबले की, तो इसमें कोरिया को जीत मिली और चीन को हार का सामना करना पड़ा। और इस मुकाबले का जो स्कोर रहा, वैंग जिंग यी का मुकाबला था एन सेंग यांग से, जिसमें 10-21, 13-21 से एन सेंग यांग ने यह मुकाबला जीता। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरा मुकाबला भी इस मुकाबले में जीत मिली और इसमें जो मैच हुआ इसमें चाइना को जीत मिली, जिसमें लियू सेंग शू और तैंग निंग की जोड़ी का मुकाबला हुआ कोरिया के जियांग नांग यून से और लिन सोंग हिन से, जिसमें 21-15 और 21-12 से चाइना ने यह मुकाबला जीता। वहीं तीसरा मुकाबला जो खेला गया और जो सिंगल मुकाबला खेला गया, जिसमें चैन यू फाइंग और किम गो यून का मुकाबला हुआ, जिसमें कोरिया ने 19-21 और 15-21 से यह मुकाबला जीता। वहीं चौथा मुकाबला जो युगल मुकाबला भी खेला जा रहा है, जिसमें अभी स्थिति यह है कि अभी चाइना ने इस पहले सेट में बढ़त बनाई थी 21-16 से।

0: मुकाबला पहला सेट जीता था, वहीं दूसरे सेट में अभी कोरिया 10-18 से आगे चल रहा है। और इसके बाद जो पांचवा मुकाबला होगा वो 4:30 बजे के बाद ये मुकाबला खेला जाएगा। तो अभी स्थिति ये है कि मुकाबले में कोरिया ने बढ़त बनाई हुई है और चाइना पीछे चल रहा है।
1: तो ये तो बात थी थॉमस कप और ऊपर उबर कप फाइनल की। अब आपको लिए चलते हैं आईपीएल 2026 पर, जिसमें कल का मैच था एमआई वर्सेस सीएसके, जिसमें सीएसके ने जीत के साथ बढ़त बना ली है। सुनिए ये रिपोर्ट। बीसीसीआई ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का, इससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारी भारतीय महिला टीम का जो चयन हुआ है उसमें। भारतीय महिला क्रिकेटर, हमारी पूर्व क्रिकेटर वैशाली माथुर से हमने बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बीसीसीआई ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को ही टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि स्मृति मंधाना को ही वाइस कैप्टन बनाया गया है। पंजाब की नंदनी शर्मा को पहली बार वर्ल्ड कप में चुना गया है। इस टीम में स्मृति मंधाना कप्तान के तौर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, भारती फुलमाली, श्रीचरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, कृति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 22 जून से इंग्लैंड में होगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 14 जून को बर्मिंघम में करेगा। टीम के सिलेक्शन पर पूर्व क्रिकेटर वैशाली माथुर ने बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: अगर जब तक सीनियर्स हमारे जूनियर्स को अगर अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, उनको सिखाएंगे नहीं, जब वो रिटायर होंगे तो पीछे वाला जो ग्रुप है वो कैसे उनकी जगह बना पाएगा। तो यही एक सही टाइम है उनको सही मोटिवेट, सही दिशा में कैसे बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द गेम और कैसे हम खेलते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस हम जो लेके साथ चल रहे हैं यंग प्लेयर्स को लेके, तो उनको वो एक्सपीरियंस बांटना, शेयर करना बहुत जरूरी है वुमेन टीम के लिए। क्योंकि जिस तरह से हम देखा है लास्ट वर्ल्ड कप भी हमने देखा है, उसपे हमारी टीम ने विजय प्राप्त की थी और उसी सोच के निर्भर से हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने ये तय किया होगा कि अब यंग प्लेयर्स का भी टाइम आने वाले टाइम में आने वाला है, तो उनको भी तैयार किया जाए।
1: तो यंग प्लेयर्स में एक नंदिनी शर्मा भी आती है, उन्हें भी टीम में चुना गया है, तो आईपीएल 2000 कि उनका चयन कितना ठीक है और वो क्या उम्मीदों पर खड़ी हो पाएंगी, क्या उस दबाव को झेल पाएंगी और अपने प्रदर्शन को कितना अच्छे से दिखा पाएंगी।
2: जी, जैसे आपने बात की नंदिनी शर्मा की, नंदिनी शर्मा WPL भी खेली है रिसेंटली अभी इसी सेशन में एंड उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें एक इंटरनेशनल प्लेयर पे, तो उस जगह पे, उस स्थान पे उसने अपनी जगह बनाई है और वहां पे इस वर्ल्ड कप में उनको हम मान सकते हैं कि वो उनको बहुत जल्दी रख दिया गया, लेकिन जिस तरह से वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती हुई आ रही थी और WPL हम मानते हैं कि एक इंटरनेशनल तरीके से हम काफी यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलते हैं और उनके साथ खेलने के बाद भी उनका इतना आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा है हर एक चीज में, तो मुझे लगता है इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनकी जगह बिल्कुल सही है। अगर ओवरऑल देखूं तो सिलेक्शन काफी अच्छा हुआ है, हमारे मिडल ऑर्डर भी हैं, हमारे स्पिनर्स भी हैं, हमारे मीडियम पेसर्स भी हैं और ऑलराउंडर भी हैं। ऑलराउंडर को हम कभी भूल नहीं सकते, वो अहम हिस्सा होता है टीम का, क्योंकि वो बैटिंग में भी हमें सपोर्ट करता है, बॉलिंग में भी, और फील्डिंग तो है ही, तो मेन ऑलराउंडर का सपोर्ट होता है। और ओवरऑल ये टीम बहुत अच्छी बनी है, 11 से 12 प्लेयर्स जो मेन है वो वैसे ही हैं। आप दीप्ति शर्मा को उठा के देख लीजिए, हरलीन दियोल को देख लीजिए, या जेमिमा, या शेफाली वर्मा, या फिर आप स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, ये हमारे बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये टीम का हिस्सा भी है। इनके साथ कुछ प्लेयर्स जुड़ सकते हैं, श्रेयंका पाटिल भी है उसमें। यही कहूंगी कि जिस तरह से हमने लास्ट वर्ल्ड कप में हमने जीता था, उसी जुनून और उसी जज्बे से हमें ये T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है और वही जज्बे के साथ हमें ये जीत के भी लाना है वर्ल्ड कप।
0: साथ ही बात करते हैं कल खेले गए आईपीएल मुकाबले की, जहां आईपीएल 2026 अब अपने बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है, जहां हर एक और जीत और हार बहुत मायने रखती है। और ऐसा ही अहम मैच कल खेला गया जहां दोनों टीमों के लिए जीत बहुत जरूरी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले की, जिसमें टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन चेन्नई की कसी हुई गेंदबाजी के सामने मुंबई की शुरुआत लड़खड़ा गई। विल जैक्स सस्ते में पेविलियन लौट गए। इसके बाद रियान डिकल्टन ने 24 गेंदों में तेज 37 रन बनाए और नमन धीर ने 37 गेंदों में शानदार 57 रनों की पारी खेलकर मुंबई की पारी को रफ्तार देने की कोशिश की, मगर चेन्नई के गेंदबाजों ने अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए शानदार वापसी की। अंशुल कंबोज ने महज 32 रन देकर 3 विकेट्स और नूर अहमद ने 2 विकेट झटक कर मुंबई इंडियंस के धाकड़ मिडिल ऑर्डर की

और तोड़ दी। सूर्य कुमार यादव 21 रन और कप्तान हार्दिक पांड्या 18 रन भी कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सके। नतीजा यह हुआ कि मुंबई इंडियंस अपने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन का एक औसत स्कोर ही बना पाई। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने था 160 रन का लक्ष्य। अपने घरेलू दर्शकों के सामने उतरी चेन्नई की शुरुआत विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के 11 रन के विकेट के साथ हुई, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने रियान रिकल्टन के हाथों कैच कराया। लेकिन इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेलते हुए एक छोर पर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी क्लास दिखाते हुए 48 गेंदों में नाबाद 67 रन बना डाले। दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभाया युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने, जिन्होंने 40 गेंदों में नाबाद 54 रनों की एक बेहद शांत और मैच्योर पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की अटूट साझेदारी के दम पर चेन्नई ने महज 18.1 ओवरों में ही सिर्फ 2 विकेट खोकर 160 रनों का लक्ष्य बहुत आसानी से चेज कर लिया। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बड़े मुकाबले में मुंबई को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। अपनी शानदार मैच विनिंग और कप्तानी पारी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस अहम जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट टेबल पर 6वें नंबर पर आ गई, जबकि मुंबई इंडियंस की यह लगातार तीसरी हार थी, जिसने उनके प्लेऑफ में पहुंचने के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। अब बात सिमरन कर लेते हैं पॉइंट टेबल की, जहां पर पंजाब किंग्स 8 मैचों में से 6 जीत के साथ नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात करें तो 9 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 6 मैच उन्होंने जीते हैं और 3 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो सिमरन 9 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं और 3 हार उनके सामने आई है। राजस्थान रॉयल चौथे स्थान पे, जिन्होंने 10 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं। गुजरात टाइटंस 9 मैचों में से 5 जीत चुके हैं और 4 मैच उन्होंने मतलब गवाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो 9 मैचों में से 4 मैच चेन्नई ने जीते हैं, 5 मैच उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स 9 मैच में से 4 मैच जीते हैं, 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके पॉइंट टेबल पे जो उनका जो स्थान है वो 7वें नंबर पे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो 8 मैचों में से 2 जीत के बाद 5 हार के साथ उनका जो पोजीशन है वो 8 नंबर पे, और टोटल जो अंक है उनके पास वो पॉइंट है जो 5 है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो 9 मैचों में से 2 मैचों में ही उन्हें जीत मिली है, बाकी 7 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और पॉइंट टेबल पर जो उनकी जो तालिका में उनका जो नंबर आता है वो 9वें नंबर पर रहता है। और सबसे लास्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स, 8 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मैचों में ही उन्हें जीत मिली है, बाकी 6 मुकाबलों में उन्हें हार मिली है और उनका जो पॉइंट टेबल पर जो है वो 10वें नंबर पर, और टोटल उनके पास 4 अंक हैं। अब सिमरन, ये तो बात हुई कल खेले गए मुकाबलों की और पॉइंट टेबल की, अब बात करते हैं आज के मुकाबलों की, जिसमें एक मुकाबला जो है अभी खेला जा रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में।

0: हस्तशिल्प स्थानीय उत्पादों की बिक्री है। इसके ना इस इसके अलावा ना केवल पर्यटन बढ़ता है बल्कि गांव में छोटे शहर और अधिक रूप से मौजूद बनते हैं स्थानीय। देखिए ना, कहीं हम ये देखते हैं बार बार कि जो गांव का युवा है वो पढ़ लिख कर शहरों की तरफ जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, गांव में रहना ही नहीं चाहता। मतलब ये चाहता है कि खेती बाड़ी से जुड़ना नहीं है, बल्कि खेती बाड़ी और इसकी अपार संभावनाएं हैं इस उस खेती बाड़ी को लेकर। पशुपालन भी हो सकता है कहीं पर, और है ना, वहाँ पर पशु पाले भी जा सकते हैं, मछली पालन भी हो सकता है, मधुमक्खी पालन भी हो सकता है। वैसे ही ऐसे गाँव में रहकर भी उद्योग धंधों को अपनाया जा सकता है, जिससे इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे युवा गांव में रहकर ही ऐसी इस संरचनाएं विकसित कर सकते हैं जिससे गांव का विकास होगा तभी शहरों का विकास होगा, और शहरों का विकास होगा तभी हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। ऐसी योजनाएं सरकार लाती हैं, तो इन सब योजनाओं का फायदा हमें ज़रूर ज़रूर उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा सुनी भाई। और आज के हमारे अगले कलाकार हैं यशवीर, और यशवीर को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है ये रश्मि झरना और भरत कुमार की, लेकिन इन्होंने अपनी जगह का नाम लिखा है भाई। हम
0: जी
1: कार्यक्रम के माध्यम से कहते
0: जी
1: रहते हैं कि भैया अपनी जगह का नाम भी आप लिखा करें।
0: बिल्कुल, ये हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से है, सुल्तान सिंह, कपिल देव, इमानी और उनका पूरा परिवार, और छत्तीसगढ़ डुमराव गांव से ये पत्र में लिखा है राजपाल भगेजिया, राधिका तमन्ना और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है बठिंडा रोड मंडी से, उसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनका समस्त परिवार।
0: ये पत्र भेजा है आदर्श नगर मालवट पंजाब से है, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेडी शर्मा और उनका परिवार जिन्होंने सुनना चाहा है यशबीर जी को। और एक और ये पत्र हम शामिल कर लेते हैं, ये पत्र मिला है हमें गांधी गुजरात से, सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल राठौर, उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें हनुमानगढ़ से मिली है, इसको भेजने वाले जाक मोहम्मद समीम बेगम और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई नूर महल।

0: बाबा पट्टी वाली से पत्र लिखते हैं, ये इन्होंने सुनना चाहा है यशबीर जी को, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, उनका पूरा परिवार, ये दुबैया नेद वाला जिला गाजीपुर से पत्र भेजा है, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, उनका पूरा परिवार।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं यशवीर से ये रागनी।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद रागनी सुनी यशवीर से, और किस्सा था गोपी चंद का। और देखिए, आज के जो अगले कलाकार हैं वो तेजवीर विदुड़ी, और तेजवीर विदुड़ी को सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है गांव चौधरी वास हरियाणा से, मांगेराम सतौड़, रितु हिमानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: जी
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई गांव पनियार चक्कर हरियाणा से, उसको जो भेजने वाले हैं
1: देख, इन्होंने
0: भाई।
1: देखो वैष्णो भाई, इन्होंने कहा है कि जो ग्राम जनसा कार्यक्रम बहुत ही जोरदार है, बहुत ही अच्छी रागनी सुनाई जाती है, और हमें हमें कोई भी रागनी में शामिल कर लें। देखिए, अब श्रोता जो है वो जो मोलू कसवाना है वो इतना तारीफ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की, क्योंकि अपार, बहुत दूर दूर तक हमारा कार्यक्रम जाता है और लोग बहुत उसको सुनते हैं।
0: और इसी
1: और
0: क्रम में अगली फरमाइश मिली है रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से, लाल सिरवाला हेमलता हीना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है संदीप मकड़ पिंगावाला चौक जालंधर से।
1: ये पत्र में हमें मिला है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया इब्राहिम और इनका पूरा परिवार सहारनपुर कुमारहेड़ा गांव से लिखते हैं।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है धनोरी तेले वाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की।
1: सादुल शहर से पत्र राजस्थान से लिखते हैं राजकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन और टीलू नायक की। साथ ही फरमाइश मिली है कैथल हरियाणा से मधु नायक की।
1: और ये भोला कलोनी घोंगड़ा जिला करनाल हरियाणा से पत्र में हमें लिखते हैं, जिन्होंने सुनना चाहे तेजपुर बदोड़िया को, विजेंद्र कुमार जयान, कांता रानी, गुंजन साहिल और उनका पूरा परिवार।
0: और देखिए सुनी भाई, काफ़ी फरमाइश और भी हमें मिली हैं जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो देखिए भी 7:05 का कार्यक्रम कृषि जगत अवश्य सुनते रहिए, और अब सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर
1: तेजवीर
0: तेजरी विदुड़ को।

0: सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी तेजवीर विधुड़ी से, और तेजवीर विधुड़ी की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 62 और असम में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में

0: भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: अश्विनी भाई, देखिए अनाज भंडारण का सही तरीका और उपकरणों का जो रख रखाव फसल की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल
0: तो भाई, भंडारण से पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो देखो, अनाज को 2 से 3 दिनों तक तेज धूप में अच्छी तरह सुखाएं ताकि नमी 10 से 12% से अधिक ना रहे।
1: जी
0: साथ ही भाई, साफ सफाई का देखे भंडारण वाले स्थान को कोठी गोदाम की दरारें सीमेंट से बंद कर दें, अगर दरारें कोई हैं तो। और साथ ही वही देखिए, जूट के बोरे में अगर आप भंडारण करते हैं तो बोरियों में अनाज को जमीन से 2-3 फीट ऊंची लकड़ी के चबूतरे या रैक पर रखें जो दीवार से 1.5 या 2 मीटर दूर रहे, जिससे कि सीलन वगैरह ना आए।
1: बिल्कुल
0: और साथ ही देखे भाई, मिट्टी की जो कोठी या लोहे के ड्रम में अनाज भंडारण, उसे अच्छी तरह से एयर टाइट कर दें। भंडारण के बाद आप उसके जो ढक्कन के दरवाजे को अच्छी तरह से टाइट कर दें। साथ ही गोदाम में अगर चूहों के बिल हैं या इस तरह के जो चूहे दिखाई देते तो भाई उनका भी नियंत्रण करना है और चूहेदान आदि के प्रयोग से उनको पकड़ना है।
1: और देखिए साथ साथ में देखिए उपकरण की बात आती है, तो जैसे जैसे ट्रैक्टर है, जैसे प्रेशर है, प्रेशर मशीन है आदि जो हमारे सच्चे साथी हैं, अगर इनका सही रख रखाव ना किया जाए तो काम में रुकावट आएगी और खर्च भी बढ़ सकता है। तो इनके उपकरणों का को हर उपयोग के बाद उपकरण को साफ़ करें, मिट्टी और गंदगी सब हटा दें और समय समय पर जाँच और मरम्मत करें। ढीले बोल्ट और नट कस दें, खराब हिस्सों को तुरंत बदल दें और तेल और ग्रीसिंग का उपयोग करें। मशीनों को समय समय पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करें, इससे मशीनें की उम्र भी बढ़ती है और साथ साथ जब हम उनका काम लेते हैं तो भी वो आसानी से शुरू हो जाती हैं। उपकरणों को वो सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें, बारिश और धूप से बचाएं और साथ साथ में ध्यान रखें कि उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और काम करते समय सुरक्षा नियमों का पालन ज़रूर करें।
0: तो देखिए भाई, इस तरह से अश्विनी भाई ने बताया, छोटी छोटी बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया भाई, कुछ फरमाइश हमें और भी मिली हैं, तो आज के हमारे कलाकार हैं जो विकल गुजर, और उनसे उपदेश सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है भाई, गांव कलाना तहसील भादर।

0: हनुमानगढ़ राजस्थान से उसको भेजने वाले हैं विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और उनका समस्त परिवार।
1: और ये एक और पत्र पढ़ लेते हैं, ये है पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और उनका पूरा परिवार। और ये कुंडी सेक्टर सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से है, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और बेबी गर्वी और उनका पूरा परिवार। और ये एक और पत्र शामिल करते हैं, ये है ताला वार्ड महेंद्रगढ़ से, विजय सिंह प्रकाश सूबेदार और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कम्बोज, पिंकी वंश और उनके समस्त परिवार की तरफ से। पदमपुर जिला श्री गंगानगर से फरमाइश मिले हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से और इसको भेजने वाले रमेश चंद्र और उनका परिवार।
1: ये बाबा कुट्टी रायगढ़ से पत्र में लिखा है, जिन्होंने सुनना चाहे विकल गुजर को। यह शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रिश्तेज कुमार, उनका पूरा परिवार। और एक और पत्र में यहाँ पर शामिल कर लेता हूँ, ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है ग्राम ममना जिला हमीमपुर बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल, कौशल्या, हेमलता, डिंपल और उनके समस्त परिवार की तरफ
1: ये
0: से।
1: भोपालगढ़ राजस्थान से पत्र में मिला है, दीपेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा प्रियार उनका परिवार, जिन्होंने सुनना चाहे विकल गुजर को। और ये दादरी गेट भिवानी से पत्र में लिखते हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, उनका पूरा परिवार।
0: साथ
1: और
0: ही हमें फरमाइश मिले हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप नूतन और उनके समस्त परिवार की तरफ
1: जलालपुर
0: से।
1: जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पत्र लिखते हैं, यशवंत कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति और मुनीश देवी और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है हनुमानगढ़ नजदीक बस स्टैंड से भेजने में रवन वर्मा, अवन वर्मा और दिव्यांश वर्मा और उनका समस्त परिवार।
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से पत्र में मिला है, मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने सुनना चाहे विकल गुजर को। और ये है बादलापुर मुंबई से लिखते हैं, सिद्धांत, पंडिता, अर्जुन उनका पूरा परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई पास रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से इसको भेजने वाले राजेश, साबेल पाटिल, राजदीप और उनका समस्त परिवार।
1: ये जनकपुरी सहारनपुर से पत्र हमें मिला है, जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पार्ल डिकोस्टा और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है अनारकली वजार जगरोह से इसको भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव।
1: ये पत्र हमें मिला है गांव हंडीखड़ा जिला से, हिसार से, राधे राम शर्मा, इंद्र शर्मा, साधक शर्मा और उन्हें सुनना चाहे विकल गुजर को।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला की।
1: ये जिला अम्बाला से पत्र हमें लिखते हैं, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कुमार, जयप्रकाश और उनका पूरा परिवार। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है अब ये पत्र मिला है भिवानी हरियाणा से, ये है महिपाल जी, नीरू और दीपांश और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली हर गोविंद नगर और इसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश गरोर, बेबी गरोर उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: ये बाधा पुराना पंजाब से पत्र मिला, सरदार सरदार जी, परमजीत सिंह और गगनदीप सिंह, गुरदीप सिंह और उनका पूरा परिवार। और एक और पत्र ले लेते हैं, यहाँ पर गांव गोविंदगढ़ माझीवाला कानपुर से पत्र लिखते हैं, ये है राजू राजू उर्मिला, जीनू, टुंडे पाल और मिस्त्री का और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई पटियाला से भेजने वाले मुकेश भट्ट, नीलम भट्ट और इसी क्रम में अगले फरमाइश हमें मिली है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आर्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: ये नांदोड़ छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है, जिन्होंने सुनना चाहे विकल गुजर को, ये है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है सुनील शर्मा, ललिधर शर्मा, मिंटू शर्मा, राजू अग्रवाल, ये लिखते हैं गांव शेरजा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से पत्र में भेजा है इन्होंने।
0: और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राहुल हरमन और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है ढाणा नरसान नरसाना भिवानी से और इसको भेजने वाले हैं जगदीश चिंडालिया, राजू चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई गाँव रामसा वाला जिला सहारनपुर यूपी से भेजने वाले

0: श्याम वीर पूजा देवी मोनी देवी उनका समस्त परिवार।
1: ये पत्र मिला है हमें चिट्ठी मंदिर रोड यमुनानगर से, और भेजने वाले हैं तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, शमा, शिवा और उनका पूरा परिवार,
0: और
1: जिन्होंने
0: ये
1: चाहा है लेकिन
0: फरमाइश
1: टीचर
0: हमें
1: को।
0: और भी मिली है पटेल नगर मालोड से, डॉक्टर रामेश कुमार, गीता रानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से, गांव चोलदा बागपत से संजय डिंगे, नमन डिंगे, अपार डिंगिया की। और साथ में हमें फरमाइश और भी मिली है भाई, ये फरमाइश मिली है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और एक और हमें फरमाइश सोनी भाई मिली है
1: चौधरी वास से हैं।
0: चौधरी वास से, राजू अग्रवाल, केशव लीलाधर शर्मा, उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं विकल गुजर से ये उपदेश।

0: भाई अभी भाइयों ने सुना विक्कल गुजर को अपनी फरमाइश पर, और अभी कार्यक्रम को बड़े आगे बढ़ाते हैं, एक पत्र अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। ये पत्र हमें भेजा है विनोद जी ने, गांव काकूपुर यूपी से है। ये लिखते हैं कि मेरा खेत खाली हो गया है और मूंगफली की फसल की बिजाई करना चाहता हूँ, इसके लिए कौन कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी रहती है और इसमें कौन कौन सी किस्में ली जाएँ जिससे अधिक उत्पादन हो, और क्या क्या कार्य कर सकते हैं इस फसल के साथ साथ।
1: तो देखिए विनोद भाई, मूंगफली की बिजाई आप करना चाहते हैं तो समय की अगर बात करें तो खरीफ में मूंगफली की बिजाई का सही समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक सबसे उचित माना जाता है। और मिट्टी के चयन की बात करें वैसे तो देखिए मूंगफली सभी प्रकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन हल्की बलुई दोमट मिट्टी मूंगफली फसल के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। साथ ही भाई एक बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई चिकनी मिट्टी और भारी मिट्टी इसके लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, तो कोशिश करें कि उसमें मूंगफली ना लगाएं। और यदि भाई देखिए गुच्छेदार आप किस्मों की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है। गहराई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है, और प्रति हेक्टेयर जो 60 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो मूंगफली की खेती में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व है। बुआई के 15 दिन तक खरपतवार में अधिक वृद्धि होती है, अतः फसल में 2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए, बुआई से 12 से 15 दिन के पश्चात और करीब 15 से 20 दिन के पश्चात फिर दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सामान्यतः बरसात में जो के मौसम में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वर्षा न हो और सूखे की स्थिति में आवश्यकता अनुसार 2-3 सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। और वही देखिए मूंगफली में कई तरह के रोग व बीमारी लग जाते हैं, जैसे रोजेट रोग, टीका रोग, रोमली मूंगफली की माहू और लिक माइनर आदि जो लग जाते हैं, इनसे भी भाई फसल को आपने बचाना है। और सिंचाई की हमने बताई कि भाई आवश्यकता, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई जो ये बीमारियां और रोग लगते हैं इनसे फसल को आप बचाएं। और कटाई की बात करें तो जब पौधे पीले रंग के हो जाएं और अधिकांश नीले नीचे की जो पंक्तियां गिरने लगे, पत्तियां गिरने लगे, तो भाई उस समय निराई कटाई कर लेनी चाहिए। इस प्रकार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, अच्छी किस्म लेंगे और समय पर कटाई करेंगे तो आप ले पाएंगे मूंगफली फसल से भरपूर उत्पादन।
0: तो यहाँ पर विनोद भाई का जो जो प्रश्न था, जो जो उसका जवाब दे दिया गया है। आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो अपनी मूंगफली की जो जो खेती है, जो फसल है, उसका अधिक उत्पादन ले सकते हैं। खासकर अपना कीट प्रबंधन और सिंचाई और निराई गुड़ाई का भी ध्यान रखें, जिससे जिससे जो भी पोषक तत्व आप अपनी फसल को देते हैं उसमें वो सारे के सारे पोषक तत्व आपके फसल को मिले, इसलिए आप अधिक से अधिक खत पर नियंत्रण जरूर रखें।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विजय से सुन लेते हैं ये उपदेश।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने सुना ब्रजेश उपदेश। और अब देखिए भाई, मौसम की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान आने वाले समय में 35 से 37 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में देखिए भाई, जो किसान भाइयों के जिनके खेत खाली हो गए हैं, तो भाई वो खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर दें, क्योंकि इससे मिट्टी में छुपे हुए जो हानिकारक कीड़े और रोगों को तेज धूप से नष्ट किया जा सकता है। रबी फसलों का भंडारण की बात करें तो भाई, रबी फसलों के में चना, गेहूँ, सरसों की गहराई और गहाई और सफाई करने के बाद उन्हें नमी युक्त स्थान पर स्टोर करें। साथ ही भाई देखिए, सब्जियों की अगर बात करें तो भिंडी, लौकी, तोरी, करेला, कद्दू और बैंगन की बुआई इस समय की जा सकती है। चारा फसलों में देखिए, मक्का, ज्वार, बाजरा और लोबिया की बुआई करें, जो गर्मी में तेजी से बढ़ती है। कपास की बुआई के लिए भी समय उपयुक्त है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो फलदार पौधों, नींबू, आम, अमरूद और सब्जी की फसलों में नमी बनाए रखने के लिए हल्की और नियमित सिंचाई अवश्य करें। इस तरह से भाई देखिए, मौसम को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है।
1: और
0: और
1: यहाँ पर एक
0: अब
1: सुनी भाई, यहाँ छोटी सी बात यहाँ पर और रहेगी कि जब खेती बाड़ी के साथ जो हमारे पशु जो हैं, जो हम पालते हैं, जो जो हमारे पशुपालक हैं, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उनका भी ध्यान रखें, उनको भी ठंडी जगह पर बांधें और साफ़ पानी पिलाएं, ताज़ा पानी पिलाएं, जिससे पशुधन भी हमारा स्वस्थ हो। जैसे हम कृषि की फसल की देखभाल करते हैं, वैसे अपने
0: और
1: पशुओं
0: अब
1: की भी
0: भाई,
1: देखभाल
0: चलते
1: करें।
0: चलते जल्दी से कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल 5:20 पर कार्यक्रम लोक रंजनी और 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में खनिक दिवस और आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा की बचत के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वही देखिए, 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:30 हुए हैं और अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

चंदन दास की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। इसी के साथ गज़लों का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राजधानी के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मृत्यु। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी। मुख्यमंत्री ने नई चालान निपटान प्रणाली की घोषणा की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। श्री संधू ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उपराज्यपाल ने बताया कि अधिकारियों को घायलों की सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने को भी कहा गया है। श्रीमती गुप्ता ने दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दुर्घटना को हृदय विदारक बताया।
1: लगभग पहली कॉल जो है पुलिस को 3:47 में मिली और 3:52 पे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। लगभग 14 गाड़ियां हैं जिन्होंने पूरी आग को काबू करने का काम किया है। 20 लोगों की जान बचाई गई है और 9 लोग इसमें हताहत हुए हैं। उनके परिवारजनों से भी मिला हूं और जो दृश्य है वो बड़ा हृदय विदारक है। अब जांच की जाएगी। हमारे लिए प्राथमिकता यह है जो लोग घायल हैं उनको सही इलाज मिल जाए और जो नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई हो।
0: इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लोथरा और शाहदरा जिलाध्यक्ष दीपक गाबा ने भी आज

0: अदालत में चुनौती देने के लिए पहले 50% राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इसके विपरीत समय सीमा समाप्त होने पर वाहन को अयोग्य के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य रोक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 5 या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने कहा कि चालान की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल निगरानी में रहेगी और कैमरों तथा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से चालान भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि ऑनलाइन चालान 3 दिनों के भीतर और फिजिकल नोटिस 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति तक पहुँचा दिए जाएंगे। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1 बैंक अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से हाई रिटर्न का लालच देकर 45 लाख से अधिक रुपए की ठगी की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहतर उपयोगी और प्रभावशाली होने की कामना की। कैबिनेट सचिवालय ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डॉ. बालासुब्रमण्यम और डॉ. अनिया की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की हरियाली ही इसकी जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
2: हमारी दिल्ली में पेड़ कटने से बचाना होगा तो बारिश का मौसम होगा तो इस बार दिल्ली शहर में हम उतने पेड़ लगाएंगे जितने आज तक कभी किसी ने ना सोचा होगा ना लगाया। आज के इस मौसम में क्या करना, आज हमको जो लगे हुए पेड़ है उसको बचाना है और उसके लिए जरूरी है कि जहां भी आपको ये दिखाई दे कि कोई भी पेड़ कोई काट रहा है तो तुरंत 1800118600 पे कॉल करना।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुर स्थित बापूधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं मौके पर ही सुनकर संबंधित विभागों को तय समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। अभियान के तहत हर रविवार शहर में पौधारोपण किया जाएगा जिससे लोग पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी लेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का एक भावनात्मक आंदोलन है जो स्वच्छ और हरित नई दिल्ली के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। राजधानी में अंतिम छोर तक पहुंच को मजबूत करने और शहरवासियों को सुविधाजनक तथा सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने में दिल्ली मेट्रो का बहुत योगदान है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के 32वें स्थापना दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरवासियों और मेट्रो कर्मियों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो शहर की लाइफलाइन और आधुनिकता की पहचान है। उन्होंने कहा कि मेट्रो करोड़ों लोगों के सपनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने अपने 32वें स्थापना दिवस पर इसे समर्पण, उपलब्धियों और निरंतर प्रगति का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। मेट्रो रेल निगम ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को जोड़ने में समय पालन, सुरक्षा और विश्वसनीयता इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। राजधानी में मेट्रो की सेवाएं 1995 में शुरू हुई। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित

0: किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हो। पंचायती राज मंत्रालय ने भी यह बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पिछले 7 सालों में इस प्रक्रिया ने उन मरीजों में नई उम्मीद जगाई है जिन्हें पहले सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता था और इलाज के सीमित विकल्प थे। वर्ष 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन में बताया गई यह तकनीक पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम रिसेक्शन का एक संशोधित रूप है। यह तकनीक सर्जरी के दौरान रीढ़ की स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है और जटिलताओं के जोखिम को कम करती है। डॉक्टरों के अनुसार जिन मरीजों को पहले सर्जरी में उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता था वे अब सफल ऑपरेशन के बाद सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। देशवासियों के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली में आज संडे ऑन साइकिल का 72वां संस्करण आयोजित किया गया। इस अवसर पर फिट इंडिया के निदेशक सुशांत कंडवाल मौजूद रहे। उन्होंने लोगों के साथ साइकिल चलाई और फिटनेस तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री कंडवाल ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलें और इस बार हमने किसान भाइयों को अपने साथ लिया है।
1: हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अलग अलग समाज के जो हमारे अलग अलग जो पिलर हैं उनको हम साथ लेके चलें। इस बार हमने अन्नदाता को साथ में लिया। सारे हमारे किसान भाई जितने भी हमारे जो लोग इन्वॉल्व हैं हमें रोज का अन्न प्रोवाइड करने में हमने उन लोगों को इस बार अपना पार्टनर बनाया। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि हम इस मूवमेंट को इतना बड़ा कर पाए हैं कि लोग अब स्वेच्छा से आते हैं। सो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक बड़ी अचीवमेंट है, फिट इंडिया के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मुझे लगता है हम बहुत सक्षम रूप से उसे पूरा कर पा रहे हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पहलू को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांत को मान्यता और विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस के अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि तेंदुआ प्रकृति के सबसे सुंदर और शक्तिशाली वन्य जीवों में से एक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने तेंदुआ की महत्वपूर्णता को दर्शाते हुए कहा कि उनके संरक्षण का संकल्प लेना समय की मांग है। और अब चलते चलते राजधानी के मौसम की खबर। आज दिन के समय में धूप के साथ धीमी हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं दोपहर के समय में और सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मृत्यु। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर और अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हास्य कवि सम्मेलन। प्रतिभागी कवि है श्री आरपी शर्मा, श्री जयसिंह मान, श्रीमती सीमा रंगा और श्रीमती ममता जयंत। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं श्री जयसिंह मान।
1: आओ हंसे और हंसाए, आज फिर हास्य कवि सम्मेलन है और देखना है आपको कि कितना दम होता है कवियों की वाणी में। दो कवियत्री और दो ही है कवि, कहीं नहीं मिलेगी समानता की ऐसी छवि। सबसे पहले आज के इस हास्य कवि सम्मेलन में जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उन मैडम के बारे में बता देता हूं कि हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगी मैडम श्रीमती सीमा रंगा। और नारी शक्ति के जमाने में इनके पति भी नहीं लेते इनसे पंगा, और इनकी कविता इतनी पवित्र और निर्मल जितनी है माँ गंगा। प्रकाशित पुस्तकें 19 से होने वाली है 20, और हमारी दुआ इनके साथ और प्रभु का आशीष। कम समय में कैसे करूं इन सबका मैं गुणगान, और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सारस्वत तिरंगा गौरव गोपाल दास नीरज साहित्य सम्मान मैडम सीमा रंगा।
2: आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार क्या हुआ
3: जी,
2: मैं एक कवि सम्मेलन में गई हुई थी, एक महिला मुझे काफी देर से घूर रही थी
3: जी,
2: तो मैं देख रही सब हंस रहे हैं, सिर्फ ममता जी वो महिला ही नहीं हंस रही थी
3: जी।
2: तो फिर मैंने देखा इनसे पूछना चाहिए, मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं हंस रहे, बाकी सब हंस रहे हैं, क्या मेरे चुटकुले आपको पसंद नहीं आए? फिर उन्होंने जवाब दिया मुझे, मैडम चुटकुले तो आपके पसंद आए हैं, लेकिन जो आपकी शकल है मेरी सास से मिलती है। और एक बार क्या होता है, एक पति शराब पी के आया और उसको पता था अभी घर पे जाऊंगा तो पत्नी की सुननी पड़ेगी, तो उसने क्या किया, घर जाते ही लैपटॉप खोला और लैपटॉप पे टाइप करने लगा। पत्नी किचन से आई, बोली आज फिर शराब पी के आ गए? बोला नहीं पी के आया। बोले झूठ बोल रहे, पी के आए हो? बोला नहीं मैं नहीं पी के आया। बोला अगर आप पी के नहीं आए तो अटैची खोल के क्या टाइप कर रहे हो? और एक बार एक पत्नी का सताया और पति थाने जाकर बोलता है, दरोगा साहब मेरी एक बार रिपोर्ट लिख लो, और अपनी पत्नी की महिमा गा रहा है, कैसे सुनिएगा। करू पत्नी की दिन रैन पूजा, काम न मुझको कोई दूजा, डर के साये में रहता हूँ सदा, बाहर निकल पाता हूँ यदा कदा, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचाओ, पत्नी को अभी यहाँ बुलाओ, तुम उसे सजा दिलाओ। दरोगा बेचारा वो भी शादीशुदा था, पागल हम नहीं बचे पत्नी से, तुझे कैसे बचा लें, आजा तू भी थाने में रह ले हमारे साथ। दरोगा बोलता ये तो ऐसी जेल है भाई, जिस जिस के हिस्से है आई, नींद चैन उसने है खोया, हंसना बोला जी भर रोया, तुझे बचाएंगे हम कैसे, हम तो खुद ही तेरे जैसे, संग हमारे आकर रह ले, पर दुख अपना खुद ही सह ले।
3: वाह बहुत अच्छा।
2: और एक दिन एक पत्नी मुंह फुला के बैठी हुई थी, बच्चे देख रहे हैं आज तो मेरी मम्मी मुंह फुला रही है, बड़ी उदास लग रही है, पापा को शिकायत कर रही है, पूछ पूछ कर बालक हारे, हमें बताओ पापा प्यारे, घेरे बैठी घोर उदासी, बदन दर्द है या खांसी, कम है बीपी है या हाई, हंसना भूली क्यों है माई। सुनते ही पापा चिल्लाए, माँ की चिंता तुम्हें सताई, जिसके कारण भूला हंसना, मत उसकी बातों में फंसना, जब से ये जीवन में आई मैंने अपनी हंसी गवाई।
3: क्या बात, बहुत अच्छी।
2: और एक बार एक पति पत्नी दोनों गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला भी तेरी गाड़ी की तलाशी लेंगे, तो बोला हाँ सर ले लो, बोला कागजात दिखाओ अपने, तो उसने सारे कागज निकाल के दे दिए। पुलिस वाला सोचा इसने तो सारे कागज दिखा दिए, तो उसने दिमाग लगाया, बोला ये साबित करो जो महिला तेरे साथ बैठी है वो तेरी पत्नी है
3: जी।
2: पहले तो पति सोचता रहा, फिर उसने दिमाग लगाया, बोला सर एक बार इधर आइए। बोला क्या? कान में धीरे से बोलते हैं, अगर आप ये साबित कर दो ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। एक बार एक पोता अपने दादा के पास आता है और बोलता दादाजी दादाजी। बोला क्या? एक बार टैं बोलो ना। बूढ़ा सोचता है बोल देता हूँ। बोला टैं। दोबारा फिर बच्चा खेल खेल के भाग

0: कहता है, बोला दादाजी दादाजी, बोला हाँ, बोला टैं बोलो, बोला बूढ़ा सोचता है फिर टैं बोल देता हूँ, बोला टैं। तीसरी बार फिर बच्चा आया, बोला दादाजी दादाजी, बोला हाँ बेटा, बोला टैं बोलो। अब की बार बूढ़े को गुस्सा आ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली, बोला ये बता पहले चक्कर क्या है तेरा। बोला दादा चक्कर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अंदर रूम में गया ना, जब मेरी माँ ये बोल रही थी एक बार ये बूढ़ा टैं बोल दे फिर बड़ा टीवी लगाएंगे घर में। और एक दिन एक बूढ़ी सुबह सुबह अखबार पढ़ रही थी और जोर जोर से पढ़ रही थी, और उसमें पहले ही पेज पे खबर छपी हुई थी, हरियाणा में विधवा पेंशन 2,000 रुपए कर दी। और साथ में बूढ़ा ही बैठा हुआ था, बूढ़ी बूढ़े की तरफ देखती है, बूढ़ा बोलता मेरे को क्यों घूर रही है, बोला आपकी वजह से हर महीने 2,000 का नुकसान हो रहा है।
1: जी
0: और एक आखिरी सुनिएगा, समाज दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे देश को चिंता है, पर हम महिलाओं को एक ही चिंता है, कल कौन सी साड़ी पहनूं और कौन सी सब्जी बनाऊं। पीके जी, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली हो पर हमारी समस्याओं का समाधान है ही नहीं। पूछिएगा जरा एक बार कौन सी समस्याएं हैं
1: जी
0: जी।
1: बताएं
0: मेरे पास कपड़े नहीं हैं और कल मैं कौन सी पहनूं, सब्जियों से फ्रीज भरा पड़ा है पर कल क्या
1: क्या
0: क्या
1: बनाऊं।
0: बनाऊं, अलमारी खोलो तो कपड़े ऐसे स्वागत करते हैं जैसे का फूलों की मालाओं से स्वागत होता है,
1: जी
0: ऐसे ही हमारे कपड़े स्वागत करते हैं, पर समस्या वही की वही है पीके जी, हमारे पास तो कपड़े नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है जी
0: लड़के बेचारे नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और हम महिलाएं एक मैचिंग फाल के लिए 10 दिन लगा देती हैं। अब मेरे पति तो सर एक दिन बोल भी रहे थे मुझे,
1: जी
0: धन्य हो देवी तुम जो मुझे एक बार में ही पसंद कर लिया, अगर साड़ी की तरह देखती मैं तो आज तक कुंवारा ही रहता।
2: तो अब हमारी अगली कवित्री, हास्य में जिनकी कोई नहीं है समता, हमारी अगली हास्य कवि है मैडम ममता। जी हाँ, ममता जयंत मैडम का कर रहा हूँ उल्लेख, जिनके पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं लेख और आलेख, और इसके अलावा प्रकाशित हुई जिनकी कई किताब, और राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में भाग लेने वाली प्रतिभा को हमारा आदाब, मैडम ममता।
3: देखिए अपनी बात शुरू करती हूँ मैं।
1: जी
3: हमारे चारों तरफ ना दो
1: जी
3: तरह के पशु रहते हैं,
1: जी
3: कुछ
1: जी
3: पशु तो चौपाए होते हैं
1: जी
0: जी
3: है
0: जी
3: ना, पर हमारे चारों ओर कुछ पशु दोपाए भी होते हैं
0: जी
3: है ना। तो ये जो मेरी कविता है ये
1: जी
3: दोपाए पशुओं को लेकर है,
1: अच्छा
3: सुनिएगा।
1: स्वागत
3: दोपाए
0: जी
3: पशु,
0: जी
3: दोपाए पशु अधिक खतरनाक होते हैं
1: जी
3: चौपाए पशुओं से।
1: जी
0: जी
3: दोपाए पशु अधिक खतरनाक होते हैं चौपाया पशुओं से, ये माहिर है मुस्कुराकर मारने में।
1: क्या बात
0: वाह,
3: ये माहिर है मुस्कुराकर मारने में, इस कदर कि मारक क्षमता भेद जाती है,
1: जी
3: इस कदर कि मारक क्षमता भेद जाती है जड़ जंगल जमीन को भी।
1: जी बिल्कुल ठीक बात,
3: इस कदर की मारक क्षमता भेद जाती है जड़ जंगल जमीन को भी, देवता से दिखने वाले ये दैत्य रहते हैं रूप कला में पारंगत।
1: वाह,
3: रहते हैं रूप कला में पारंगत, जानते हैं दिल नुमा जमीन पर चलना, दिल पर तो ऐसे सहज सहज चलते हैं
1: जी।
3: जानते हैं दिल नुमा जमीन पर चलना, लेना रसना से औजार का काम,
1: बहुत
3: लेना रसना से औजार का काम, नहीं दिखते इनके निशान।
1: क्या
2: बहुत
1: बढ़िया,
3: नहीं दिखते इनके निशान पर उभर आते हैं बरसों बाद भी, नहीं दिखते इनके निशान पर उभर आते हैं बरसों बाद भी, ना मालूम पशुओं की कोई जाति है
1: जी,
3: ना मालूम पशुओं की कोई जाति है या है आदम का कोई नाता इनसे।
1: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया,
3: या है आदम का कोई नाता इनसे। अगली कविता, कविता है मेरी चांद पर।
2: बहुत बढ़िया,
3: हो रही है चांद की कम कल से आज चांदनी।
1: क्या बात है,
3: हो रही है चांद की कम कल से आज चांदनी, पर मिसाल सादगी की बन लुटाता रोशनी।
1: वाह बहुत बढ़िया,
3: पर मिसाल सादगी की बन लुटाता रोशनी, शीतलता की सौम्यता बन गई है रागनी, पहुंचा रहा है धरा तक दूध यासी चांदनी।
1: बहुत अच्छा,
3: पहुंचा रहा है धरा तक दूध यासी चांदनी, नहीं होता और दृश्य इससे मनोहारी कोई, नहीं होता और दृश्य इससे मनोहारी कोई, सजता है तारों के संग आसमां पर चंद्रमा।
1: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
3: सजता है तारों के संग आसमां पर चंद्रमा, टिमटिमाते तारों और चांद के उजालों से, टिमटिमाते तारों और चांद के उजालों से, होती है मसरूर सदा आदमी की सभ्यता।
1: क्या बहुत, बहुत
3: होती है मसरूर सदा आदमी की सभ्यता, पूर्णिमा का देख रूप बोल उठी चांदनी, क्षितिज की है चांद गरिमा कवियों की है कल्पना।
1: क्या बात,
3: क्षितिज की है चांद गरिमा कवियों की है कल्पना।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
2: आज के इस हास्य कवि सम्मेलन में अभी मैं अपने तीसरे कवि को आमंत्रित करता हूँ, श्री आर पी शर्मा।

0: वरिष्ठ हास्य कवि
1: जी
0: इनके बारे में क्या कहें, जिनकी अंतरराष्ट्रीय छवि न्यूज चैनलों पर करते हैं तीखी बहस, लेकिन घरवाली से भी ये नहीं करते कभी बहस। समय कम है, गिना नहीं सकते इनको जो मिले अवार्ड, इनका नाम छाप चुकी है एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड।
1: जी
0: श्री आरपी शर्मा जी,
1: देखिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। बात लॉकडाउन के दिनों की है, तो मेरी पत्नी परेशान रहती थी, घर में वक्त नहीं देते, हमेशा कहती थी
0: जी।
1: अब वर्किंग डे वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था, और छुट्टी वाले दिन मैं पूरा दिन सोता था, पर जब लॉकडाउन की बात रेडियो ने बतलाई तो मेरी पत्नी खुशी से फूले नहीं समाई, बोली अब चाय क्या, खाना भी आप बनाएंगे और ये वक्त हम घर में मिलकर प्यार से बिताएंगे। फिर क्या था, कभी चाय कभी पकौड़े और नए नए पकवान बनते थे, और हम तो निठल्ले खाते पीते सोते रेडियो सुनते और मस्त रहते थे। पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई, काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई, 3-4 दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। तीन चार दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, ये बात जब उसके अज्ञान में आई तो उसने तुरंत थैले के साथ सामान की लिस्ट थमाई। फिर उस दिन बाहर क्या निकले मेरे भाई, अगले 8 दिन खटिया में पड़े पड़े करते रहे शिकाई, और 9वें दिन वो दोबारा कराने को ठुकाई, एक नई योजना लेकर आई, बोली सूजन कम हो गई है। बोली सूजन कम हो गई है और चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट, थोड़ा बाहर घूम आओ, दिखाया अपने ठाट वाट, अब भी तुम घर का काम नहीं सीखोगे तो डायल कर दूंगी हेल्पलाइन और 14 दिन को करा दूंगी तुम्हें क्वारंटाइन। फिर क्या था, वक्त का मारा ये बादशाह बेचारा बन गया गुलाम, और रोते गाते सीखे घर के सारे काम। प्याज काटते काटते रोता था, प्याज काटते काटते रोता था, और रोते रोते कपड़े धोता था। पर लॉकडाउन के नियम मैं अब भी पूरी तरह निभा रहा हूँ, सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। पहले मैं केवल दफ्तर के काम जानता था और मेरा बेटा मुझे केवल एक कर्मचारी के रूप में जानता था, पर अब तो पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है और मेरा बेटा मुझे हाउसवाइफ कहता है।
0: शर्मा जी कोई एक और कविता सुनाइए।
1: जी जी बिल्कुल, एक प्रेम की बात पे सुनाता हूँ। हर इंसान प्रेम करना चाहता है, लेकिन प्रेम मिलना ना मिलना अलग बात है। हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं
0: जी।
1: तो एक बार मैंने भी कोशिश की, मेरा क्या हाल होता है मैं आपको बताता हूँ कि वैलेंटाइन एक प्यार का दिन है या एक दिन का प्यार, नौजवानों के लिए प्यार का त्योहार। प्यार करने वाले कसमे खाते हैं हजार, और दिमाग पर चढ़कर बोलता प्यार का खुमार। अब एक बार हम पर भी प्यार का भूत हुआ था सवार।
0: अच्छा जी।
1: एक बार हम पर भी प्यार का भूत हुआ था सवार, पर पिताजी ने जूते से उतारा था बुखार। पर हमने भी हार नहीं मानी, बल्कि एक बात मन में ठानी कि अपना भी बनाएंगे कोई वैलेंटाइन, तब दिखेगा चारों ओर फाइन ही फाइन। अब इरादों में तो बड़ा दम था, पर वजन ज्यादा था तो चांस बड़ा कम था। खैर नए कपड़े पहन के लगने लगा था कूल, ऊपर से खरीद लिए मैंने ढेरों फूल। तो पहली लड़की ने फूल लेने से पहले ही दे दी गाली, दूसरी ने भी बेइज्जती कर डाली, तीसरी को मैं लगा जोकर, और चौथी मुझको कह गई लोफर, और पांचवी बोली फूल दिया तो थप्पड़ मारूंगी, और छठवीं बोली भाग जा नहीं तो पुलिस बुला लूंगी, और सातवीं ने तो गजब ढा लिया, तुरंत फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और बोली डार्लिंग यही है बदमाश लोफर गुंडा, तभी पीठ पर जोर का पड़ा उसके बॉयफ्रेंड का डंडा, 2 घंटे रोया तब जाके दर्द पड़ा ठंडा, उसके बाद मैंने कभी नहीं उठाया प्यार का झंडा, किसी ने दिखाया चांटा तो किसी ने डांटा, बहुत मुश्किल से मित्रों आधा दिन काटा, ढेरों फूल और मेहनत हो गई बेकार, और डलिया में देखा तो फूल बचे थे केवल 4, प्रण किया कि इन फूलों को तो नहीं करेंगे बेकार, कम से कम इनको तो दिलाएंगे इज्जत और प्यार। तो पहला फूल मैंने मंदिर में भगवान जी को चढ़ाया, पंडित जी ने माथे पे इज्जत से चंदन लगाया, दूसरा फूल स्कूल से आती बच्ची को दिया, बदले में उसका प्यार भरा थैंक यू लिया, और बचे नोटों से मैंने माँ का नया चश्मा खरीदा, और खरीदी बहन की किताब, जो खरीदना था उनका महीनों पुराना ख्वाब, घर जाकर बहन को किताबों के साथ दिया फूल और उनकी नम आंखों ने उनको किया कबूल। अब देखिए आखिरी फूल बचा है
0: जी।
1: अब आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया, आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया, आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया। उस दिन पहली बार मैंने खुशी में माँ को रुलाया और मेरी रोती प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ ने मुझे सीने से लगाया और बोली तू धुंधला धुंधला सा दिखता था महीनों से अनेक, अब तेरी मेरा सच्चा वैलेंटाइन, मेरा सच्चा वैलेंटाइन।
0: आपने परिवार में सबको बांटे फूल, लेकिन नारी शक्ति के जमाने में पत्नी को गए भूल।
1: अब जो आज का संचालन कर रहे हैं, इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, श्री जय सिंह मान जी को, जो कि दिल्ली के निवासी हैं और सेवानिवृत्त वायु सैनिक हैं। सैनिक जो होता है वो आजीवन सैनिक रहता है, भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय श्री जय सिंह मान जी।
0: धन्यवाद शर्मा जी, असल में मेरा कोई परिचय पूरा देता ही नहीं है। मेरा पूरा परिचय मैं खुद दे देता हूँ
1: जी,
0: कि मैं हूँ जय सिंह मान
1: जी,
0: एक पत्नी दो संतान,
1: क्या बात है,
0: और बाहर खुश घर में परेशान,
1: क्या बात है।
0: अक्सर बीवी रोज रोज कहती है कि ये तुम्हारा कसूर है, मैं उनको बोलता हूँ ये तुम्हारा कसूर है
1: जी।
0: तो मैंने एक दिन उनको बड़े प्यार से समझाया कि ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है, ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है, हम दोनों को फंसाने वाला या तो तेरा ससुर है या मेरा ससुर है।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो आजकल नारी शक्ति का जमाना आ रहा है
1: जी,
0: तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा शर्मा जी
1: जी
0: कि घर कब लौटोगे
1: जी,
0: घर कब लौटोगे, जाने से पहले ही घरवाली को बता
1: जी,
0: वरना
1: जी
0: तलाक का मुद्दा बन सकती है आपकी ये खता। आजकल बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं
1: जी, बिल्कुल हाँ,
0: लड़के 30-32 साल के हो रहे हैं
1: जी,
0: मना कर देते हैं, लड़की पसंद नहीं आती
1: जी।
0: तो मैंने बेटे को कहा
1: जी,
0: बेटा तुझे लड़की पसंद ना आए तो बेशक शादी की हाँ मत करना
1: जी
0: जी, बेटा तुझे लड़की पसंद ना आए तो बेशक शादी की हाँ मत करना, लेकिन अगर मैं तेरे लिए दूसरी मम्मी ढूंढ लूं तो ना मत करना। और नारी शक्ति पे ही बता देता हूँ
1: जी
0: कि कोई नहीं रोक पाया परिवर्तन की गति
1: जी,
0: कोई नहीं रोक पाया परिवर्तन की गति, सदियों से औरत होती रही सती
1: जी,
0: और नारी शक्ति कानून से समय का चक्र घूमेगा
1: जी,
0: सावधान अब जी, सती होने की तेरी बारी है पति। और किस किस को दोष दें
1: जी,
0: किस किस को दोष दे, जमाना ही बदल गया असल में, हमने तो देखा है मासूक को भी कबूतर की नस्ल में,
1: क्या बात है,
0: हमने तो देखा है मासूक को भी कबूतर की नस्ल में, हर दिन जोड़े बदल रहे हैं शहर में, कभी इस बगल में तो कभी उस बगल में।
1: वाह बहुत बढ़िया।
0: तो मैं आपको एक पत्नी चालीसा सुना देता हूँ जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सुनाइए।
0: किसी भी चालीसा से पहले एक दोहा होता है
1: जी,
0: तो पहले एक दोहा
1: जी,
0: मन करे पत्नी को तज ठीक होवे सभी बीमारी, और जिसने कर रखी है खटिया ही खड़ी हमारी, माँ बाप की मान कर पहना दिया था हार, बल बुद्धि विद्या मेरी कर दी बंटा धार। तो अब चालीसा शुरू होती है
1: जी,
0: ससुर कहे मेरे घर आकर तुझको दुल्हन दूंगा लाकर, समझा नहीं मैं उसका ड्रामा, पटा लिए मेरे फूफा मामा, दान दहेज की नहीं है तंगी, छोरी ब्याहूं इसी के संगी, फिर वर मिले ना इसके जैसा, लड़की छोटी लंबे कैसा,
1: क्या बात,
0: ढोल इसी के घर पे बाजे, करूंगा टीका इसका आजे, कुछ चावल कुछ लेकर चंदन, रिश्ते का ये बांधा बंधन, शादी जल्दी करने को आतुर, मेरा ससुर बड़ा ही चातुर, फेरे हो गए तुरंत में फसिया, बीवी मेरे मन ना बसिया, सूक्ष्म रूप धरी माँ धमकावा, विकट रूप धरी बाप डरावा, भीम रूप धरी डर के मारे, अगले दिन थाने गए सारे, कुछ की जमानत ली करवाए, बाकी सभी जेल में पाए, सिर पर आ बैठ

0: हत्थी कर डाई तो कोर्ट में लड़ी लड़ाई। तारीख पर तारीख लग जावे जज वकील हमको समझावे। पत्नी रूप लिया अग्निशा लिखा दिया नाम जीजा भगनी का। रिश्तेदार जो मिला जहाँ ते वो ही उठवा लिया वहाँ ते। जिनने कोई कसूर न कीना वो भी केस में फसवा दीना। नारी का आ गया जमाना नरकी चले न सब जग जाना। मुझसे बोली सुन लो जानू मेरी सब मानो तो मानू। बना लिया मुझे घर जमाई सारे केस खत्म करवाई। बोली नीति ये अपना लेते तो सब क्यों क्यों हम जेल में देते। सारी तनख्वाह ली रखवारे मैं हूँ खाली बिन पैसा रे। रहता अब बीवी की सरना जीवन भर डरना ही डरना। पूरी अपनी चलाती आपे हम तो उसकी हाँक ते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब पत्नी का नाम सुनावे। मेरी दूर करो ये पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तीनों टेम खाना बनवावे झाड़ू पोचा बर्तन धुलवावे। मेरा घर में ना कोई साझा नौकर बन गया मैं था राजा। दोपहर उठे श्याम ही सो जावे उठते ही सब पे चिल्लावे। खा जाती राशन वो सारा इसके साथ ना होवे गुजारा। रिश्तेदार घर आवे हमारे घर में घुसते ही धिक्कारे। उसकी बहन और जीजा आता भाभी बच्चों सहित भराता। पियर रसायन उसके पासा मेरे घर वाले सब दासा। पियर वाले ही सब खावे हम सारे भूखे सो जावे। मेरे संग माँ बाप सताई सारे कष्ट न जाए बताई। मुझको भी वो चितना धरही दिन और रात जुलम वो करही। संकट कटे मिटे सब पीरा धक्का दू जमना के तीरा। गर उसने फिर डुबकी खाई लौट के फिर वो घर ना आई। जो सत बार पाठ करे कोई झटपट दूजी बीवी टोही। जो ये पढ़े पत्नी चालीसा तुरंत ही दर्शन हो साली का। जय सिंह माग डाल कहीं डेरा जो सबका हाल वही है तेरा। आखिर में भी एक दोहा होता
1: जी, जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है।
0: तो वो दोहा आज मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि समय की कमी है और नारी शक्ति का जमाना है। तो इसके बारे में मैं कुछ मुक्तक पढ़ देता हूँ जो अभी बराबरी में आ रही है हमारी माताएं बहने। के मुझसे हद कद पद में छोटा है पति।
1: क्या बात है।
0: मुझसे हद कद पद में छोटा है पति। खरी खरी सुनता है खोटा है पति। क्या क्या खोट उसके गिनाऊं मैं सहेलियों। क्या क्या खोट उसके गिनाऊं मैं सहेलियों। किसी दल का मुखोटा है पति। खरी खरी सुनता है खोटा है पति।
1: बहुत बढ़िया।
0: शादी के समय बड़ा छबीला था पति।
1: क्या बात है।
0: शादी के समय बड़ा छबीला था पति। खट्टा कट्टा तन से गठीला सा पति। गोरी चमड़ी थी और चेहरा भी लाल था। गोरी चमड़ी थी और चेहरा भी लाल था। पत्नी ने रंग दिया पीला पीला सा पति। शादी के
1: अच्छा
0: समय बड़ा छबीला था पति।
1: बहुत अच्छा।
0: अब क्या आरोप लगाती हैं पत्नियां पति पर।
1: जी जी।
0: के चोर बेईमान बड़ा झूठा है पति। सब झूठ है मैंने खसूटा है पति। गाजर मूली नहीं जो कच्चा खा जाऊं मैं। गाजर मूली नहीं जो कच्चा खा जाऊं मैं। भून भून खाने का ये भुट्टा है पति। चोर बेईमान बड़ा झूठा है पति। और क्या बोलती हैं
1: जी।
0: के समझ ना आए ये अनूठा है पति।
1: जी।
0: गाय के गले में पड़ा खूटा है पति। रख

0: जी वाह, बहुत
1: समझ ना आए अनूठा है पति। और क्या कहते हैं पति
0: जी, जी।
1: के नौकरी मैं करूं तू घर चाकरी पति,
0: अच्छा
1: तू क्या मुझे देगा अब भाखरी पति।

0: हो तुम आखरी पति, नौकरी में कर तू घर चाकरी पति। पति कितना डरता है
1: जी जी,
0: के बंदरी से डरता लंगूर सा पति। बंदरी से डरता लंगूर सा पति, कसूरवार हुआ बेकसूर सा पति। हीरा

0: हीरा था जो कभी मर दो के संसार का, पत्नी ने किया चूर चूर सपति, बंदरी से डरता लंगूर सपति। अब क्या कहती है श्रीमती जी,
1: जी
0: के तुम सीरी सीरी हो खाली कहाँ है मती,
1: क्या बात है।
0: के तुम सीरी सीरी हो कहाँ है मती, सीरी मती में सदा ही रहती है मती, पत्नी उड़ाती है जहाज आकाश में, पत्नी उड़ाती है जहाज आकाश में, ताश खेलते हैं चौपाल में पति,
1: क्या बात है,
0: सीरी
1: बहुत बढ़िया,
0: सीरी हो खाली कहाँ है मती।
1: बहुत बढ़िया
0: तो पति क्या करेगा फिर बेचारा,
1: जी।
0: के बचने के ताने बाने पूरता पति,
1: बहुत बढ़िया,
0: बचने के ताने बाने पूरता पति, टूट टूट हुआ चकना चूर सपति, प्रेम वश भी नजर मुझ पर डाली तो, प्रेम वश भी नजर मुझ पर डाली तो, केस बनवा दूंगी कि घूरता पति, बचने के ताने बाने पूरता पति। ना सास समझाए ना ससुर समझाए, ना सास समझाए ना ससुर समझाए, किससे करे शिकायत साले मारने को आए, पत्नी सताए तो हमको बताए।
1: जी
0: क्यों
1: बिल्कुल
0: बोलते
1: ठीक
0: हैं
1: है,
0: कुछ लोग बोलते हैं ना
1: हाँ हाँ
0: कि पत्नी सताए तो हमको बताए, हम सब रो रहे हैं आप हमारे साथ आए। तो ये था नारी शक्ति पे
1: जी,
0: और थोड़ा समय बाकी है तो हम शर्मा जी से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ और।
1: देखिए नारी की बात हो रही है, मैं बताता हूँ आपको नारी क्या है। कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी चौचर पर हारी, कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी चौचर पर हारी, जन्म से पहले दुश्मन घर में, बाद शत्रु दुनिया सारी, कांटे भरी हर राह है तेरी, फिर भी हिम्मत कभी न हारी, शीश झुकाता हूँ मैं तुमको, हो सदा जय जयकार तुम्हारी, हो सदा जय जयकार तुम्हारी, जय हो नारी, जय हो नारी, जय हो नारी।
0: एक बार की जरा सी गलती से आजीवन भाग्य मेरा फूटा
1: जी,
0: और 30 साल से मेरी पत्नी मुझको दिखलाती रोज अंगूठा,
1: जी
0: झाड़ फूंक टोटका प्रार्थना याचना आदि लाख जतन किए, लेकिन पीछा मेरा आज तलक नहीं छूटा, मैंने ही अनसुनी कर दी, वरना फेरों के समय हो गई थी आकाशवाणी
1: जी,
0: कि जिसको गाजे बाजे से ब्याह कर ले जा रहे हो
1: जी,
0: वो शादी के बाद ना तो आपको खाना देगी ना पानी,
1: अच्छा
0: बेशक अग्नि के सम्मुख हाँ कर दे
1: जी,
0: लेकिन फेरों की कसमें इसको आती नहीं निभानी,
1: जी
0: उसने दिखलाया वही खेला और 30 साल तक मैंने उसको झेला,
1: बहुत बढ़िया,
0: आखिर महाकुंभ में भेजी लेकर प्रभु का नाम,
1: जी
0: अफसोस भगदड़ से मरने वालों की सूची में नहीं था उसका नाम,
1: जी
0: उससे मुक्ति पाने का एक और सुअवसर मिला उसके बाद में, लेकिन उसकी फ्लाइट छूट गई थी जो
1: अच्छा,
0: जहाज गिरा अहमदाबाद में।
1: हाँ,
0: फिर एक और आइडिया आया मेरे खुरापाती ब्रेन में, मैंने बहुत समझाया लेकिन गई नहीं यूक्रेन में। कल भी मैंने कहा प्रिय क्या रखा है जयसिंह मान में, क्या रखा है इस दिल्ली में, क्या रखा है हिंदुस्तान में, जा चली जा वहां जहां बम बरस रहे हैं, ईरान में या लेबनान में।
1: अच्छा।
0: एक और सुनहरा मौका है घरवाली के पास मुक्ति पाने का मेरे अंदाज में, के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में चली जा बैठकर किसी तेल के जहाज में
1: जी,
0: ताकि वहां जाकर प्रिय इतनी मझधार में फंसे, मैं आकाशवाणी में कविता पढ़ूं और श्रोता हंसे।
1: क्या बात है।
0: लेकिन पंडित जी ने बताया प्रिय पत्नी सदा सुहागिन रहेगी, डस डस कर खून चूसेगी, मेरे बाद भी जिंदा नागिन रहेगी। धन्यवाद। हाँ तो ये था आज का हमारा हास्य कवि सम्मेलन, श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं और आगे भी कार्यक्रमों में हम आपसे मिलते रहेंगे।
2: अभी आप हास्य कवि सम्मेलन सुन रहे थे, प्रतिभागी थे श्री आरपी शर्मा, श्री जयसिंह मान, श्रीमती सीमा रंगा और श्रीमती ममता जयंत। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे श्री जयसिंह मान। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
3: ये आकाशवाणी।

दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने कवि गोष्ठी का आनंद लिया। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का और ठीक 9:00 सुनेंगे आप इवनिंग न्यूज। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें और 9:30 पर समय होगा रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तलत। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम की इस जबरदस्त गीत के साथ। फिल्म है ताल और इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने।

जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पल का इंतजार रहता है कि वो एक पल ऐसा आ जाए कि सदियों का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो मिट जाए। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो आपको एक पल मिल जाता है और आपकी सारी दुख, तकलीफ, परेशानियां वो खत्म हो जाती हैं। अब ये दोनों बातें बहुत अलग हैं, लेकिन इसमें कनेक्शन सिर्फ इतना है कि आपका भरोसा बना रहना चाहिए।

और अपना ख्याल रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने अपनों का भी ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म है तनु वेड्स मनु, और इस गीत को गाया है ज्योति नूरा ने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद

0: आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
3: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 24 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो दो

लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने यह संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And now the news in detail. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam, and the Union Territory of Puducherry, to be held tomorrow. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first, and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. In West Bengal, counting will take place across 77 centres. We have more from our correspondent.
3: After an intense campaign and record voter participation, all eyes are now on tomorrow's verdict, which will decide who governs West Bengal for the next 5 years. According to the Election Commission, postal ballots will be counted first, followed by electronic voting machines in multiple rounds. Results for 293 constituencies are expected through the day, while the remaining Faulda constituency will go for the fresh polling later this month. Central forces, state police personnel and election officials deployed to ensure a smooth and transparent counting process. CCTV surveillance and multi-layer security arrangements have been put in place at strong rooms and counting halls. Early trends are expected within the first few hours of counting, while the final picture may be emerged by evening. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Assam, the fate of 722 candidates will be decided tomorrow. Our Guwahati correspondent has filed this report.
4: In Assam, elaborate multi-layered security arrangements have been put in place to ensure a smooth and transparent counting process in the state. The entire exercise will be closely monitored by 126 counting observers. They will be supported by nearly 6,000 counting personnel and over 2,300 micro-observers deployed across the state. Assam Chief Electoral Officer Anurag Goel has described the 2026 assembly elections as historic, with Assam witnessing a single-phase poll after nearly 3 to 3.5 decades. He also added that the election recorded the highest voter turnout in the last 5 assembly polls, reflecting strong public participation in the democratic process. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
2: Moving on to the southern part of India, in Keralam, foolproof security arrangements have been put in place for the counting process. Our Thiruvananthapuram correspondent has

0: the toss and opted to bowl first. Punjab Kings continue to lead the standings while Gujarat Titans are placed at the fifth position. And now before we end the bulletin, the headlines once again. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती के लिए जो कल कराई जाएगी, ये अमल खुशुसलूबी से जारी रहे, इसके लिए वसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। भारत के खला से मुतालिक स्टार्टअप गैलेक्स आई ने मिशन दृष्टि को खला में भेजा है, जो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा जाने वाला दुनिया का पहला ऑप्टोसार मसनूई सयारचा है। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस कारनामे पर मुबारकबाद दी है। मुत्तहदा अरब इमारात ने मगरबी एशिया तनाजे के दौरान अपनी परवाजों को कुछ दिन तक मुअत्तल रखने के बाद भारत की कई जगहों के लिए परवाजें दोबारा मामूल के मुताबिक चलानी शुरू कर दी हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने कल शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेहमान सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दी, जबकि एक और मैच अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। चार रियासतों मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात की कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आसाम में वोटों की गिनती के लिए सभी 35 जिलों में 40 मराकज कायम किए गए हैं। 59 खवातीन समेत 722 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आसाम में वोटों की शफाफ और बिला रुकावट गिनती को यकीनी बनाने के लिए कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गिनती के पूरे अमल पर 126 काउंटिंग मुशाहिदीन करीबी नजर रखेंगे। इस अमल में मदद के लिए वोटों की गिनती से वाबस्ता तकरीबन 6000 अहलकार और 2300 से ज्यादा माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने 2026 के इंतखाबात को तारीखी करार दिया है, क्योंकि यहां तकरीबन 3 दहाइयों के बाद वाहिद मरहले में पोलिंग कराई गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: मगरबी बंगाल में 77 गिनती मराकिस पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: चुनाव कमीशन के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी, उसके बाद कई राउंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से डाले गए वोटों की गिनती होगी। गिनती के अमल को शफाफ और बिला रुकावट बनाने के लिए मरकजी फोर्सेस, रियासती पुलिस अहलकारों और चुनाव अहदेदारों को तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: इस दौरान चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को मनसूख करने का गैर मामूली कदम उठाया है। इस हलके में सभी 285 पोलिंग बूथों पर इस महीने की 21 तारीख को फिर से वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। तमिलनाडु में वोटों की गिनती के लिए 10,545 अहलकार तैनात किए जा रहे हैं, जिनकी मदद 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।

पड़ने और तेज हवाओं के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुत्तहदा अरब इमारात की जनरल शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने यूएई के फजाई हदूद के अंदर मामूल की सभी फजाई खिदमात दोबारा शुरू करने और मगरबी एशिया में उभरती सूरत हाल के दरमियान किए गए आरजी एहतियाती इकदाम को खत्म करने का ऐलान किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत और मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने यूएई से भारत में कई मकामात पर परवाजें बहाल कर दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के जरिए दिए गए 166 रन के निशाने को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर्स और 2 गेंदों में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे कबल सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर्स में 165 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अहमदाबाद में खेले जा रहे आज के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने मेजबान गुजरात के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा है।

الحلقة الثانية عشر. قبائل بنجارا.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व

0: वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत गीत सुनहरे के अंतर्गत शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं अभी आप सुन रहे हैं। एक और खूबसूरत है, जी हाँ, इतना प्यारा गीत सुना है आपने, वाकई लाजवाब। ठंडी हवा के झोंके, वाकई बहुत ही सुंदर। भाई बहन फिल्म से शानदार खूबसूरत रचना। ये फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, शमशाद बेगम की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना। जी हाँ, संगीत से सजाया है इस सुंदर गीत को श्याम सुंदर ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है आपके पास, तो बस हो जाइए तैयार इस सुंदर गीत को सुनने के लिए। जी हाँ, सुनो, गजर किया गए। जी हाँ, फिल्म बाजी, गीता दत्त और कोरस की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना। बाजी फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है, गीतकार रहे हैं साहिर साहब और संगीत से सजाया है RD बर्मन, SD बर्मन साहब ने। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

के बिताल दो घड़ की जवानी है, हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिताल दो।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचनाएं आती हैं। अभी तक आप सुन रहे थे बहुत सारी रचनाएं। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बेहद खूबसूरत है, लाजवाब है। और इस गीत के बारे में यदि हम बात करें तो ये है कहानी नमाज की। अब्दुल्ला फिल्म से है और मुकेश साहब की आवाज़ में शानदार रचना। अब्दुल्ला फिल्म 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है। इसी फिल्म का ये गीत आ रहा है, तो आइए सुनिए ये शानदार खूबसूरत गीत।
1: मेरे नदी

0: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों

0: पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
2: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry to be held today. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting at 4 states and 1 union territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142.
4: Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
5: Today, the 4th of May 2026.
4: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
5: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
4: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies
5: from 8

0: श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने को हैं, अब हिंगरी हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।

0: जनादेश 2026।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद रहने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उसे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 1 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटन्स की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

प्रस्तुत है भगवान मुर्गन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं। स्वर TM सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है NS चिदम्बरम की रचना।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार हैं पी रामाचंद्रम और राग है मधु मायवती।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार थे पी रामाचंद्रन और राग था मध्य मवाती। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 मई 2026 सुबह के 4:53 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप देशभक्ति संगीत का आनंद उठा सकते हैं। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। कलाकार हैं अभिषेक लोधी और राग है नट भैरव।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का वक्त होगा 6:05 का। 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन।

0: 6:45 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस, जबकि 6:55 पर प्रसारित किए जाएंगे संस्कृत में समाचार। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का वक्त होगा 7:05। 7:10 से लेकर 7:30 पर आप संगीतिका कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। अब 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उधर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के जुनून का प्रमाण है।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया। नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर आपत्ति जताई। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के सात देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल सात देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st of May and the counting will be held on 24th of May.
2: Janadesh 2026.
3: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
2: Today, the 4th of May 2026.
3: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
2: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
3: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies.
2: From 8:30 a.m. onwards today.
3: Janadesh 2026.
1: Indian space startup Galaxy has launched Mission Drishti, world's first Optosat satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. Weighing 190 kilograms, Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded the successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey. The Minister of External Affairs, MEA, stated that Lipulekh Pass has been a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954 and said this is not a new development. Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate a North Tech symposium on the theme Raksha Triveni Sangam, where technology, industry and soldiering converge in Prayagraj, Uttar Pradesh today. The three-day event is being jointly organised by the Northern Command and Central Command of the Indian Army and the Society of Indian Defence Manufacturers. On the occasion of the Delhi Metro Rail Corporation's DMRC 32nd Foundation Day, Delhi Chief Minister Rekha Gupta announced the 7 new corridors to be constructed under Metro Phase 5B. She said these corridors will have a combined length of 97.58 kilometers and 65 new stations will be built along them. The estimated cost for all 7 corridors to be constructed under Metro Phase 5B is approximately ₹48,204.56 crore. Ministry of Health and Family Welfare, in collaboration with all states and union territories and relevant central ministries and departments, will observe a Pan-India Fire Safety Week beginning today to raise awareness on the importance of prevention and mitigation of fire hazards across healthcare facilities in the country. The United States and Iran appear no closer to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baghai said the United States has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, said he had examined the proposal and described it as not acceptable. He said Iran has not yet paid a big enough price, signaling Washington's tougher stance as talks remain indirect and mediated. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Punjab Kings by 4 wickets at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. In another match, Kolkata Knight Riders defeated Sunrisers Hyderabad by 7 wickets at Rajiv Gandhi International Stadium in Ahmedabad. Today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants at Wankhede Stadium in Mumbai. The match will begin at 7:30 this evening. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 5:10 और 22 सेकंड और यह वक्त है कार्यक्रम आओ योग करें का। इसके अंतर्गत आज आप अर्ध मत्स्येन्द्रासन के बारे में जानेंगे।
5: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें, इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान न करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन की। अर्ध मत्स्येन्द्रासन को हाफ

स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्ध मत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्ध मत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्ध मत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के

0: 印度德里广播电台，从印度时间5:15到6:45和16:17:30向亚洲播送普通话节目。早间广播频率为15280千赫，晚间广播频率为15410千赫。听众朋友们可以正在收听全印度电台应用程序和全印电视台免费的卫星盘上播放的全印度电台的世界广播。印度的广播电台听众朋友们，接下来将播放一首印度古典音乐，请大家收听一下。
1: साहित्य कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे तो अति विचित्र गणनाथ आज मेरे रंग बजावे और धट धरात धर धर कृधान दिन दिन दिन नागे नागे तो विचित्र मृदंग गणेश ने क्या बजाया जो सब तबला वादक मृदंग वादक बजाते हैं धट धरात धर धर कृधान वही गणेश ने भी बजाया तो कहते नहीं भारतीय भाषा में धट जिसने रास्ते को धरा धट धरा और धर धर ध्यान उस मालिक का ध्यान बराबर धरता गया धट धरा और धर धर ध्यान और दिन दिन दी न नागे नागे नागे जो दिन दिन नागा नहीं दिया उसकी याद में दिन दिन दी न नागे नागे नागे धन धन तीन किसको धन्य है धन धन तीन और तीन ताके नाना जो उधर को नहीं ताका तीन ताके नाना दृगन धृग धृग जो उधर को नहीं देखा उसकी आंखों को धिक्कार है किन ताके ना

तादरिगन धृग धृग दिन दिन दिन आगे दिन आगे दिन दिन नागा देता चला गया, तो कहें फल क्या मिला, कहें कीर्तक धारा न तारा न धा, कीर्तक धारा न तारा न धा, न उसके कीर्ति को धारा न ये भावसागर से तारा, कीर्तक धारा न तारा न धा धारा न इसको इसको हाथ से सुना दें और उसके बाद आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग, स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये डालडा और रिफाइंड तेल खाने से नहीं बचता, बड़ा शुद्ध घी और बनारस का दूध मलाई खाने से बचता है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो फिर आके आप लोगों की सेवा करेंगे, ये चीज़

接下来将播放一首印度教的其他歌曲，请大家收听一下。